0: अनमोल विचार।
1: जिस प्रकार सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन की चुनौतियों से टकराकर ही मनुष्य का व्यक्तित्व निखरता है। निरंतर संघर्ष का नाम ही जीवन है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां और चुनौतियां हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमारे साहस को जगाने के लिए आती हैं। संघर्ष से भागना समस्याओं को बढ़ाना है, जबकि उनका सामना करना ही प्रगति का एकमात्र मार्ग है। कहा गया है, समुद्र की लहरें तभी तक जीवित हैं जब तक उनमें हलचल है। ठीक उसी प्रकार अपने संघर्षों को अपनी बाधा नहीं, बल्कि अपनी सीढ़ी बनाएं।
0: ये था अनमोल विचार और अब श्रोताओं आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। आगाज मातृ वंदना के साथ।

श्रोताओं, अभी आपने एस जानकी के स्वर में मीराबाई की लिखी रचना सुनी। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं महेंद्रपाल सिंह व साथियों की आवाजों में ये शब्द।

महेंद्र पाल सिंह व साथियों के गाए इस शब्द के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब समाप्त होता है।

0: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 5:55 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कीड़ों के साथ साथ बीमारियों का भी काफी हद तक प्रकोप बागानी फसलों पर होता है। इससे किसान भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है और अच्छी उपज अपनी फसलों से वो नहीं ले पाते। लेकिन अगर आप ठीक समय पर इन बीमारियों की रोकथाम करें तो अपनी बागानी फसलों से काफ़ी अच्छी उपज ले सकते हैं। आइए सबसे पहले नज़र डालें आम की फसल में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं। आम की फसल में चूर्णी फफूंद बीमारी लगती है। इसके प्रकोप से फूलों तथा छोटे फलों पर भूरे सफ़ेद रंग की बुकनी सी छा जाती है, जिससे वे झड़ जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 2% घुलनशील गंधक के घोल का छिड़काव करें। 15 दिन के अंतर पर 3 बार छिड़काव करना चाहिए। पहला फूल आने से पहले, दूसरा कुछ फूल आ जाने के बाद और तीसरा पूरी तरह से फूल आ जाने के बाद। एंथ्रैक्नोज बीमारी एक दूसरी बीमारी है, जिससे फलों तथा टहनियों पर काले धब्बे पड़ते हैं, जिससे प्रभावित फल सड़ जाते हैं और प्रभावित टहनियाँ सूखने लगती हैं। इसकी रोकथाम के लिए बोड़ो मिश्रण का छिड़काव किया जा सकता है। आम की एक अन्य बीमारी है उकटा रोग। इससे प्रभावित पेड़ों की अधिकतम टहनियां सूख जाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए प्रभावित टहनियों को काट कर जला दें तथा पेड़ के कटे भाग पर कैप्टान का पेस्ट लगा दें। अब देखें केले में कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं। केले में पनामा विल्ट रोग कवक द्वारा फैलता है। ये कवक जड़ों एवं चोट खाए प्रकंद से घुसकर पौधों को प्रभावित करता है। ये कवक अगर एक बार केले के बाग में प्रवेश कर जाए तो सारा बाग ही चौपट हो जाता है। इससे पौधों की पत्तियां एक एक करके सूखने लगती हैं और पौधा मर जाता है।

0: के नियंत्रण के लिए जिस बाग में ये रोग लग जाए उस बाग में केला लगाना छोड़ दें। केले में बंची टॉप रोग भी लगता है। इससे पौधों का ऊपरी सिरा एक प्रकार के गुच्छे का स्थान ले लेता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए रोगग्रसित पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दें। किसान भाइयों, केले के विगलन रोग में पौधे के अंदर की पत्तियां गल जाती हैं तथा नई पत्तियों के निकलने में रुकावट पैदा होती है। इसके नियंत्रण के लिए बोड़ो मिश्रण का छिड़काव किया जा सकता है। हमारे इन द्वीपों में किसान भाई पपीते की खेती भी करते हैं। पपीते में डैम्पिंग ऑफ बीमारी नर्सरी की छोटे छोटे पौधों पर लगती है, जिससे नर्सरी के पौधे गलकर मर जाते हैं। इससे बचने के लिए बीज बोने से पहले बीजों को सरेसान या एग्रोसान जीएन कवकनाशी दवाओं से उपचारित कर लें। पपीते में तना व जड़ गलने की भी बीमारी लगती है। इसकी रोकथाम के लिए पपीते के बाग में जल निकास की समुचित व्यवस्था करें। जहाँ तक अमरूद के बागों में व्याधियों का सवाल है, उकटा रोग यदि एक बार अमरूद के बाग में लग जाए तो सारा बाग चौपट हो जाता है और सारी फसल नष्ट हो जाती है। अतः ऐसी मिट्टी में दोबारा अमरूद के बाग ना लगाएं। इस रोग में शाखाएं तथा टहनियां एक एक करके अगले भाग से सूखना आरंभ हो जाती हैं और नीचे की ओर सूखती चली जाती है। बाद में समूचा पेड़ ही सूख जाता है। इसके नियंत्रण के लिए अभी तक कोई उपाय नहीं है। वैसे रोग लगते ही प्रभावित पौधों को नष्ट कर दें। एंथ्रैक्नोज बीमारी में अमरूद के फलों पर काली काली चित्तियां पड़ जाती हैं तथा बाद में ये पूरी तरह से काले पड़ जाते हैं। बारिश की फसल इस रोग से काफ़ी प्रभावित होती है। इसकी रोकथाम के लिए बोड़ो मिश्रण का छिड़काव किया जा सकता है। नींबू वर्गीय फलों में सूखे की बीमारी के लक्षण लगभग 10 साल बाद आने लगते हैं। टहनियाँ ऊपर से सूखने लगती हैं तथा पेड़ों की हालत खराब हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए संसर्गित पेड़ों को नष्ट कर दें तथा बाग में उचित जल निकास की व्यवस्था करें। साथ ही साथ गर्मी में सिंचाई का प्रबंध करें। इस प्रकार किसान भाइयों, विभिन्न बीमारियों की रोकथाम करके आप अपनी बागानी फसलों से अच्छी उपज ले सकते हैं।
1: अभी आपने सुना एग्री टिप्स।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन

0: विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The new Chief Minister of the State and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kavi Guru Rabindranath Tagore. Meanwhile, preparations are underway for the swearing-in ceremony at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Necessary administrative meetings are being held and tight security arrangements are being put in place for the occasion. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, senior BJP leaders and chief ministers from other states are expected to attend the oath-taking ceremony. President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia.

जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार एमवी भारत सीमा मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल रात्रि 8 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस जलयान की वापसी अगले दिन 10 मई को दोपहर बाद 2 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सिंधु जहाज लिटिल अंडमान के लिए 10 मई को सवेरे 8 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा। जलयान उसी रोज रात्रि 9 बजे लिटिल अंडमान से श्रीविजयपुरम वापस लौटेगा। लिटिल अंडमान होते हुए कार्निकोबार की यात्रा पर एमवी सेंटिनल कल सवेरे 7 बजे श्रीविजयपुरम से छूटेगा। जलयान 10 मई को शाम 4 बजे कार्निकोबार से छूटकर लिटिल अंडमान होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। एमवी भारत सीमा के स्थान पर अब एमवी कालीघाट लिटिल अंडमान कार्निकोबार चौरा तरीसा कचाल नानकौरी माकाचुआ व अफरा बे होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर 14 मई को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा। इस जलयान की वापसी 17 मई को रात्रि 9 बजे कैम्बल बे से छूटकर इन्हीं स्थानों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सिंधु

0: प्रयास 12 मई को नानकौरी होते हुए कैंबल बे के लिए सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जहाज 14 मई को रात 8 बजे कैंबल बे से छूटकर नानकौरी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप के लिए आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान आज ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप और स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी स्ट्रीट आइलैंड आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। ये जलयान स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2 बजे शहीद द्वीप के लिए और शहीद द्वीप से 3:30 पर श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज शहीद द्वीप के लिए आज दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। इस जलयान की वापसी आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। वापसी कल 9 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप व लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल शनिवार 9 तारीख को सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से छूटकर स्वराज द्वीप व लॉन्ग आइलैंड होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर एमवी बाराटांग के स्थान पर एमवी रानीचंगा कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा। वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। स्वराज द्वीप की यात्रा पर एमवी बम्बुका कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा। जलयान कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से छूटेगा। ये जलयान शहीद द्वीप से कल ही दोपहर 1 बजे स्वराज द्वीप और स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर अब एमवी बाराटांग के स्थान पर एमवी रानीचंगा कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। ये जलयान कल ही स्वराज द्वीप से दोपहर बाद 2 बजे शहीद द्वीप के लिए और शहीद द्वीप से 3:30 पर श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी करेगा। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा। इस जलयान की वापसी अगले दिन 10 मई को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। श्रोताओं, अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:15 में है। अब पेश है कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: नमस्कार, इंद्रधनुष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हम सब जानते हैं कि जिंदगी चलने का नाम है। चलते चलते हम सब कहीं ना कहीं जा रहे होते हैं। कभी तो मंजिल का पता होता है, लेकिन कभी बस रास्ता ही साथी होता है। चलते चलते हम गिरते हैं और संभलते हैं। कुछ पाते हैं तो बहुत कुछ खोते भी हैं। इससे ये पता चलता है कि चलना ही जिंदगी है और रुकना सिर्फ कुछ पल का भ्रम। चलते चलते जीवन के हर मोड़ पर कुछ लम्हे अपने लिए चुरा कर संजोना कहीं न कहीं सुकून का जरिया बनता है।

श्रोताओं, चलते चलते कभी कभी रास्ते इतने मुश्किल हो जाते हैं कि रुक जाने का मन करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगने लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन यही वो पल होते हैं जहां असली हिम्मत की शुरुआत होती है। हर अंधेरा जहां एक नई सुबह लेकर आता है, वहीं हर गिरना एक नई ताकत का एहसास कराता है और हर अंत एक नई शुरुआत बन जाता है।

चलते चलते हम सीखते हैं कि ये एक सफर है जो हर दिन नया होता है। चलते रहना हमें आगे बढ़ने की आदत देता है। ये सिखाता है हमें बदलाव को स्वीकार करना, हार के बाद भी कोशिशें जारी रखना। धैर्य और निरंतरता की ताकत का एहसास और मंजिल से ज़्यादा सफर की अहमियत। चलते चलते हम मजबूत बनते हैं, हर कदम कुछ नया सीखते हैं, चाहे फिर वो हार हो या फिर जीत।

0: जहाँ चलते चलते हमें ज़िंदगी का सबक समझ में आता है, वहीं रुकना भी हमें सिखाता है आत्मचिंतन, गलतियों को पहचानना, दिशा सुधारना और मन के साथ साथ शरीर को आराम देना। रुकना हार नहीं होता, अगर वो समझदारी से लिया गया विराम हो। रुकना हमें खुद को समझने का मौका देता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो चलते रहना हमें मजबूत बनाता है और रुकना हमें समझदार। तो ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा विराम के साथ चलते रहिए, क्योंकि हर कदम पर एक नई कहानी का आगाज़ होता है। चाहेंगे इजाज़त, नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप चलते चलते शीर्षक पर इंद्रधनुष कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी फातिमा।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनते हैं रामचरितमानस गान की 232वीं कड़ी। गायक कलाकार है ए हरिहरन।

चित्रकूट की सभा में गुरुजन, मातृत्रय तथा अयोध्यावासियों की उपस्थिति में भरत श्री राम के सम्मुख अपने अंतरतम के उद्गार प्रकट कर रहे हैं। उन्हें इस बात की प्रतीति है कि अपने हितैषियों, बुद्धिमान जन तथा स्वामी के सामने अधिक नहीं बोलना चाहिए। श्री राम के प्रति भरत का स्नेह और समर्पण देखकर उपस्थित समुदाय प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ जाता है। स्वयं श्री रघुनाथ जी सम्मान भरे वचन के साथ उनका हाथ पकड़ अपने पास बिठा लेते हैं।

श्रोताओं, अभी आप ए हरिहरन की आवाज़ में रामचरितमानस गान की 232वीं कड़ी सुन रहे थे। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से। इस समय सवेरे के 6:40 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं वतन के गीत कार्यक्रम के तहत चंद देशभक्ति गीत।

आकाशवाणी का ये शिवाजीपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:50 हुए हैं। लीजिए पहले सुनिए मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवा और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सवेरे तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में यह बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों पर हल्की सी मध्यम वर्षा होने तथा गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। ये था मौसम का हाल। और अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखाएं। अब से कुछ देर बाद यानी सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन का समय रहेगा 7:05। सवेरे 7:15 पर फिल्मी देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागनी। और इसी समय विविध भारती मुंबई से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम भूली बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर कलाकार होंगे गुलाम अली, आबिदा परवीन, मेहदी हसन और बेगम अख्तर। सवेरे 9 बजे सुना जा सकता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहानी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 9:30 पर पंडित सियाराम तिवारी का हिंदुस्तानी शैली में गायन प्रसारित किया जाएगा। सवेरे 10 बजे सुनिए दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण समय रहेगा दिन के 11 बजे। दिन के 11:30 पर आप सुनेंगे निकोबारी कार्यक्रम, जिसमें सूचनाओं के अलावा विश्व थैलेसीमिया दिवस पर चर्चा की जाएगी। दोपहर 12 बजे तेलुगु कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा बालानंदम। इसके अतिरिक्त विश्व रेड क्रॉस डे पर चर्चा होगी। मलयालम कार्यक्रम के तहत दोपहर 12:30 पर साहित्यिक कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। दोपहर 1:10 पर महफिल्ले कव्वाली कार्यक्रम में कव्वाल होंगे मास्टर हबीब कव्वाल और बशीर अहमद। व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम दोपहर 1:30 पर। दोपहर बाद 2:30 पर हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, लेकिन FM 100.9 MHz पर हमारे स्थानीय कार्यक्रम जारी रहेंगे, जिसके अंतर्गत दोपहर बाद 2:30 पर सुनिए लाइव फोन आउट प्रोग्राम हेलो डियर फ्रेंड्स और 3:30 पर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा यूं ही गाते रहो।

हमारी दूसरी सभा की शुरुआत होगी शाम 5 बजे तमिल कार्यक्रम के साथ, जिसमें आप एक ही श्रोताओं के पसंद के गीत सुनेंगे। शाम 5:30 पर बांग्ला कार्यक्रम में नजरुल गीत सुनवाए जाएंगे। शाम 6 बजे कृषि जगत कार्यक्रम में विश्व रेड क्रॉस डे पर चर्चा तथा डॉक्टर MS कुंडू से की गई बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय रहेगा बकरियों के लिए संतुलित आहार। समाचार तरंगणी प्रसारित की जाएगी शाम 6:30 पर। शाम 6:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। कार्यक्रमों का विवरण दिया जाएगा शाम 6:55 पर। संध्या 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम व जन सूचनाएं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में संध्या 7:20 पर आप रानू मुखर्जी को सुनेंगे। युवाणी के तहत संध्या 7:30 पर फोन इन प्रोग्राम प्रसारित किया जाएगा हेलो फ्रेंड्स। इसके अलावा विश्व रेड क्रॉस डे पर चर्चा होगी। रात्रि 8 बजे आपके मनोरंजन के लिए पेश किया जाएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। रोजगार समाचार व गौरव गान सुनिए रात्रि 8:30 पर। रात्रि 10 बजे आनंद लीजिए व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम संदेश आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर करंट अफेयर्स कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। तथा इसी बीच रात्रि 10 बजे विविध भारती मुंबई से प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार पिछले 22 घंटों के दौरान श्री विजयपुरम और इसके आसपास के इलाकों में वर्षा नहीं हुई। आज सवेरे 5:30 पर सापेक्ष आर्द्रता 86% तथा न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्री विजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 32.5 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 4:58 पर हुआ तथा सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:34। लीजिए अब सुनिए विमान संबंधी जानकारी। एयर इंडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान 2937 आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचने की संभावना है। यही विमान श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए अपनी उड़ान भरेगा दिन के 11:40 पर। अभी आप एयर इंडिया से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार उड़ान संबंधी सूचना सुन रहे थे।

श्रोताओं, आज सवेरे 7:15 पर फिल्मी देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा देश रागनी, और इसी समय विविध भारती मुंबई से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम भूली बिसरी गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा सवेरे 7:30। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 8:30 पर कलाकार होंगे गुलाब।

हम अली, आबिदा परवीन, मेहदी हसन और बेगम अख्तर। सवेरे 9 बजे सुना जा सकता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तरानी सुहानी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सवेरे 9:30 पर पंडित सियाराम तिवारी का हिंदुस्तानी शैली में गायन प्रसारित किया जाएगा। सवेरे 10 बजे सुनिए दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग। श्रोताओं, इसी के साथ ही जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन। इस अंतराल के बाद

0: धूप में बाहर जाने से बचें, शरीर को ढकें, ढीले एवं हल्के रंग के कपड़े पहनें।
1: धूप से बचाव के लिए छाते का प्रयोग करें।
0: पर्याप्त तरल पदार्थों को लें।
1: दिन में 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचें।
2: गर्मी से करेंगे हम बचाव और अपनाएंगे ये सुझाव।
0: हीट स्ट्रोक के लक्षण प्रतीत होने पर अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें।
3: स्वास्थ्य सेवा निदेशालय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जनहित में जारी।

आकाशवाणी के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज सुबह दिल्ली में मैराथन का आयोजन। अभिलेखागार विभाग ने इतिहास में स्नातक डिग्री पूरी करने वाले छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। मुख्य वेतन और लेखा कार्यालय की ओर से पेंशन और वेतन निर्धारण पर ओरिएंटेशन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए आवेदन आमंत्रित।

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। इस मैराथन के आयोजन से आकाशवाणी न केवल अपनी गौरवशाली संस्कृति और अस्मिता का उत्सव मना रही है, बल्कि स्वास्थ्य, स्फूर्ति, एकजुटता और लोक संपर्क का संदेश भी प्रसारित कर रही है। अभिलेखागार विभाग की ओर से इतिहास में स्नातक डिग्री पूरी करने वाले छात्रों के लिए एक अल्पकालिक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। इस पहल का उद्देश्य प्रशिक्षित इंटर्न के माध्यम से अभिलेखागार के चल रहे कार्यों को मजबूती प्रदान करना और छात्रों को अभिलेखागार प्रबंधन की जानकारी देना है। इंटर्नशिप की अवधि 3 महीने की होगी। प्रदर्शन के आधार पर या अभिलेखागार सचिव के अनुमोदन पर इसे अगले 3 महीनों के लिए बढ़ाया जा सकता है। आवेदकों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास में BA की डिग्री होनी चाहिए। इसके लिए केवल वे उम्मीदवार पात्र हैं जिन्होंने वर्तमान या पिछले 2 शैक्षणिक

वर्षों में अपनी डिग्री पूरी की हो। चयन पूरी तरह से शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। कुल 10 इंटर्न नियुक्त किए जाएंगे। उन्हें 10,000 रुपये प्रतिमाह का वजीफा प्रदान किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन 10 मई तक सादे कागज़ पर बायोडेटा, स्नातक प्रमाण पत्र की प्रतियों, मार्कशीट और आईडी प्रूफ के साथ सहायक सचिव अभिलेखागार के पते पर जमा कर सकते हैं। कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से आज शाम 5:30 बजे अंडमान क्लब में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती के उपलक्ष्य में रविन्द्र जयंती मनाई जाएगी। कार्यक्रम में विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों द्वारा एक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जाएगी, जिसके माध्यम से टैगोर के साहित्यिक और कलात्मक योगदानों को सम्मानित किया जाएगा। विभाग ने आम नागरिकों से इस कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया है। नेताजी स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का स्विमिंग पूल आज से सभी उपयोगकर्ताओं के लिए बंद रहेगा। गर्मी के मौसम में पानी की कमी को देखते हुए इसे बंद किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्य वेतन और लेखा कार्यालय की ओर से पेंशन और वेतन निर्धारण पर एक दिवसीय ओरिएंटेशन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम कल टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य पेंशन नियमों, वेतन निर्धारण प्रक्रियाओं और पेंशन मामलों में देखी जाने वाली सामान्य प्रक्रियागत कमियों के बारे में कार्यालय प्रमुखों और संबंधित कर्मचारियों को जानकारी देना था। कार्यक्रम का उद्घाटन आयुक्त सह सचिव वित्त डॉक्टर सचिन शिंदे ने किया। इस अवसर पर सचिव पल्लवी सरकार, लेखा और बजट निदेशक एस दासगुप्ता भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में डॉक्टर सचिन शिंदे ने इस बात पर जोर दिया कि पेंशन मामलों को केवल फाइलों या नियमित सरकारी मामलों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उन्हें सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण और गरिमा से जुड़े मुद्दों के रूप में देखा जाना चाहिए। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम दो पालियों में आयोजित किया गया था। सुबह के सत्र में श्री विजयपुरम क्षेत्र के विभिन्न विभागों के कार्यालय प्रमुखों और संबंधित कर्मचारियों सहित 150 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जबकि दोपहर के सत्र में लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें वन और APWD प्रभागों तथा बिम्बलीगंज क्षेत्र के अधिकारी शामिल थे। दक्षिण अंडमान जिले के मत्स्य किसानों, मछुआरों, मत्स्य विक्रेताओं, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों, उद्यमियों तथा अनुसूचित जाति जनजाति और महिला लाभार्थियों से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40% तथा अनुसूचित जाति जनजाति और महिला लाभार्थियों को 60% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अंतर्गत खारे पानी एवं मीठे पानी के मत्स्य पालन, हैचरी स्थापना, फिश फीड मिल, कोल्ड स्टोरेज सहित विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित दस्तावेजों के साथ 18 मई तक सहायक निदेशक मत्स्य दक्षिण अंडमान के जोनल फिशरीज कार्यालय के पते पर आवेदन जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विभाग की मेल आईडी DDZFO7441011@gmail.com अथवा मोबाइल नंबर 7908568839 पर संपर्क किया जा सकता है। दक्षिण अंडमान जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय अभियान के तहत एक रील प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक लोग टीबी का शीघ्र निदान, उपचार, समय पर जांच, इलाज का महत्व, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी, खांसते या छींकते समय बरती जाने वाली सावधानियां, टीबी से जुड़े भ्रम और सामाजिक भेदभाव को दूर करना, निक्षय मित्र सहायता जैसे विषयों पर रील बना सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 मई है। रील 11 से 30 मई तक जमा किए जा सकते हैं। विजेताओं को नकद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता के विस्तृत नियमों व दिशा निर्देशों के लिए QR कोड स्कैन किया जा सकता है। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस

रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। अंडमान क्लब में आज मनेगी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती। इस समाचार को द डेली टेलीग्राम्स और द्वीप समाचार ने प्रमुखता से छापा है। इसके अलावा अखबार ने पेंशन तथा वेतन निर्धारण पर प्रशिक्षण आयोजित करने के समाचार को सचित्र प्रकाशित किया है। साथ ही अखबार ने नेताजी स्टेडियम खेल परिसर स्थित स्विमिंग पूल के बंद रहने के समाचार को अपने अंतिम पृष्ठ में जगह दी है। द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने इंटर कॉलेज फेस्ट संस्कृति 2026 के समापन समारोह के समाचार को प्रमुखता दी है। इन्फो इंडिया ने बालाटांग जेटी पर समुद्री सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम और जहाजरानी सेवा निदेशालय द्वारा जहाज कार्यक्रमों में संशोधन के समाचार को प्रकाशित किया है। इसके अलावा अखबार लिखता है, कांग्रेस के पी उमरनाथ के टाई ब्रेक के बाद अध्यक्ष चुने गए, भाजपा ने उपाध्यक्ष का पद बरकरार रखा, जबकि द इको ऑफ इंडिया ने दक्षिण अंडमान जिला परिषद के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह के समाचार को अपने पहले पन्ने में जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज सुबह दिल्ली में मैराथन का आयोजन। अभिलेखागार विभाग ने इतिहास में स्नातक डिग्री पूरी करने वाले छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। मुख्य वेतन और लेखा कार्यालय की ओर से पेंशन और वेतन निर्धारण पर ओरिएंटेशन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के लिए आवेदन आमंत्रित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:15 हुए हैं। अब पेश है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम देश रागनी।

देशभक्ति की रंग में रंगा कार्यक्रम देशरागिनी में हम आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जब भी मातृभूमि की बात आती है तो हर दिल एक सुर में धड़कने लगता है। जिस तरह सीमा पर सैनिक देश की रक्षा के लिए हर पल तैयार रहते हैं, ठीक उसी तरह आज हर भारतीय के दिल में देश प्रेम की लौ जलती है और दिल से आवाज़ आती है, हमारे देश पर बुरी नज़र रखने वाले, हम हिंदुस्तानी तुम्हारे हर बुरे काम को नाकाम कर देंगे।

श्रोताओं, हम हिंदुस्तान में रह रहे लोग कई सारी जाति, बोली और अलग अलग रंग रूप के हैं। हर किसी की संस्कृति, खान पान और पहनावा भी भिन्न भिन्न है। फिर भी हम एक दूसरे की भावनाओं को भली भांति समझते हैं, जानते हैं, क्योंकि हमारा दिल है हिंदुस्तानी।

श्रोताओं, अब जो जोशीला गीत हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उस गीत में देशभक्ति, एकता और भारतीय होने के गर्व को दर्शाता है। इस गाने में भारत की विविधता, संस्कृति और लोगों के आपसी प्रेम को बड़े उत्साह के साथ दर्शाया गया है।

तो दोस्तों, देशभक्ति के सुरों और मधुर गीतों से सजे कार्यक्रम देश रागनी में आज बस इतना ही। उम्मीद है देश के रंग में रंगे ये गीत आपके दिल को छू गए होंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 7:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।

नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में मैं अनीता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, इंसान के अंदर अगर संतोष है तो वह सबसे ज्यादा अमीर है, अगर शांति है तो सबसे ज्यादा सुखी, अगर दया है तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, और अगर स्वस्थ है तो सबसे ज्यादा भाग्यशाली। श्रोताओं, इसी विचार को सुनने के बाद आइए अब जान लेते हैं आज 8 मई को मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। दोस्तों, कुछ दिन केवल कैलेंडर की तारीख नहीं होते, बल्कि मानवता, संवेदनशीलता और जागरूकता का संदेश लेकर आते हैं, और 8 मई भी ऐसा ही एक दिन है। आज का दिन हमें सेवा, स्वास्थ्य और सहानुभूति का महत्व समझाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले विशेष दिवस से। सबसे पहले बात वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और रेड क्रेसेंट डे की। यह दिवस मानव सेवा और निस्वार्थ सहायता की भावनाओं को समर्पित है। जब कहीं प्राकृतिक आपदा आती है, जब कोई युद्ध या संकट लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है, जब किसी को खून, दवा या सहारे की जरूरत होती है, तब रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं उम्मीद की किरण बनकर

सामने आती है। इस दिवस को रेड क्रॉस की संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट की स्मृति में मनाया जाता है। उन्होंने मानवता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना है। दोस्तों, केवल बड़े कार्यों से सेवा नहीं होता। किसी की मदद के लिए बढ़ाया गया छोटा सा हाथ, किसी दुखी चेहरे पर लाई गई मुस्कान और ज़रूरतमंद के लिए दिया गया थोड़ा सा समय भी मानवता की मिसाल बन जाता है।

श्रोताओं, अभी आप हम सब उस्ताद हैं फिल्मी किशोर कुमार व साथियों को सुन रहे थे। कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। श्रोताओं, हम सभी को अपने जीवन में खुश रहना चाहिए, प्रत्येक बीमारी के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि हम स्वस्थ तो सब स्वस्थ। स्वास्थ्य की बात यहाँ चल ही चुकी है तो हम आपको बता दें, आज है विश्व थैलेसीमिया दिवस। श्रोताओं, थैलेसीमिया एक रक्त संबंधी बीमारी है जो बच्चों और परिवारों के जीवन को प्रभावित कर सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जागरूकता, समय पर जांच और सही उपचार से इसे बचाव संभव है। आज का दिन हमें यह संदेश देता है कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी छोटी सी लापरवाही बड़ी परेशानी बन सकती है। इसीलिए नियमित जांच और सही जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रक्तदान केवल किसी की मदद नहीं बल्कि किसी को नया जीवन देना जैसा है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन अक्सर महिलाएं अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बीच खुद के स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देती है। इसी जागरूकता को बढ़ाने के

उद्देश्य से आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड ओवेरियन कैंसर डे। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि समय पर जांच, सही जानकारी और जागरूकता से कई गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। आइए आज हम महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का संकल्प लें।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम में समय हो चला है एक छोटी सी ब्रेक का।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान। श्रोताओं, कभी कभी जिंदगी में हम चेहरे देखकर लोगों को पहचानने लगते हैं, लेकिन असली पहचान तो दिल की होती है। चेहरे की चमक तो वक्त के साथ बदल सकती है, पर दिल की अच्छाई हमेशा याद रहती है।

श्रोताओं, दिल का रिश्ता भी कितना प्यारा होता है। कभी चुपके से हमारी मुस्कान चुरा लेता है, तो कभी कोई दिल ही अपना बना लेता है।

फूल और अंगार फिल्म में श्रोताओं अभी आपने कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी को सुना। गीत लिखा था रानी मलिक, अनवर सागर व साथियों ने तथा संगीत दिया था अन्नु मलिक ने। श्रोताओं, जिंदगी हर दिन कुछ नया सिखाती है, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी विचार के साथ गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम को अब हम यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: ए आई ए डी

0: एमके और डीएमके की विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। डीएमके प्रवक्ता टीकेएस एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी एआईएडीएमके के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में अप्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन की चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर एमजे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग तीन गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का

0: महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
1: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
2: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
1: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
0: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
3: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
4: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा चुनाव में। तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है

0: पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे, लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at Ikana Stadium. BJP Central Observer for West Bengal and Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
3: After its sweeping victory in Bengal, the BJP is seeking to turn the swearing-in ceremony into a political event of national significance. The first BJP government in West Bengal will take oath on Saturday, the Pochishe Boishakh, at the Brigade Parade Ground. Preparations for the stage and security arrangements at Brigade began on Wednesday itself. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central ministers may attend the ceremony. Chief ministers and deputy chief ministers of various BJP and NDA-ruled states are also being invited. On Friday, a meeting of the newly elected BJP MLAs will be held at Bishwa Bangla Convention Centre in New Town, where the leader of the legislative party will be formally elected. Amit Shah will be present as the central observer. Since the oath-taking ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, special emphasis is also being given to cultural performances. The BJP is planning to showcase Bengali culture through Rabindra Sangeet and other cultural presentations. Shondipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
2: In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, talks have been held to reach the magic number of 118 to prove the majority. The DMK and the AIA-DMK held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIA-DMK General Secretary Edappatti Palaniswamy has been elected as a leader of the legislative party during the meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs

श्रोताओं, आज सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार हैं गुलाम अली, आबिदा परवीन, मेहदी हसन और बेगम अख्तर। तो पहले पेश है गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल।

0: श्रोताओं, अभी आप आबिदा परवीन को सुन रहे थे। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मेहदी हसन को।
1: एक

श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं बेगम अख्तर की आवाज में इस गजल को, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। ये है गालिब की लिखी गजल।

श्रोताओं, अभी आप बेगम अख्तर की आवाज़ में इस गज़ल का लुत्फ ले रहे थे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार थे गुलाम अली, आबिदा परवीन, मेहदी हसन और बेगम अख्तर।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय सवेरे के 9 बजे हैं। अब पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है छाया फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और तलत महमूद ने। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है सलील चौधरी ने।

रवि के संगीत निर्देशन में तैयार श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं दो बदन फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है आशा भोसले ने और संगीत और इस गीत को लिखा है शकील बदायूनी ने।

0: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर KG CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 30,000।
1: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।

कार्यक्रम को जारी रखते हुए आइए अब सुनते हैं जूली फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है प्रीति सागर ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अवतार फिल्म का गीत, जिसे गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी के बोल को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम के अंत में अब पेश है मनहर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अमृत फिल्म का ये गीत। आनंद बख्शी की रचना है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मनहर और अनुराधा पौडवाल के गाए अमृत फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने अब यहीं पर समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 9:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत इस कार्यक्रम के तहत आज हम आपको पंडित सियाराम तिवारी का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुनवा रहे हैं। इनके साथ पखावज पर पन्नालाल उपाध्याय, हारमोनियम पर मोहन प्रकाश तथा सारंगी पर दयाराम मिश्रा ने संगति की है। तो आइए पहले सुनते हैं पंडित सियाराम तिवारी का हिंदुस्तानी शैली में गाया राग जय जयवंती।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित सियाराम तिवारी का हिंदुस्तानी शैली में गायन सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

बहुत प्यार करते हैं ना आप अपने वतन से, अपने देश से। हम यहां सरहद से कोसों दूर बैठे हैं और बात कर रहे हैं अपने अपने देश प्रेम की। तो सोचिए, सरहदों पर बैठने वाला हर वो सिपाही, हर वो अफसर जो मां भारती की उस सरहद की रक्षा कर रहा है, आसमान में जमीन पर वो चांद सितारे हमारे, वो धरती मां का मिट्टी का वो लेप, और उसी लेप के बीच में वो भावनाएं तमाम हिंदुस्तानियों के लिए। संदेश टू सोल्जर्स एक ऐसा शो है जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हिंदुस्तान की फौज के उन सितारों से, सुसज्जित अफसरों से, उन फौजी भाइयों से जो अपना परिवार पीछे छोड़ के आपके परिवार को सुरक्षित रखने का बीड़ा उठाते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में ऐसे ही एक जाबाज अफसर मौजूद हैं, मेजर एस के यादव, जिन्होंने 15 साल की उम्र में एनडीए ज्वाइन की और उसके बाद 14 से ज्यादा साल उन तमाम जगहों पर भारत मां की रक्षा की, सेवाएं दी अपनी। हमने कई जाबाज अफसरों और सिपाहियों के साथ आपकी मुलाकात कराई है, लेकिन आज हम टैंक रेजिमेंट की बात करेंगे। टैंक के अंदर की वो जिंदगी, टैंक का वो लोहा जो टक्कर लेता है दुश्मनों से, टैंक रेजिमेंट की तैयारी, उसका फौलाद आज हम सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स में।

0: ये नमस्कार, ये सलूट स्वीकार कीजिए।
1: शुक्रिया, थैंक यू।
0: कैसे हैं सर आप?
1: एब्सोल्युटली फाइन, फर्स्ट क्लास।
0: आज हमने आपको सिविलियन ड्रेस में बुलाया है, लेकिन जज्बा वही है जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जो ताकत है, भारत माँ की वो ड्रेस आपकी।
1: बिल्कुल, वंस ए सोल्जर ऑलवेज ए सोल्जर, एज दे से, यू नेवर लीव द आर्मी। एक बार आप आर्मी ज्वाइन कर लें तो एक फैमिली बन जाती है
0: जी,
1: और आप चाहे रिटायर हो जाएं, सर्व कर रहे हों, वो पूरी फैमिली एक जैसी होती है। टिल यू रीच योर लास्ट स्टेज, द होल फैमिली, योर रेजिमेंट इज विद यू इन गुड एंड बैड टाइम्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटिफुल इंडियन आर्मी।
0: आप तो टीनेज में ही इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ जुड़ गए। इंडियन
1: आर्मी, मैं वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफिसर्स था। फर्स्ट अटेम्प्ट एनडीए में चले जाएं आप हमारे टाइम पे, तो आप 15.5 साल की उम्र में आप एनडीए जाते हैं, आपकी दाढ़ी भी नहीं हुई होती, फर्स्ट टाइम शेव होता है वहाँ पे जाके। तो
0: रैगिंग हुई थी सर आपकी?
1: बहुत।
0: उसके बारे में
1: याद है,
0: 15 साल की उम्र में सर फौज में चले गए आप और रैगिंग तो हुई होगी।
1: 15 रैगिंग की वजह से मैं कहूँगा आई शुड बी थैंकफुल ऑन द हाइंड साइट, क्योंकि वो रैगिंग नहीं, हमको वो स्ट्रेंथ, हमको वो ताकत, हमको वो निश्चय दिया है जो हमारे सीनियर्स ने हमें सिखाया। वो एक फाउंडेशन बन जाती है और वो फिर फॉर लाइफ टाइम आपके साथ रहती है वो। और वो बॉन्डिंग जो होती है नेशनल डिफेंस अकेडमी में, वो रगड़ा के साथ ही होती है।
0: ओके,
1: बेसिकली रगड़ा होता है। एंड देयर इज लॉट ऑफ एकेडमिक्स, ऑफ कोर्स वी हैव ए डिग्री फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी,
0: ओके,
1: इन बीएससी एंड बीए। अदर देन दैट द सब्जेक्ट्स आर ऑल मिलिट्री साइंस, मिलिट्री ज्योग्राफी एंड देयर आर फील्ड एक्सरसाइजेस। लेकिन हम जो एनडीए से जो होते हैं, वी आर बॉन्डेड सो वेल। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम भी बॉन्डेड है।
0: ओके,
1: और अभी भी हम लोग रिटायर हो चुके हैं पीपल, माय कोर्समेट्स हैव बीन जनरल्स, ब्रिगेडियर्स, बट वी स्टिल रिमेन एंड टॉक लाइक एज इफ वी वर इन एनडीए।
0: आपने व्हाट्सएप का नाम लिया, तो आज एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दूं कि हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है, आप उसके साथ, उसके जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070, 9868107070। कोड वर्ड्स कुछ ऐसे होने चाहिए सर कि जल्दी समझ में आ जाए। आपको 15 साल की उम्र में किसने प्रेरित किया कि आप फौज में जाइए, एनडीए में जाइए?
1: देखिए, मेरे फादर एयरफोर्स में थे
0: जी,
1: और हम लोग एक फौजी फैमिली कह लीजिए आपको। मेरी सिस्टर आर्मी में डॉक्टर थी, वो उन्होंने शादी भी एक आर्मी ऑफिसर से की जो कि एज ए आर्मी कमांडर जनरल रिटायर हुए हैं। और हमारे टाइम पे फौज के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था हमारी फैमिली में।
0: ओके, फौज में ही जाना है।
1: शुरू से ही एनडीए की तैयारी करनी है और यूनिफॉर्म पहननी है, क्योंकि फादर को देखा था यूनिफॉर्म में, और कोई कुछ उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं।
0: मदर मदर तैयार थी कि फौज में जाइए, इतने सारे फौजी घर में, बोला नहीं उन्होंने ये बच्चा भी जाएगा वहां।
1: उनके हस्बैंड भी थे फौज में, उन्होंने फौज के बाहर फ्रेंकली कोई लाइफ ही नहीं देखी हमने। हमारा जो फौजी कंटोनमेंट्स होते हैं, दे आर आल्सो ए क्लोज निट फैमिली, सारा सेल्फ सफिशिएंट होते हैं वहाँ पे, फ्रॉम ऑफिसर्स मेस टू टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल्स, योर मूवी थिएटर, एवरीथिंग इज सेल्फ सफिशिएंट। यू डोंट रियली हैव टू गो आउट इन स्मॉल लिटिल स्टेशंस टू द सिविलियन एरिया।
0: सो इज दैट एडवांटेज, और You think you miss something अगर civilian area में नहीं जा रहे, कुछ ऐसा?
1: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। Actually, most of the cantonments or army stations are in the field areas. So field area में तो you have to be self-sufficient, because आपको कुछ मिलता नहीं है इतना जो आपको चाहिए, चाहे राशन हो, चाहे जो एंटरटेनमेंट चाहिए, वो तुम्हारे आस पास ही होनी चाहिए।
0: जी,
1: मेट्रो सिटीज में दूसरी बात है।
0: ओके,
1: वी हैव ऑफ कोर्स अप्रोच टू मॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स एंड सो ऑन। कभी कभी आते हैं फील्ड में, अगर आप पोस्टिंग कर लें तो अगली पोस्टिंग मोस्ट प्रोबेबली टाउन में दे देते हैं उसको थोड़ा रेस्ट देने के लिए।
0: ओके, मुझे ये बताइए कि आपने अपने फादर के साथ, आपके फादर की तो पोस्टिंग होती रहती होगी, जब वो एयरफोर्स में थे तब आप ज्यादा स्टेशंस में गए, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग सिटी, लाइफस्टाइल अलग, भाषा अलग, खान पीन अलग, पढ़ाई भी अलग हो गई होगी।
1: यस।

0: बिल्कुल सही बात है, ये एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी, बट आई टेक इट एज एन एडवांटेज बिकॉज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट इज़ दैट
1: जी
0: यू एक्चुअली कम टू सी सो मेनी प्लेसेस, ए न्यू
1: यस
0: प्लेस एवरी टू
1: यस
0: ईयर्स थ्री ईयर्स,
1: जी
0: एंड आई आई रियली लव दैट. एंड एक्चुअली वेरी फ्रेंकली स्पीकिंग आई स्टिल लव टू ट्रैवल बिकॉज ऑफ दैट परहैप्स इन यू नो थिंग विच हैव गॉन थ्रू. एंड आफ्टर ए वाइल मेरे फादर ने सोचा भाई बहुत घूमना हो गया है बच्चों को, तो मुझे हॉस्टल में डाल दिया, A4 स्कूल में, सुब्रोटो
1: ओके
0: पार्क दिल्ली में,
1: ओ
0: बोर्डिंग स्कूल,
1: टैप्स कहते थे उसे,
0: टैप्स. हाँ,
1: टैप्स।
0: अब टैप्स हो गया,
1: आपका
0: पहले
1: और मेरा एक
0: पहले
1: कनेक्शन है फर्स्ट
0: AFCS
1: का।
0: होता
1: ओके
0: था. सो उसमें बोर्डिंग स्कूल में डाला तो डिसिप्लिन और बढ़ जाता है, एनडीए की तैयारी हो गई. सो दैट इज़ हाउ द एकेडमिक्स वॉज. लकीली आई वेंट थ्रू द एनडीए एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट
1: जी,
0: एंड एनडीए चले गए.
1: और हमने अपने श्रोताओं को बताया कि आप टैंक रेजिमेंट के साथ जुड़े, T-72 टैंक के बारे में हम बात करते हैं, अहमदनगर में। आपके आपकी पहली पोस्टिंग गुजरात में थी
0: नहीं, पहली पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में होती है
1: जी।
0: सबसे पहले, उसके बाद वहाँ 6 महीने बिता के हम लोग एक यंग ऑफिसर्स कोर्स करते हैं जो हमारा टैंक्स का कोर्स अहमदनगर में होता है.
1: ओके
0: तो वहाँ पे हमको एक्चुअली रियली टैंक के बारे में पूरा पता चलता है, उसकी ट्रेनिंग, फायरिंग, उसका DNM जो होता है, ड्राइविंग, मेंटेनेंस, गनरी, उसकी रेडियो कैसे चलती है. और उस ज़माने में जब मैंने ज्वाइन किया था तो हमारे पास विजंत होते थे
1: या
0: और
1: विजयंत
0: T-55,
1: या
0: और उसके बाद देन T-55 से हम T-72 में ग्रेजुएट हुए
1: जी,
0: जिस पर मैं इंस्ट्रक्टर भी था.
1: ओ
0: मैंने
1: वाओ,
0: अहमदनगर में आई वॉज इंस्ट्रक्टर ऑन T-72 टैंक, एंड अब तो T-90s एंड अर्जुन आ गए हैं उसके भी अपग्रेडेड वर्जन्स.
1: अपग्रेडेड वर्जन है सर। टैंक के बारे में मैं जानना चाहूंगा क्योंकि हमारे जो श्रोता हैं दे वुड आल्सो वांट टू लिसन कि टैंक का पहला जब आप देखते हैं, एक स्ट्रक्चर देखते हैं तो फौलाद लगता है पूरा, है ना। सो यू वेंट देयर बाय चॉइस और
0: माई फर्स्ट चॉइस इन द इंडियन मिलिट्री अकेडमी वॉज द टैंक रेजिमेंट आर्मर
1: ओके
0: को, एंड आई जॉइन द रेजिमेंट कॉल्ड द डेक्कन हॉर्स
1: डेक्कन हॉर्स,
0: जो कि 1790 में रेज हुई थी एज द
1: वाह,
0: प्राइवेट आर्मी ऑफ द निज़ाम ऑफ हैदराबाद. एंड
1: ऑलराइट,
0: देन इट वेंट थ्रू वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट बिकेम रॉयल डेक्कन हॉर्स एंड देन द डेक्कन हॉर्स आफ्टर 1947. एंड वी हैड ए मुस्लिम स्क्वाड्रन इन बिफोर 1947.
1: अच्छा,
0: आफ्टर पार्टीशन दैट स्क्वाड्रन वेंट इन टू पाकिस्तान इन ए रेजिमेंट कॉल द प्रोबिंस हॉर्स.
1: ओके,
0: फॉर क्वाइट सम टाइम एक्चुअली स्ट्रेंजली वी टू हैव अ कॉमन न्यूज लेटर ऑल्सो आई थिंक, वेयर प्रोबिंस हॉर्स सॉर्ट ऑफ बिकेम अ सिस्टर रेजिमेंट
1: ओके
0: दो इन ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर.
1: ओके
0: एंड वी हैड वन ऑफिसर ऑल्सो टिल क्वाइट लेट गोइंग टू लंडन UK टू अटेंड द ब्रिटिश ऑफिसर्स हूज टू होस्ट
1: जी,
0: देयर फादर्स और दे देमसेल्व सर्व्ड इन द रॉयल डेक्कन हाउस और द प्रोविंस हाउस. सो इट
1: सर
0: वाज क्वाइट अ
1: डेक्कन हॉर्स के साथ जुड़ने के बाद वो जज्बा कैसा आया, कुछ वो अंदर की, आपके अंदर की भावना यू वांट टू शेयर विद अस।
0: यस, आई वाज ऑलवेज अ कैवलरी मैन. हम ब्लैक बेरेज पहनते हैं, काली टोपी,
1: जी
0: एंड हम लोग वन ऑफ द टू फाइटिंग आर्म्स हैं, एक इन्फेंट्री होती है एक टैंक्स होते हैं. जो
1: ओके
0: इन्फेंट्री होती है वो
1: जी
0: बेसिकली जब लड़ाई होती है तो अगर पहाड़ों में है तो इन्फेंट्री आगे होती है, टैंक्स नहीं जा सकते, लेकिन पंजाब या राजस्थान जो प्लेन्स में होता है तो सबसे पहले जब लड़ाई शुरू होती है टैंक्स आगे जाते हैं,
1: ओके
0: वो लीड करते हैं,
1: ओके
0: दे ऑक्यूपाई ए पीस ऑफ लैंड एंड देन द इन्फेंट्री गोज एंड ऑक्यूपाइज इट,
1: जी
0: ये अब हमारा हुआ एंड यू गो फॉर योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. सो दैट इज़ ऑट द टैंक्स टू. इट्स ए टफ लाइफ, गर्मी होती है, अंदर बैठने की बहुत कम जगह होती है.
1: हाँ, वो थोड़ा हम जानना चाह रहे थे कितनी जगह होगी सर लगभग।
0: आपने पता नहीं वो अभी मूवी आई थी 21 करके
1: जी
0: जो पूना हाउस की,
1: जी
0: अरुण खेतरपाल
1: जी
0: पर,
1: जी जी
0: तो उसमें टैंक कमांडर की एक ही सीट होती है, ये ऊपर का पोला होता है, उसमें बैठ के ही जाना है, वहीं सोना है, अपने सब कुछ वहीं करना है.
1: ओके
0: एक स्ट्रेंज बात मैं आपको सीक्रेट
1: जी
0: बताता हूँ
1: जी
0: कि विजंत टैंक में बहुत जगह होती थी, तो
1: अच्छा
0: हम लोग जो जवान जब ड्राइवर एक्सरसाइज कर रहा होता तो आपने रेस्ट करना है, आप नीचे स्लीपिंग बैग लगा के सो भी सकते थे.
1: अच्छा
0: लेकिन जो रशियन टैंक है वो बड़ा कॉम्पैक्ट होता है,
1: विच इज T-92
0: T-72,
1: 72
0: T-55,
1: ओके
0: T-54 होते थे उसके
1: ओके
0: पहले, अब T-90s कॉम्पैक्ट टैंक उसमें

0: गनर होता है, एक कमांडर होता है, एक ड्राइवर होता
1: उसके
0: है।
1: पीछे भी कोई वजह है कि आप
0: वेल
1: अंदर उतना स्पेस नहीं दे रहे हो?
0: नहीं, उसमें बिकॉज स्पेस इसलिए नहीं है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ अदर गैजेट्स इन दैट, बहुत सारे गैजेट्स हैं, यू नो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, यू नो गनरी के गैजेट्स हैं, रेडियो के गैजेट्स हैं,
1: गॉट इट.
0: ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस के गैजेट्स हैं, सो यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम, देर इज लॉट ऑफ एमिनेशन स्पेस दैट इज केप्ट टू लोड एंड रीलोड द बैरल।
1: राइट, तो आज के टैंक्स भी डिजिटाइज हो गए हैं?
0: सॉर्ट ऑफ
1: सॉर्ट ऑफ
0: डिजिटाइज, तो कंप्यूटर तो नहीं है अंदर एज फार एज आई नो नाउ,
1: देखिए
0: बट
1: सिविलियन हूँ, सिविलियन वाले सवाल पूछूंगा।
0: हाँ जी,
1: क्या पता आपके पास एक GPS है, आपको अपनी लोकेशन, अपना रूट आप देख रहे हो, यू नेवर नो।
0: यस,
1: अंदर आपके पास जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो शायद बदल गई हो, इट्स मोर टूवर्ड्स कुछ ऐसा जानना चाह रहा
0: था। के पास पहले एक नेविगेशन सिस्टम होता था क्वाड्रात,
1: ओके,
0: वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम था, खाली कमांडिंग ऑफिसर्स के टैंक में लगा होता था।
1: जी
0: लेकिन अब तो यू नो GPS है तुम्हारे पास, इनफैक्ट आई थिंक एक्चुअल वॉर, टैंक्स की वॉर रियली स्पीकिंग हुई नहीं है,
1: ओके,
0: लेकिन नेविगेशन इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम नाउ एज यू नो, यू हैव इवन गूगल मैप्स,
1: हाँ
0: यू हैव
1: वही वही मैं
0: एवरीथिंग।
1: जानना चाह रहा था आपसे कि
0: सो
1: आप सोचिए एक, अगर मैं सिविलियंस के लिए थोड़ा समझना चाहूँ, सोचिए हमारे टैंक्स हैं, एक एक समय में अगर 10 टैंक्स अटैक के लिए जा रहे हैं, आपने सारा जो प्लान है, आपका जो मिशन है, वो सब कैलकुलेटेड है,
0: करेक्ट,
1: पर किसी वजह से आपको थोड़ा सा डाइवर्ट होना पड़ा, 4 टैंक्स इधर गए या उधर गए, या आप ऐसे माहौल में फंस गए जहां आपके यू नो व्हाट यू प्लान कुड नॉट हैपन, नाउ यू हैव टू फेस, सो हु गाइड्स द रूट, वहां आप कैसे वो गाइडेंस लेते हैं?
0: सी देखिए ऐसा होता है, पहले तो ये सारी डिस्कशन सैंड मॉडल पे हो जाती है,
1: ओके,
0: कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना, देर इज हमें मैप्स, हमारे जमाने के टाइम में बता रहा हूँ, मैप्स इशू होते थे, ग्रिड मैप्स, और उस पर हम लोकेशन कर देते अपने ऑब्जेक्टिव्स और कैलकुलेट कर लेते थे कितना टाइम है, किस स्पीड पे कितने टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने के लिए। फिर हमारे ईच रेजिमेंट में एक थ्री तीन स्क्वाड्रन होते हैं और हर स्क्वाड्रन में ट्रुप्स होते हैं, तीन ट्रुप्स, हर ट्रुप में 3 टैंक होते हैं, तो यू नो सो बेसिकली यू हैव ए स्क्वाड्रन कमांडर, ए ट्रुप लीडर जो सबसे जूनियर होते हैं, देन यू हैव ए स्क्वाड्रन कमांडर एंड देन यू हैव द रेजिमेंटल CO, दे ऑल आर ऑन अ रेडियो नेट टुगेदर,
1: ओके,
0: सो जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं वो आपको इंट्रा नेट पे सारी इंस्ट्रक्शन सेम मिल रही है, अल्फा स्क्वाड्रन आप लेफ्ट जाइए, चार्ली स्क्वाड्रन आप राइट जाइए, ब्रावो स्क्वाड्रन होल्ड करिए, यहाँ पे होल्ड फायर, ये सारी होती है। जो CO होता है वो एक दूसरे नेट पे होता है जो उसके बॉस के साथ होता है, ब्रिगेड कमांडर है और GOC के साथ, उसको वहां से इंस्ट्रक्शन आ रही है, वो इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिलती है,
1: ओके,
0: हम लोग अपने रेजिमेंटल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, जो CO ऑर्डर करता है कि ठीक है राइट फ्लैंक से फायर आ रही है, चार्ली स्क्वाड्रन आप राइट फ्लैंक पकड़िए, अल्फा स्क्वाड्रन आप लेफ्ट फ्लैंक,
1: स्पोर्ट्स वाली लैंग्वेज आ रही है, राइट फ्लैंक लेफ्ट फ्लैंक, फुटबॉल वाली,
0: इनफैक्ट दैट इज द लैंग्वेज यूज्ड आल्सो इन द आर्मी,
1: अच्छा,
0: देयर फ्लैंक्स आर देयर। देखिए बेसिक वॉर का टेक्निक होता है कि अगर एनिमी फायर कर रहा है तो आपको एनिमी का हेड डाउन कर रखना है,
1: ओके,
0: क्योंकि अगर आपने अटैक करना है उसके पहले एनिमी को बोलना है भाई यू मेक हिम बिजी एल्सवेयर, यू टेल योर आर्टिलरी कि वो गोले बरसाए उनके ऊपर, वो ट्रेंचेस में है या जहाँ पर भी है या टैंक्स में, और यू टेल योर एयर फोर्स टू बम्बार्ड ए पर्टिकुलर टैंक सेक्शन,
1: ओके,
0: सो दैट द एनिमी इज बॉग डाउन एंड इट इज बिजी बिकॉज इट्स डाउन बिकॉज इट इज बीइंग बम्बार्डेड फ्रॉम ऑल ओवर एंड दैट इज द टाइम यू हैव योर ऑलरेडी सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस टू गो फ्रॉम द लेफ्ट और द राइट और फ्रॉम द रेयर एंड अटैक द एनिमी। You don't want to face an enemy which is up and about and free to fire at you.
1: शायद यही guns जो हैं कारगिल में भी कुछ ऐसे ही हो रहा था।
0: हाँ।
1: उसके बारे में बात करेंगे सर, क्योंकि एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेने का मन कर रहा है। आप लोगों की तरफ से ये गीत हमारे सिविलियन भाइयों के लिए।

0: संदेश टू सोल्जर्स आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है मुनीश जॉली और हमारे साथ आज के जो मेहमान है संदेश टू सोल्जर्स में वो है मेजर एस के यादव। आपका निक नेम मिकी है,
1: करेक्ट,
0: एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट?
1: क्लास टू में मेरी स्कूल टीचर ने मेरा नाम रख दिया था मिकी माउस और दैट नेम स्टक। वेरी फनीली आमटपोर में अगर आप किसी को बोलोगे डू यू नो मेजर स्वदेश कुमार यादव, दे विल लुक ए ब्लैंक, बट इफ यू टेल देम यू डू नो मेजर मिकी यादव, दे विल ऑल नो।
0: ओह वंडरफुल, रियल मेट्स आप लोग रहते हैं फौज में, है ना सर?
1: एब्सोल्युटली।
0: हम लोग टैंक्स के बारे में बात कर रहे थे, टैंक की लाइफ। आपने कहा कि अंदर की लाइफ लगता है कि टैंक जा रहा है, टैंक ने फायर किया, ये हुआ हुआ, लेकिन अंदर की लाइफ उतनी आसान नहीं होती है, आप बिजी रहते हैं, है ना?
1: 55 डिग्रीज तक हीट में, समर्स में टेम्परेचर जाता है, उसके अंदर रहना पड़ता है। और एक्चुअल वॉर सिनेरियो में तो आपका कपोला ऊपर से बंद है, सीन है, एंड यू आर एक्चुअली लुकिंग थ्रू अ सॉर्ट ऑफ ए पेरिस्कोप, उसमें से आप देख रहे हैं एनिमी को। सो इट्स ए वेरी टफ सॉर्ट ऑफ ऑपरेशनल लाइफ इन द टैंक, इनसाइड द टैंक।
0: ऑलराइट, हम जब 26 जनवरी की परेड में देखते हैं कि टैंक्स आ रहे हैं और जो भी कमांडर हैं वो सल्यूट ले रहे हैं माननीय राष्ट्रपति जी से, लेकिन टैंक चलाने वाले कोई और हैं, तो वो उसी पेरिस्कोप से रूट देख रहे हैं?
1: हाँ, इनफैक्ट आई मस्ट इन्फॉर्म यू दैट मैंने वन ऑफ दिस परेड्स कमांड की है।
0: ओह वाओ,
1: कॉम्बैट टीम एज ए यंग मेजर था तब मैं
0: जी,
1: तो मैंने रिपब्लिक डे परेड पे आई गेव द सल्यूट टू द प्रेसिडेंट। तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बेसिकली एक गनर होता है और जब सल्यूटिंग डाइस पे जाते हैं तो गनर को इशारा मिल जाता है कब उसने गन को राइट टर्न करना है और डिप करना है, विच इज द सल्यूट, रेस करना है, सामने जाना है और कैरी ऑन करना है। तो दैट इज द ऑर्डर, दैट इज ऑल द गनर्स टेक्निक, द कमांडर हैज टू ओनली सल्यूट विद हिज हैंड।
0: सब बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि 26 जनवरी की परेड पर मैं भी जो आंखों देखा हाल है वो हम लोग कमेंट्री कर चुके हैं वहाँ पे, बट जब आप लोग टैंक्स लेके वहाँ जाते हैं ना, हम लोग को बड़ा बहुत गौरवान्वित फील करते हैं कि हिंद की सेना जा रही है ये।
1: हाँ, टैंक एक सिंबल बन गया है सॉर्ट ऑफ आर्मर्ड आर्मी का, जो आर्मर्ड विंग है उसका, जो तोपखाना कह दीजिए
0: जी,
1: तो इट इज बिकम अ सॉर्ट ऑफ, यस इट इज डिवेस्टेटिंग एंड इट इज, आई हैड ए गुड टाइम इन माय टैंक रेजिमेंट, बिकॉज फील्ड फायरिंग होती है, हमारी प्रैक्टिसेस होती है रेंजेस पे, उसमें तो काफी कुछ ट्रेनिंग होती है उस पे, दैट इज हाउ यू सॉर्ट ऑफ टैंक वॉरफेयर इज ऑपरेटेड।
0: और वो जो आपकी ट्रेनिंग है दैट इज a tough training, it is not like chalo yaar aao practice karte hain, no, it's like that's the real war situation,
1: real life scenario, war situations create hoti hain
0: ji
1: Rajasthan deserts mein, aur wahan jaakar hum log practice karte hain।
0: Okay सर, मैंने कुछ मैसेजेस मंगाए हैं कुछ बहुत देश प्रेम के साथ, बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं वो मैसेज भेज रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे कि अहमदनगर से एक मैसेज आया और वो कह रहा है मेरा नाम गजानन शिंदे, गांव करजत जिला, और उसका नाम अभी अहिल्या नगर कर दिया गया है। सर ने अभी अहमदनगर की बात की तो मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। आप शायद इनको तो गजानन शिंदे जी को नोन टू यू?
1: नॉट नोन टू मी बट यस देर आर लॉट ऑफ शिंदे इन दैट रीजन, एंड अहमदनगर का जो आमटको स्कूल सेंटर एंड स्कूल है
0: जी,
1: वो एक सेंट्रल पॉइंट है, मेनली उसी की वजह से वो टाउन ग्रो किया है एक तरह से।
0: ओके,
1: जो सारी ट्रेनिंग जो हमारी होती है, चाहे रेडियो की, ड्राइविंग एंड मेंटेनेंस की, गनरी की ट्रेनिंग, टैक्टिकल ट्रेनिंग, वो सारी जो बेसिक्स होती है वहीं पे हम लोग सीखते हैं,
0: एंड एवरीवन नोज अबाउट इट, देयर इज नो सीक्रेट इन इट। क्योंकि आप एयर पे बोल रहे हैं तो मैं अगर अहमदनगर के लोकेशन भी बता दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं,
1: इट्स अ पीस स्टेशन एंड इट इज बेसिकली ट्रेनिंग

0: ट्रेनिंग हम लोग जाते हैं
1: शिरडी के पास जो अहमदनगर है, आप उसकी बात कर रहे हैं। ऑलराइट, आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे वहाँ सर, वो जो आप फायर करते हैं जब टैंक से, उसकी एक्यूरेसी पे तो बहुत काम करते होंगे आप लोग।
0: हाँ, तो उसी के लिए हम फील्ड फायरिंग ट्रेनिंग करते हैं
1: जी,
0: जो कि हमारे रेंजेस हैं वेरियस प्लेसेस पे, बबीना में है, झांसी के पास, तो वहाँ पर जाके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, गनरी देखते हैं पूरी। एंड उसमें एक चीज़ होती है, आपको इंटरेस्टिंग बताऊँगा कि जब मैं यंग ऑफिसर था तो एक एम ऑफ होता है, मैं एक एक्सरसाइज में था कॉल्ड ब्रास टैक्स, जो ऑपरेशनल था, ऑलमोस्ट वी हैड गॉन अक्रॉस एंड आई वाज कमांडिंग ए स्क्वाड्रन। एंड वहाँ पे हम लोग चाय पी रहे थे सुबह सुबह, रात को हमें ट्रैवल, हम खाली रात को अपने कैमोफ्लाज नेट निकाल कर रात को घूमते थे और अपनी लोकेशन चेंज करते थे एवरी नाइट, क्योंकि हम लोग स्पॉटेड हो जाते थे, और डे टाइम में अपने कैमोफ्लाज नेट लगा के चुप के बैठते थे। तो डे टाइम में हम सोते थे, रात को जगते थे।
1: ये कौन सी लोकेशन थी सर, अभी बताना ठीक है?
0: समवेयर इन द डेजर्ट बॉर्डर, यू नो उसके जैसलमेर के आगे आसपास, बॉर्डर के टाइम
1: जी।
0: तो वहाँ पे मुझे याद है सुंदर जी आर्मी चीफ थे और मैं चाय वगैरह, चाय नहीं पी रहा था, सॉरी 11 बज गए थे, 10-11 बज गए थे। सो
1: मत बताइए क्या पी रहे थे रात के 10-11 बजे।
0: दो तीन हेलीकॉप्टर्स ऊपर घूम रहे थे, तो उस जमाने में ये जहरो वगैरह इतना, नेविगेशन की जो आप बात करें इतना नहीं था, जो पायलट्स होते थे वो अपने थाइस पर एक मैप रखते थे और उसको
1: आजकल भी रखते हैं।
0: हाँ, रखते हैं, वो
1: हम लोग रखते हैं,
0: डेजर्ट में बड़ी मुश्किल होती है नेविगेशन, कई बार खो जाते थे कि भाई कहाँ जाना है, तो हम लोग अपनी टोपी शोपी लाते थे, वो नीचे आ जाते थे, निकलते थे, एनडीए का ही निकला कोई कोर्स में हेलीकॉप्टर, तो एक हेलीकॉप्टर नीचे निकला, उसमें से निकले सुंदर जी एंड एक थे जो हमारे तब के अरुण सिंह जी, राज्य रक्षा मंत्री, तो वो आ गए और सुंदर जी मुझे पहचान गए क्योंकि मैं एडीसी था आर्मी चीफ का। तो उसने बोला, मिकी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, सर मैं आई एम कमांडिंग स्क्वाड्रन हियर। तो उन्होंने बोला, आप इनको अरुण सिंह जी को ना टैंक के बारे में बताइए। तो मैं इंस्ट्रक्टर था, तो मैं टैंक पे उनको ले गया ऊपर, बट आई वॉज सरप्राइज दैट ही हैड सो मच नॉलेज अबाउट दैट टैंक।
1: अच्छा,
0: तो अभी आपने एमिंग की बात की, तो उन्होंने मेरे से एक चीज पूछा कि आप अगर एम ले रहे हैं एनिमी के टैंक के ऊपर तो आप सीधा फायर करते हैं के थोड़ा? तो मैंने कहा, नहीं सर, उनको मालूम था एक चीज होती है एम ऑफ, अगर यहाँ से आप फायर कर रहे हैं 1 किलोमीटर दूर
1: जी,
0: तो आप सीधा फायर करेंगे तब तक टैंक निकल जाएगा, तो आपको एक एम ऑफ लेना पड़ता है।
1: गॉट इट,
0: कि आपने उस पॉइंट पे लाना है और कैलकुलेट करना है कि वो टैंक उसी पॉइंट पे यूं ऐसे तभी आएगा,
1: मूविंग व्हीकल पे आपको कैसे स्ट्राइक करना है।
0: सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड वेरी टेक्निकल, एंड आई वुड कॉम्प्लीमेंट दैट टाइम आरआरएम, आई मीन ही हैड लॉट ऑफ नॉलेज।
1: कोई कॉम्बैट कभी मौका मिला?
0: हाँ, मुझे वैली शैली में, नॉर्थ ईस्ट में मौका मिला है। एक्चुअल लड़ाई तो 71 वॉर की देखी नहीं, हम तो बच्चे थे
1: जी।
0: कारगिल वॉर तक मैंने फौज छोड़ दी थी, शायद नॉट लेफ्ट एंड टेकन पार्ट, बट देन टैंक्स का इतना रोल नहीं था वहाँ पर।
1: पर पहाड़ों में हम लोग जब बात कर रहे थे कि जिस तरीके से शेलिंग हम लोग करते थे, आप अभी हमें टैंक्स के जब आप बता रहे थे कि किस तरीके से आप आपका जो दुश्मन है उसका हेड डाउन करने पर मजबूर करते हैं, कैन वी कम बैक टू दैट?
0: यस, सो व्हाट हैपेंस इज दैट, लेट मी टेल यू अबाउट कारगिल ऑल्सो। कारगिल में भी जो लड़ाई हुई है ऊपर जो चढ़े हैं, जो सपोर्टिंग जो फायर्स दिए हैं वो आर्टिलरी गन्स ने दिए हैं, वो सॉफन करते हैं टारगेट को। सॉफन मतलब कि जो बंकर्स हैं ऊपर उनके ऊपर धड़ाधड़ बहुत हैवी फायरिंग होती है, और दैट इज द ओनली वे वेयर जो इन्फेंट्री है उसको एक वर्टिकल क्लाइम करनी है। तो ऊपर से तो वो शूट डाउन हो जाएंगे, तो उनका सिर नीचे रखना है, उनका ध्यान निकालना, उनको इतनी हैवी बम्बार्डमेंट करनी है कि वो खड़े होकर शूट भी ना कर पाए और हमारी फौज वहां तक पहुंच जाए। तो दैट इज एन अटेम्प्ट, उसमें मरते हैं और कुछ जांबाज जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं वहां जाके और फिर हैंड टू हैंड फाइट होती है,
1: जो कि हुआ, मतलब हमने देखा वहां,
0: बिल्कुल हुआ।
1: हमारे पीवीसी जो हैं परमवीर चक्र से विजेता हमारे शो में भी आ चुके हैं।
0: यस यस एब्सोल्युटली,
1: संजय कुमार।
0: और यही चीज जब पंजाब साइड या प्लेन्स में होती है वहाँ टैंक्स का रोल,
1: वहाँ टैंक्स का रोल,
0: क्योंकि वहाँ पे कोई चढ़ाई नहीं करनी है, वहाँ पे बैटल फील्ड आ रही है, टैंक कॉलम्स आ रहे हैं, आरटी आ रही है, आपने टेक ओवर करना है, तो टैंक्स लीड करते हैं वहाँ पे। और आजकल तो बीएमपी आ गई है जिसमें, और टैंक्स पर भी इन्फेंट्री को हम अपने पीछे कैरी करते हैं,

0: राइट
1: तो हम आगे तक जाते हैं और टैंक्स एक्चुअली गो एंड अटैक, टेक ओवर द प्लेस एंड कैरी ऑन फॉर द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव. इन्फेंट्री जो पीछे आ रही होती है बीएमपी में, वो उतरती है और फिजिकली वहाँ पहुँच जाती है पॉइंट पे, अपने ट्रेंचेस डिग करती है और वो बैठ जाती है, ये हमारा हो गया एरिया.
0: बट सर
1: तैतीस अगस्त
0: आज के टाइम में जस्ट अ लेमैन क्वेश्चन, टैंक जहाँ पे हम मिसाइल की बात कर रहे हैं, हम ड्रोन अटैक्स की बात कर रहे हैं, तो टैंक के लिए इट्स मोर डिफिकल्ट द रेजिमेंट, और इट्स लाइक दे हैव देयर ओन वेज टू हैंडल सच अटैक्स?
1: यू सी ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है,
0: जी
1: दिस वॉज ए टोटली डिफरेंट ऑपरेशन. इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम वी एक्चुअली डिड नॉट रियली क्रॉस द बॉर्डर एंड वी हैड रिमोट कंट्रोल्ड ड्रोन्स. वी सेट ऑफ मिसाइल्स विदाउट क्रॉसिंग द बॉर्डर. द एयरक्राफ्ट शॉट देयर टारगेट्स विदाउट रियली क्रॉसिंग द बॉर्डर. इट वॉज ए टोटली डिफरेंट गेम एंड आई वुड क्रेडिट दिस वॉर अ लॉट टू द इंडियन आर्टिलरी, बिकॉज आर्टिलरी का रोल बड़ा हैवी था इधर. दे हैव दिस लॉन्ग रेंज गन्स एंड दे हैड देयर ओन टारगेट्स एंड दे वर डूइंग इट. मौका नहीं मिला ऑपरेशन सिंदूर में. शायद अगर वॉर 2-4 दिन और चलती तो आर्मोर्ड और इन्फेंट्री भी अंदर जाके फिर करना पड़ता, तो वो दूसरी बात थी, लेकिन वो हुआ नहीं.
0: ओके राइट सर, एक हमारे लिसनर हैं एंड ही इज फ्रॉम तमिलनाडु, श्री रंगम राजेश, श्री रंगम तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से लिख रहे हैं मैसेज, एंड आपको गुड इवनिंग कहते हो, कह रहे हैं कि बॉन्डेड मेजर एस के यादव सर, मिकी यादव सर, ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड द कंपनी हियर, एंड ऑफ कोर्स हम यहाँ पर उनका जो मैसेज पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं मराठा ग्रीटिंग्स टू योर बॉन्डेड व्हाट्सएप टू एंड योर MH16 अहमदनगर अहिल्या नगर मराठा बॉन्डेड रेजिमेंट टू एंड बॉन्डेड कैवलरी कैवले यादव सर टू. आई डोंट नो वॉट ही मीन्स बाय दैट, बट समथिंग ही इज रिटन टिपिकल ऑफ महाराष्ट्र इज वणक्कम, एंड दैट इज समथिंग वेरी स्वीट.
1: यस
0: समबडी
1: यस
0: नोन
1: यस
0: टू यू?
1: यस नो नॉट नोन टू मी, बट
0: ओके
1: यू नो वनकम आई थिंक इज नॉट ए महाराष्ट्रियन वर्ड, परहैप्स तमिल
0: हाँ,
1: वर्ड,
0: तमिलनाडु से लिख रहे
1: बट
0: हैं
1: ही
0: और
1: हैज द स्पिरिट
0: सारा किया,
1: एंड
0: जय हिंद,
1: यस
0: जय
1: जय
0: महाराष्ट्र,
1: किया
0: जय
1: एंड
0: तमिलनाडु, जय
1: कैवलरी.
0: भारत, दैट्स द स्पिरिट दैट वी लिव विद है ना सर.
1: कैवलरी रेजिमेंट को ऑफिसर्स को कई बार कैवलियर बोल जाते हैं, सो
0: ओके
1: दैट इज व्हाट इज मेंट.
0: ओके सूरज जी हमें दिल्ली से कह रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं 20 वर्ष का हूँ और सिविलियन हूँ, बहुत डिसिप्लिन रहना चाहता हूँ, कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों की बातें सुन के प्रोत्साहन मिलता है, और साथ ही साथ हम आगे बढ़ रहे हैं सर. आपने ऑपरेशन सिंदूर की जब बात की, तो मैं फिर से जानना चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा, इफ़ इट्स अलाउड टू डिस्क्लोज, हमारी टैंक रेजिमेंट एक्टिव तो थी पर कितना, मतलब बहुत चौकन्नी भी थी, एंड इट्स लाइक
1: नो नो इन इंटायर ऑपरेशन सिंदूर में
0: जी
1: ऑल आवर फाइटिंग आर्म्स वेदर द टैंक्स इन्फेंट्री दे वर इन ऑपरेशनल स्टेज.
0: जी
1: छुट्टी लीव वॉज ऑल कैंसल्ड. वन डिड नॉट नो विच वे द वॉर वुड गो
0: ओके
1: एंड इनिशियल वॉर जो शुरू हुआ है दैट वॉज ऑल एज आई सेड एन एयरफोर्स वॉर एन आर्टिलरी वॉर. द टैंक्स एंड द इन्फेंट्री वॉज नॉट यूज बट दे वर ऑपरेशनली रेडी टू गो इन शुड द ऑर्डर्स कम एंड दे वर एब्सोल्युटली रेडी टू गो.
0: ओके मैं सीधे टफ क्वेश्चंस पूछता हूँ सर आपसे, क्योंकि आप टैंक रेजिमेंट, आप उसका अंग रह चुके हैं, यू हेडेड योर ओन ग्रुप, इज इट बिकम मोर डिफिकल्ट नाउ टू स्टेप इन टू द एनिमी जोन इस मॉडर्न एरा में?
1: यू सी देखिए ऐसी बात है कि टेक्नोलॉजी जिसके पास है आई वुड से ही इज हैज एन अपर हैंड.
0: सुपीरियर है वो.
1: यस
0: ओके
1: सो अपेरेंटली द चाइनीज डिड गिव देम लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी ड्यू टू विच दे वर सम अर्ली दे ट्राई टू डू समथिंग हेयर एंड देयर. टर्की इंटरवीन्ड गिव देम द ड्रोन्स एंड स्टफ लाइक दैट.
0: जी
1: बट वी आर देखिए टेक्निकली एंड अदरवाइज पाकिस्तान इज नो मैच टू द इंडियन आर्मी एट ऑल एंड आई एम सेइंग दिस ऑन एयर. There is no match at all. In a live war, in a conventional war today, they would not last more than 72 hours at the most. Not at all. There is no match at all.
0: सर हमें न्यूज़ ऑन AIR के माध्यम से हमारी सरहदों के पार फिजी आइलैंड से लेकर ब्राज़ील, कनाडा, यूरोप, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट में सुना जा रहा है. दैट्स अ बोल्ड कॉमेंट, अ स्टेटमेंट दैट
1: No,
0: यू
1: I
0: गिवन.
1: meant every word of it. And knowing the Indian army.

0: the capabilities, yes. It has not been tested fully in operational Sindoor, but should it be repeated ever, I think it'll come to light what the Indian Army means about.
1: ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अफसोस की बात है ना सर, और एक तरीके से हम एनिवर्सरी मना रहे हैं, थोड़ा दुख है कि पहलगाम में वो चीज़ हुई और उसके बाद भारत ने जवाब दिया, दुख है कि हमारे को सिविलियन लाइव्स खोनी पड़ी, उसका तो दुख है। एक छोटी सी, अगर आप परमिशन दे तो एक छोटी सी झलकी ऑपरेशन सिंदूर की लेते हैं और इस छोटे से किस्से में सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आपका जो जज्बा मैं देख रहा हूँ सर आपकी आँखों में, आह लाजवाब है सर, इसे सुनते हैं सर।
2: मेरे पति को बचा लो।
3: हम बचा देगा, कोई बात नहीं, बेहतर करेंगे। क्या हुआ इसको, क्या हुआ?
2: प्लीज आस्क फॉर हेल्प, वी डोंट नीड।
3: ओके, डोंट वरी, डोंट वरी, यू ओके, यू नीड अ वाटर सर। अपने आप बोले ना मुझे,
2: क्या बोलते, भेलपुरी खा रहे थे, पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी।
3: यहां पे
2: उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी।
4: The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect.
5: I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backer.
6: Operation Sindoor 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था।
4: It was deemed essential that the perpetrators and planners of the 22nd April attack be brought to justice.
7: 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed.
8: These locations are Lahore, Gujranwala, Chakwal, Rawalpindi, Attock, Bahawalpur, Miano, Chor and near Karachi.
9: To target civilian population, it's extremely unfortunate.
10: Just to point out,
11: we're not going to get involved in the middle of war. That's fundamentally none of our business.
10: That terrorism and funding and backing terrorist organizations has been and was part of Pakistan's history.
12: This was time to convey some message to our adversaries.
13: We were, of course, prepared.
14: Few things have been said at the level of the Prime Minister.
15: भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
14: And this has never happened in the history of independence.

0: You were happy with the how the forces responded. I mean, I know it's a funny question, but आपके कुछ सुनना चाह रहे हैं ना आपसे, इसीलिए ऐसा सवाल पूछा. Were you also willing to go कि यार मुझे बुला लो, मैं भी आता हूँ.
1: There and serving at that time because बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है इंडिया ने और उनके जो मारे हैं हमने एयरफील्ड्स पे ऑलमोस्ट knocking on the door of their nuclear capabilities, it's a big thing. It was a big signal given to them.
0: And that technology, you are saying ki yehi superiority aap bata rahe hain.
1: Yes, okay. The Air Force has that. I mean, it was pinpoint sort of, you know, absolutely, they were knocking on the door of their nuclear storage facility, which is a big thing.
0: Okay. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारा डिफेंस भी अच्छा होना बहुत जरूरी है ना. वी डिफेंडेड वेल आल्सो. ऐसा तो नहीं है कि वहां से अटैक नहीं है. अटैक्स तो बहुत आए लेकिन सारे विफल किए हमने.
1: एब्सोल्युटली उनके बेसिकली ड्रोन अटैक्स थे. अटैक तो क्या आया था उनका, मतलब एक आध कोई मिसाइल उन्होंने दिल्ली की तरफ भी डाला था जो कि मेरे ख्याल से मिडवे पंजाब में कहीं ऑलरेडी शूट डाउन कर दिया गया था.
0: दैट वाज द नियरेस्ट. बट हाउ डू यू नो कि वो दिल्ली की तरफ आ रहा था सर? हमारी टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल फायर होता है उसका रूट पता लग जाता है.
1: जब एनालाइज करते हैं जो मिसाइल को तो उसकी रेंज देख लेते हैं ना. अगर लाहौर से उस एरिया से जहाँ से अगर लॉन्च किया है, अगर वो दिल्ली रेंज में है तो ऑब्वियसली इट्स अ सिटी व्हिच इज बीइंग टारगेटेड. सो इट वाज डाउन, इट वाज एब्सोल्युटली शॉट डाउन. So that's a big thing, and I think that was the only real thing which was threatening to the city. And I was very surprised that they started saying that Delhi has been bombarded and.

0: आप सुन रहे हैं एक खास प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, और बहुत ही खास हमारे साथ यहाँ पे हमारे गेस्ट हैं आज के, और वो हैं मेजर एस के यादव। और बहुत सारे लोग आपको, आपके जो कॉलीग्स हैं वो आपको मेजर मिकी यादव भी कहते हैं। ओके, आप लोग का एक सॉलिड ग्रुप है, आपने कहा कि वी आर स्टिल बॉन्डेड टुगेदर। व्हाट्सएप का आपने कहा था कि ग्रुप है, तो इन ऑल कितने लोग होंगे उसमें?
1: एनडीए का ग्रुप है, हम लोग करीब 325 लोग थे जो पास आउट हुए थे एनडीए से। देखिए एनडीए का ग्रुप अलग है, आईएमए का ग्रुप अलग होता है, जो एनडीए के थ्रू नहीं गए लेकिन डायरेक्ट एंट्री होते हैं, तो दो ग्रुप्स हैं।
0: ओके,
1: तो एनडीए को हम बॉन्डेड बोलते हैं, बॉन्डेड ग्रुप है।
0: तो वो जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब आप लोग कैसी बातें कर रहे थे?
1: और डिस्कशन होती थी और डिबेट्स भी, क्योंकि उसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, हम तीनों थे कोस्ट गार्ड्स। तो एयरफोर्स वाला अपना एक्सपर्ट बताता था, आर्मी वाला अपना, और नेवी वाला, वो जो देवर नेवी वाज ऑपरेशनली रेडी एक्चुअली फॉर द ब्लॉकेड।
0: मेरा अगला यही सवाल था कि सर आपको तो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट मिल रही होगी।
1: हाँ, ऑन द ग्रुप वॉट एवर देवर ऑल्सो दे यूज टू प्रेडिक्ट, दे टू से वॉट शुड बी डन, वॉट वॉज नॉट डन राइटली, वॉट वॉज डन राइटली, एंड वी यूज टू डिबेट ऑल दैट।
0: एंड ऑफकोर्स एक जज्बा बॉलीवुड भी तो लेकर आता है ना आप लोगों के लिए। आई एम श्योर आप गीत सुनते हैं कभी, गीत सुन के भी एक जज्बा जोश आ जाता है। हम लोगों को तो आता है, आप लोगों को भी आता है?
1: एब्सोल्युटली।
0: आकाशवाणी के साथ आपका कैसा लगाव रहा है?
1: पर्सनली मेरा फेवरेट है आपका रेनबो, बिकॉज इट गिव्स मी lot of retro music also, it gives me all sorts of music, so I like it, it's my favorite.
0: FM Gold भी है जिसमें,
1: FM Gold है, I like it.
0: तो आपने कब वास्ता कब पढ़ा आपका रेडियो से?
1: देखिए रेडियो तो ever since we were commissioned, हमारे पास तब ट्रांजिस्टर होता था, एक छोटा सा FM तो नहीं था, तब ऑल इंडिया रेडियो चलता था, चाहे बॉर्डर पे हो कहीं भी हो। इनफैक्ट आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एक ANPRC 25 रेडियो सेट होता था, हम लोग जब रास्ता एक्सरसाइज में थे और हम लोग ट्यूनिंग करते थे, कई बार हम पाकिस्तान बॉर्डर पे थे तो उनके गाने आ जाते थे उसमें।
0: अच्छा, उनके गाने उनके, हमारे भी जाते हैं सर,
1: हमारे भी जाते हैं, तो उसको लगा देते थे, शेव करते करते गाने सुन लेते थे
0: जी।
1: वो जमाना था। सो रेडियो हैज हैड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली।
0: ऑलराइट, तो कोई गीत अभी आप अगर बोलें कौन सा गीत प्ले करें?
1: हाँ, एक तेरी मिट्टी, दिस इज रिक्वेस्ट फ्रॉम नीति बल्ला।
0: ओके, आप ही के बॉन्डेड जो ग्रुप है उन्हीं की एक सदस्य है?
1: मैं फ्रेंड्स हैं, मैं से बॉन्डेड तो नहीं है, बॉन्डेड तो एनडीए वाला ग्रुप है, ये लेडी है।
0: ऑलराइट, तो नीति जी आपकी फरमाइश पूरी हो रही है आकाशवाणी में।

0: संदेश टू सोल्जर्स में आज हमारे साथ मेजर एस के यादव हैं और T-72 टैंक के इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, टैंक रेजिमेंट के साथ रह चुके हैं। आपके पूरे इस करियर में विद द यूनिफॉर्म ऑन कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें हमारे सिविलियंस के साथ जो बड़ा यादगार है, एक्शन के दौरान या कुछ एडवेंचर?
1: पर्सनली मैं डिसिप्लिन के बारे में बता देता हूँ आपको। जब मैं यंग ऑफिसर मैंने ज्वाइन किया था तो
0: जी
1: मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर था रेजिमेंट का,
0: वाह
1: और
0: सर,
1: मेरे
0: मेरे शो में स्पोर्ट्स आ ही जाता है। लोग कहते हैं आप जानबूझ के लाते हो, बट इट्स वंडरफुल टू हियर, प्लीज गो अहेड।
1: एक एडजुटेंट होता है हमारे, टोनी
0: राइट
1: बेन्स, ही इज इन द यूएस नाउ, आई डोंट नो इफ ही इज लिसनिंग दिस, बट मैं नया नया था, मेरी 2 महीने की सर्विस थी।
0: ओके
1: तो उन्होंने बोला शो मी द फुटबॉल शूज, डिस्प्ले करो कैसे हैं। तो मैंने शूज निकाले, डिस्प्ले कराए सारे रेजिमेंट के, तो एक शू में लेसेस नहीं थे, तो उसने उसकी वजह से मुझे गार्ड ड्यूटी, एक राउंड द क्लॉक गार्ड ड्यूटी की पनिशमेंट दी थी। उसमें क्या होता है कि यंग ऑफिसर को हर 1 घंटे बाद गार्ड रूम, एक जो हमारा होता है जहाँ पे हमारा एमिनेशन रखा होता है, वहाँ जाके साइन करना पड़ता है एवरी 1 आवर, स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट 9 PM टू मॉर्निंग 6 AM, सो दैट यू डोंट स्लीप।
0: अच्छा,
1: सो दैट इज अ पनिशमेंट फॉर द यंग ऑफिसर इफ यू मेक ए मिस्टेक।
0: ओके,
1: सो माई मिस्टेक वॉज दैट आई डिड नॉट इंश्योर दैट देयर वर लेसेस इन द फुटबॉल शूज
0: एवर,
1: सो दैट आई यूज्ड टू ऑलवेज रिमेंबर। एंड
0: बट इट ग्रूम्ड यू इनटू अ गुड
1: इंडिविजुअल। यस यस एग्जैक्टली। एनडीए में ऑल्सो आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि अगर आपके पास टेबल मैनर्स नहीं है, दे टीच यू अदर देन दे टीच यू थिंग्स लाइक टेबल मैनर्स, कर्टसी, ओपनिंग द डोर फॉर द लेडी, टेबल के ऊपर आप एल्बो रख के नहीं खा सकते। अगर आपके सीनियर ने आपको देख लिया
0: जी,
1: तो वो आपका पूरा नमक आपके अंडे में डाल देगा,
0: वो बोलेगा खाओ
1: पूरा आप खाओ, या पूरा का पूरा आपको बोलेगा टेबल के नीचे जाओ, और वो सारे वहां से जो गलती कर देते थे नीचे से उसको बम्प्स पिक किक करते थे। तो ये चीजें आपको याद रहती है लाइफ पर, यू नो कि
0: बट आपको प्रॉब्लम नहीं होती ये सब डिसिप्लिन लेके जब आप सिविलियन सोसाइटी में आप जाते हैं?
1: काफी फौजियों को होती है, बट एडजस्ट करना पड़ता है, बट इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट। इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट।
0: तो गुस्सा कैसे चबाते हैं फिर आप?
1: अंदर अंदर हम बोलते हैं दीज ब्लडी सिविलियंस, जोकिंग करते हैं, दिस इज ऑल जोक्स, बट यू नो अगर कोई मैनर्स वूनर्स का अगर हमारे जैसे होता है तो हम अपने मन में ही करते हैं।
0: आप जब आपने अपनी सर्विस पूरी कर ली उसके बाद एडवेंचर में आप चले गए? बिल्कुल, नेचर से बहुत प्यार करते हैं।
1: स्पोर्ट्स में चला गया था
0: जी,
1: एंड माय कंपनी वाज द फर्स्ट वन टू ब्रिंग बंजी जंपिंग इनटू इंडिया, वी वर द सेकंड कंपनी टू ब्रिंग हॉट एयर बलूनिंग इनटू इंडिया, एंड वी यूज्ड टू सेट अप एडवेंचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर ट्रैक्स, माउंटेनियरिंग एंड स्टफ लाइक दैट, व्हिच वी स्टिल डू। द कंपनी, आई डोंट नो वेदर आई कैन टेक द नेम ऑफ द कंपनी, वंडरलस्ट, एंड इट्स अ वेल नोन कंपनी नाउ।
0: तो आप एडवेंचर में, मतलब आपका शुरू से ही शौक था?
1: हाँ, ऑलवेज, राइट फ्रॉम द आर्मी डेज।
0: जब तक पैशन नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते ना काम,
1: आर्मी डेज से ही। एंड इवन नाउ टुडे आई एम अ ट्रैकर, आई ट्रैक अ लॉट, वी आर गोइंग फॉर अ हरकी डून ट्रैक नेक्स्ट मंथ नाउ, एंड वी डिड द ग्रेट लेक्स ट्रैक।
0: और कोई सिविलियन आपके साथ जुड़ना चाहे जो डिसिप्लिन्ड है वो जुड़ सकता है?
1: नहीं नहीं, सिविलियंस आर आल्सो डिसिप्लिन्ड, दे आर गुड लॉट, एंड आई हैव लॉट ऑफ सिविलियन फ्रेंड्स, एंड वी ऑल गो टुगेदर इन माय ट्रैकिंग ग्रुप या अदर ग्रुप्स।
0: कुछ अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आप कुछ शेयर करना चाहते हैं?

0: ये बताइए कि आज के टाइम पे जो युवाओं को आप देखते हैं, है ना, लेट्स गेट टू दिस पॉइंट स्ट्रेट. जब आप इनको देखते हैं तो आप 15 साल की उम्र में एनडीए गए, आप एक डिसिप्लिन्ड बॉय बन गए या बना दिए गए, उसके बाद एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आपकी चली आगे. आपको लगता है कि अब जो मॉडर्न सोसाइटी के जो युवा हैं जो आपको सुन रहे हैं, कुछ शायद चाहेंगे कि फौज में आए, कुछ नहीं आ पा रहे होंगे, तो वो फौजी जैसी जिंदगी, वो डिसिप्लिन लाइफ कैसे जिए?
1: देखिए, मेरा कहना है, जैसे पर्सनल ओपिनियन

0: शुरू का, एंड वो जो डिसिप्लिन्ड जो बेस होता है वो अर्ली डेज में ही हो सकता है. आप वो बेस 40 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में नहीं बना सकते.
1: ग्रेट पॉइंट.
0: यू हैव टू कैच देम यंग. एंड ये अगर हम बेस दे दें अपने यूथ को कि आपको पता नहीं कर सकते हैं कि नहीं, कि कंपलसरी आपको 5 ईयर्स या 3 ईयर्स की आर्मी ट्रेनिंग करनी है, देर विल बी ए होल लॉट ऑफ चेंज इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट डिसिप्लिन,
1: यस.
0: टेल्स ऑफ पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, सो थिंग्स लाइक दैट विच द आर्मी टीचेज यू. एंड आई होप समडे दिस हैपेंस.
1: राइट. आपको प्यार व्यार नहीं हुआ कभी सर? आप बहुत सीरियस सीरियस बातें करो. टैंक की बात कर दी मैंने, फायर कर दिया हेलीकॉप्टर से, जनरल उतरे, उन्होंने बोला टैंक को इधर करो, कुछ
0: जब यंग
1: आपको?
0: ऑफिसर होते थे नाभा में, एक छोटा सा स्टेशन है पंजाब में,
1: अच्छा.
0: मुझे मालूम है कि हमारे कमांडिंग ऑफिसर, नाम नहीं लूंगा, कोई भी सीओ की डॉटर्स होती थी, उनको इम्प्रेस करने के लिए हम लोग टेनिस बैडमिंटन खेलते थे
1: जोर जोर से
0: और
1: शॉटे
0: फिर
1: मारते थे. अच्छा.
0: कभी कभी कुछ लेटर्स एक्सचेंज होते थे, तो टेनिस कोर्ट के पास कहीं एक लेटर चला जाता था, वहाँ से दूसरे दिन लेटर आता था, तो बस वही होता था. दैट
1: बस.
0: इज द टाइप ऑफ रोमांस वी डिड इन दोज डेज.
1: अच्छा, एक रोमांटिक गाना चला देता हूँ सर. आप ही की
0: श्योर
1: प्लेलिस्ट से लिया हुआ है, कुछ
0: श्योर.
1: इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किसकी फरमाइश है ये बताते हैं सर. ये गाना सुनते हैं और उसके बाद वापस आते हैं जल्दी.

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं। मेरा नाम है मुनीश जौली और हमारे साथ मेजर एस के यादव मौजूद हैं। तो यादव साहब, अच्छा किया आपने थोड़ा बहुत बता दिया कि रोमांस है आपके दिल में और चिट्ठियां आप लिखते थे, तो फौजी की चिट्ठी भी वही होती है कि बम धड़ाके वाली या कुछ रोमांटिक बातें होती हैं उसमें?
1: फौजी भी आप जैसे ही हैं, हम और आप, और हमें भी वही फीलिंग्स है जो आप में है और वही जज्बा है, तो एब्सोल्युटली देयर इज नो डिफरेंस।
0: दिल्ली में अभी ये मौसम चल रहा है कि बोगनविलिया बहुत देखने को मिलता है, और उससे जुड़ी कोई खास बात आपसे जुड़ी हुई है?
1: बोगनविला मेरा एक पैशन था, एक माउंटेन्स भीमताल के पास एक मैंने फ्रूट ऑर्चर्ड बनाया है।
0: ओह वंडरफुल।
1: और उसमें करीब 500 फ्रूट ट्रीज लगाए हैं।
0: ओह।
1: एंड आई कॉल इट बोगनविला माउंटेन रिट्रीट। और 5 कॉटेजेस बनाई हैं, जो द गुड थिंग अबाउट दैट इज कि उसमें कोई आरसीसी फुटप्रिंट नहीं है।
0: ओके।
1: खाली पाइन वुड, ग्लास और लोकल स्टोन का है।
0: अच्छा।
1: और उसमें खाली नेचर है, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, पहाड़ है। That is it.
0: आप बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है वहीं पहुंच गए।
1: मैं वहीं पहुंच जाता हूं ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड।
0: वहीं पहुंच जाता हूं। आप डॉग लवर भी हैं सर?
1: यस।
0: आपने बातों बातों में हमें बताया और मैं भी डॉग लवर हूं। एंड अभी लगभग 2 दिन पहले दिल्ली कैंट एरिया में जो कैंट बोर्ड है उसके जरिए एक वेट हॉस्पिटल भी खोला गया और न्यू दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उन्होंने उसका उद्घाटन किया, सुन के अच्छा लगा। तो ये
1: मेरे पास मुझे याद नहीं है मेरी इंटायर लाइफ में एक्चुअली
0: जी
1: मेरी फैमिली में एक डॉग ना हो।
0: अच्छा।
1: एवर।
0: ओके।
1: माय फादर वाज अ डॉग लवर एंड आई हैव हैड लैब्राडोर्स। अब मेरे पास एक गोल्डन रिट्रीवर है, शिफू है उसका नाम। और अभी एक मेरे दोस्त ने मुझे एक पहाड़ी शीप डॉग जो उसको रोड साइड पर मिला था उसको उसने रेस्क्यू किया।

0: एंड थैंक यू विवेक, अगर आप सुन रहे हैं. और उन्होंने मुझे ये ऑफर दिया कि अगर आप इसको रखना चाहें तो हम
1: विवेक
0: बहीरा उसका
1: हीरो है
0: नाम
1: सर.
0: रखा है, और उसको हमने अभी 5-6 महीने का है, एंड इज़ ए शीप डॉग, और बहुत मज़ा आता
1: मेरे पास
0: है.
1: फोन आते हैं, आईपीएल के मैचेस आ रहे हैं, पासेस मिलेंगे, पासेस में विवेक ने अगर डॉग की जान बचाई तो एक पास उसको दूंगा आईपीएल का मैं. मैं नहीं सर, मैं देखे रहूंगा.
0: ओ वैस विवेक, यू अर्न ए पास, आईपीएल पास, इफ यू आर लिसनिंग.
1: टॉप टीयर
0: विवेक
1: होगा पर
0: लैंडोर
1: वो
0: में रहते हैं, मसूरी के पास.
1: फिर तो बच गए. एनीवे सर, सर यू जस्ट मेंशन अबाउट योर डैड. आई थिंक हमारे प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता कि आपके एक तरीके से आइडल, आपके इंस्पिरेशन, आपके फादर फॉर्मर एयरफोर्स पायलट,
0: यस
1: हंटर जहाज उड़ाते थे और
0: यस
1: उसके बाद ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे, इज
0: यस
1: अ फाइटर पायलट, यू नो, बिलोंग्स टू माई कम्युनिटी. टेल अस समथिंग अबाउट हिम सर.
0: माई डैड केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन हरियाणा,
1: जी
0: एंड ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट स्टीफन्स कॉलेज
1: वाह.
0: एंड देन जॉइन द एयरफोर्स.
1: हरियाणा
0: एंड
1: में कहाँ से सर?
0: एक गांव है रेवाड़ी के पास कॉल्ड दखोरा, इट्स नियर कोसली, अगर आपने सुना रेवाड़ी. रेवाड़ी तो सुना
1: वहां
0: है,
1: से और भी
0: इट्स
1: फाइटर
0: व्हाट
1: पायलट्स आए हैं.
0: कोसली इज ए विलेज बाय द वे इन हरियाणा, जहाँ पे सारे ऑफिसर्स यहाँ, देयर इज ए ऑफिसर्स मेस इन दैट विलेज. तो
1: स्क्वाड्रन
0: फाइटर पायलट
1: लीडर
0: ही
1: मोनीश
0: आर्मी
1: यादव
0: के काफ़ी हैं,
1: जी.
0: एयरफोर्स के भी हैं.
1: ओके
0: सो दैट इज हाउ ही दैट इज हिज रूट्स, एंड देन ही
1: वाह.
0: ग्रू अप इनटू
1: एंड
0: द.
1: वाज ही पार्ट ऑफ द वॉर? हंटर उड़ाते
0: यस
1: थे तो.
0: यस ही वाज सीन द 71 वॉर, ही सीन द 65 वॉर. यस
1: ओके. और क्या खास बात आपके फादर में आपको लगती थी जो आप उनको, हमारे डैड हीरोज तो होते हैं लेकिन सबके डैड के अंदर एक खास क्वालिटी होती है, तो आपको क्या लगता था उनके
0: सुबह
1: अंदर?
0: सुबह जब वो यूनिफॉर्म पहनते थे, मैं
1: जी
0: देखता था छोटा बच्चा, और मैंने कहा यार मैं कब बड़ा होऊंगा और ये यूनिफॉर्म पहनूंगा. और ऊपर हवाई जहाज उड़ते थे, देखते थे हम लोग. एंड मेरे फादर भी टॉल थे, नाइस, एंड फॉलोड हिज फुटस्टेप्स.
1: पर आपने भी फ्लाइंग सीखी है
0: हाँ
1: एंड यू आर अ क्वालिफाइड पायलट.
0: यस, आई हैव गॉट ए सीपीएल.
1: ऑल राइट, तो हाउ कम एयरफोर्स को छोड़कर, नॉट दैट टैंक में नहीं जाना चाहिए था लेकिन लड़ाकू टैंक, लड़ाकू विमान.
0: आफ्टर आई लेफ्ट द आर्मी
1: जी
0: आई वेंट अवे टू यूके, एंड
1: ओके
0: केंट से मैंने अपना फ्लाइंग लाइसेंस लिया था.
1: वाह.
0: यूके में
1: राइट सर, समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम आगे और बढ़ें. आपके जो बॉन्डेड ग्रुप है वहां से कोई और फरमाइश तो नहीं आई सर गाने की? अगर आई है तो हम जाने से पहले उसे प्ले करेंगे सर.
0: काफी है, लेकिन आप अगर एक ये कर दो अभी ना जाओ छोड़ करके,
1: हाँ हाँ
0: या
1: हाँ कि दिल अभी भरा नहीं सर, ये तो
0: दिल
1: हमें कहना चाहिए आपके लिए कि
0: अभी
1: अभी ना जाओ छोड़कर. मोहम्मद रफ़ी
0: यस
1: साहब की आवाज़ में एक गीत है तो इसको मैं चलाता हूँ ढूंढ के सर.

0: राइट देन सर, इट वॉज अ शेयर प्लेजर आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. एंड ये गीत तो मैं चला रहा हूँ, बट वी मीन इट, एवरी लिरिक
1: यस
0: ऑफ दिस गोल्डन सॉन्ग. कुछ चलते
1: थैंक
0: चलते हमारे युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे?
1: यू सो मच गाइस. प्ले लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, प्ले लॉट ऑफ वेदर इज टेनिस, स्विमिंग, आउटडोर्स, एंड सी लेस ऑफ स्क्रीन टाइम. दैट्स इट.
0: वो बहुत जरूरी है सर. बट इट वॉज अ शेयर प्लेजर होस्टिंग यू सर. एंड
1: थैंक यू सो
0: प्लीज
1: मच.
0: लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू.

अभी आप दिल्ली से प्रसारित विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्रीविजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1280 कड़ी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
3: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
3: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
3: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
3: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
3: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
3: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
3: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
3: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
3: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
2: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
3: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
2: जी,
3: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, यानी माउना केया
2: जी,
3: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
2: जी।

0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें।
1: जी,
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
1: जी, समुद्र की गहराई के तीन भाग हैं। सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहां समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहां पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहां पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहां कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविन्द्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे, ए भारतेर महामानवीर सागर तीरे।

0: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
1: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में, तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं, ईश वहां है।
0: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं, जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
2: जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युष्कल बंगा, विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे।
0: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
1: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी, उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
0: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टोपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखीं।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से

0: हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
1: आमार सोनार बांगला आमी तोमाए भालोबाशी, चिरदिन तोमार आकाश तोमार बाताश आमार प्राणी बाजाए बाशी।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের
2: শান্তি। সন 1901 में শান্তি নিকেতন आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्यपुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक, कष्टपूर्ण

0: शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
0: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
0: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून, न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमरीका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़ित ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1280 कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 11:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
4: सिनामेनी रख रहा मांग इमिजेता का लमक तेलगी मीडियम वेव 438.6 मीटर है 684 किलोहर्ट्ज रमांग एलगी आकाशवाणी श्री विजयपुरम अन्य निकोबारी प्रोग्राम तहांग। मिनका तलोन ही तरन मिन मावर के चोग निलक एलहाय ने कुन पनम ही चमु माय बंदर ते टिकली बूर MV भारत सीमा असुन गन रे हुरज इत हेवर कइन रो तहत निलक न्य हेडवा नजु माय बंदर ते टिकली बूर ना छावान इप तसम अलांग चिंगे इंटरनेट कइन रो तला सका मन रांग टिकली बूर सक माय बंदर मिन गम चोग एल तल करे नचु श्री विजयपुरम MV रानी जंका नदे इंट्रे नचु माय बंदर ते टिकली बूर इप तका ऑक्सीजन अलांग चिंगे इत सट कइन रो तला पहु निलक न्य फिनिक्स पेज ngachawan ibtener sin alang chinget itasat kainro talap hu narang tikli bur sek mai bandar admin ngamchong el tala karena chusri vijaypuram MV rani lakshmi chu mai bandar da tikli bur ibtalu sin alang chinget itasat kainro talap hu nalaknya phoenix page ti ngachawan ibta fan sin alang chinget itasat kainro talap hu narang tikli bur sek mai bandar admin ngamchong el tala karena chusri vijaypuram chamu lidil andaman hek chong सिंधु चु लिडिल अंडमान इप्तसम अलांग चिंगेत इत हेवर कइन रो तला पहु नलक ने हेड ऑफ ना छावन इप हे ए इत मा चु तर कइन रो तहात नरांग लिडिल अंडमान न चु श्री विजयपुरम MV खालकाट चु लिडिल अंडमान न इप नेरसियन अलांग चिंगेत इत हेवर कइन रो तला पहु नलक ने हेड ऑफ ना छावन इप हे ए इत मा चु तर कइन रो तला हात नरांग लिडिल अंडमान न चु श्री विजयपुरम सिंधु चु लिडिल अंडमान इपतानी सियन अलांग चिंगेत इत मा चु कई रो तहातम नलग्न हेड ऑफ गज हवान इप तताफुल सीन अलांग चिंगेत इत सम कई रो तला पुहु नरांग लिडिल अंडमान नचु श्री विजयपुरम MV सेंटिनल नचु लिडिल अंडमान दखा निकोबार इप तहुरच इत सत कई रो तला पुहु नलग्न हेड ऑफ गज हवान इप तसम अलांग चिंगेत इत फैन कई रो तहारा नरांग का निकोबार सक लिडिल अंडमान अन मिनगम चोंग एल तला करे नचु श्री विजयपुरम MV कालिकाट चु इनमिने ला लोहंगमिन कुनपानाम न इजुक MV भारत सीमा इप्त फैनसीन अलांगो चिंगेत इत सत कईरो तला बहु नलग्न हेडवा सक लिडिल अंडमान खान निकोबार चौरा तेरेसा कचाल ननकोरी माखचा आफ्रा बे एल तल करे न चु कैम्बल बे नथावान इप्त सत सीन अलांगो चिंगेत इत मचुत र कईरो तहातम नरांग कैम्बल बे सक अफ्रा बे माकाजुआ ननकोरी कचाल तेरेसा चौरा खान निकोबार तलिडिल अंडमान अनमिन ngamchong el tala kare na chusri vijaypuram koren yip kame ticket re wahe na elngam MV bharat sima na cancel ngen no ticket re nga hawan no rupi here na elmne chuk kame ta ticket asa inla ngamchong na hari MV kalikat hek min indre na ren nga chuk MV sentinel ip ta nera nai sat alang chinge ida sat koino ta lapu na lagnya hadwa sek little andaman karnikobar chara teresa kachal tanan ko re an men ngamchong el tala kare नचु कैम्बल बे नजावन इपते लुई अनाय अला मचिंगे इते लुई अनाय हंग मिनट ने हेवर कइन रो तहात नरांग कैम्बल बे सक ननकोरी कचाल तेरेसा चौरा तलिडिल अंडमान अनमिनगम चोंग एल तले करे नचु श्री विजयपुरम अनुनुन्ने मिनका तलोन ही इंग सकाम।
5: तंगी सकाम तंगमो तहेवरे अलांगो मी चिंगेत नगे करें गम इंटरनेशनल थायलसीमिया डे न इनफे लही हेक हो तन ही ऐ होल रन मे तलक तंगी इनवा असु अंकन इमिचाइन तन ही आई के

0: Mana din ka katai hang hi digak nyame a parka vile digak nyame a kimios tame a small la pate inre hoy hang atel hang na sinta mo he kin hore changrang inta ka sa de fe fen ko yo tel harap ngayen
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजे हैं। अब प्रस्तुत है तेलुगु कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी श्री विजयपुरम केंद्रम प्रियमैन श्रोतलकु नमस्कारम।

0: अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 पे हैं। लीजिए अब सुनिए मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक

0: आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्तीय प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबूधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिशा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तोलाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आइए अब सुनते हैं मन्नड़ी की आवाज़ में फिल्म आनंद का ये गीत, और इस गाने की फरमाइश की है हमें संदीप मक्कड़, जो कि पंजाब से हैं, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़ और कमल सैनी।

0: कभी तो हंसाए।
1: अगली गाने की फरमाइश की है हमें सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान ने। ये सुनना चाहती है फिल्म लोफर का ये गीत, और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में अप्रैल फुल। इस फिल्म का ये गीत और इस गाने की फरमाइश की है हमें जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी ने।

अगले गाने की फरमाइश की है हमें संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने। ये सुनना चाहते हैं सावन को आने दो, इस फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है ये सुदास ने।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म कालिया का ये गीत, और इस गाने की फरमाइश की है हमें मजनू का टीला से कमल बलूचा, मधु बलूचा, सागर बलूचा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने।

तो श्रोताओं, इसी के साथ ही आज का हमारा व्हाट्सएप पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब यहीं पर संपन्न हुआ।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में समाचारों का प्रसारण हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता

0: पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी के लिए।
1: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
1: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
4: अप्रोच टू माइग्रेशन गवर्नेंस।
5: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही

0: के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
1: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
2: इंडिया कंट्रीब्यूट्स,
0: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं, अधिक पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
1: समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया
3: हैंडल @HIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की, पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
4: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
5: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये

0: उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
2: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
3: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत छठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमरीका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जन सेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 होने वाले हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: विविध भारती
1: FM 3 विजयपुरम
2: 100.9 आपका हम सफर।

हम बोल रहे हैं विविध भारती एफएम श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स।

0: dear friend, friend, friend.
1: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं आपकी रेडियो सखी सुनीता। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं और अपने पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं तो हमें अपना नंबर मैसेज करिए। इस नंबर पर हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9474234000। तो श्रोताओं, चलिए मिलते हैं उन तमाम श्रोताओं से जो इंतज़ार कर रहे हैं हमारा। हेलो डियर फ्रेंड्स।
2: हेलो डियर फ्रेंड
1: जी, नमस्कार। हमारी बात हो रही है अमल जी से जो कि है असम से।
2: जी जी जी, मैं सोनीतपुर असम से अमल बसुमतारी है, बात कर रहे हो मैडम
1: जी? कैसे हैं आप
2: जी? बिल्कुल ठीक है
1: जी। जी, और इन दिनों क्या करते हैं आप?
2: दिनों तो कुछ बहुत बिजी में रहता था। आजकल हमारे असम में वो बैसाख महीने में हमारा घर घर में पूजा होता है। इस पूजा में हम शामिल होके बिजी, खुद को बिजी रहते थे।
1: अच्छा अच्छा, बहुत बिजी थे फिर आप। और मौसम, वहाँ का मौसम के बारे में बताइए थोड़ा।
2: मौसम तो हमारा अप्रैल से तो अभी गर्मी होने शुरू हो गया।
1: अच्छा,
2: और ये गर्मी अक्टूबर का लास्ट महीने तक चलेगा।
1: अच्छा अच्छा जी, तो बताइए।
2: बारिश भी, रात को बारिश होते रहते हैं और दिन भर धूप देते हैं।
1: अच्छा,
2: अभी वो थोड़ी देर से पहले अभी बादल छा रहे हैं, ठंडी हो रहा है मौसम।
1: अच्छा, मौसम में बदलाव आया है।
2: हाँ हाँ, अभी वो शाम को बारिश आएगा जैसा लग रहा है।
1: अच्छा अच्छा,
2: और मैं दोस्तों को और मैं एक गीत के लिए फरमाइश भी पहले बता देता हूँ। बांदे फिल्म का बोले मेरा कंगना तेरे बिना सजना, इस गाने को मैं सुनना चाहता हूँ और मैं दोस्तों को भी डेडिकेट करना चाहूँगा।
1: जी जरूर।
2: हमारा सबसे अच्छी दोस्त वो दिल्ली में रहता है जिसका नाम है धर्मवीर। वो हमारी बातचीत को रिकॉर्ड करके लेता है और फिर से हमें सुनाता है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है हमको।
1: अच्छा जी।
2: और हमारा शिमला से है राकेश, और धेमाजी असम से है बिमल बसुमतारी, और सोरायदेव सोनारी असम से भाईकोन मुंडा, और गुलाघाट असम से रमेश पात्र, और हमारी उस विजयपुरम का ही दोस्त है रमेश प्रजापति, सुनील झा, योगेश झांगरे, और विजयपुरम से है पूर्णिमा और पूनम, और राम नरेश है, और लकेंद्र वर्मा जी है, और भी बहुत सारे दोस्तों को। और मेरा सब एक दोस्त है, उससे मैं संपर्क नहीं हो नहीं पा रहा है। वो मध्य प्रदेश से है जिसका नाम है लक्ष्मी, और मैं उनको मैं खुद का नंबर देना चाहते थे। वो अभी प्रोग्राम सुन रहे हैं तो हमें कॉल करिए।
1: जी जी,
2: मेरा नंबर है, नोट कर लीजिए तो सुन लीजिए। तो कोई भी दोस्त भी हमारे साथ संपर्क कर सकता है। नंबर बताता हूँ मैं, 9678535395। नंबर को फिर से दोहराता हूँ, 9678535395।
1: तो चलिए सबों के साथ सुनते हैं गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: ये प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं दीदी
1: जी, सुनकर बहुत अच्छा लगा।
2: जी जी जी।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्ते
0: जी, नमस्कार। हमारी बात हो रही है सुनील झा जी से, जो कि हैं मध्य प्रदेश से। कैसे हैं आप
1: बस बढ़िया मैम।
0: जी? और क्या करते हैं इन दिनों, आप क्या कर
1: बस
0: रहे हैं?
1: अभी तो वैसे सिलाई का काम करते हैं। अभी तो गांव में आए हुए हैं फिलहाल, भोपाल में रहते हैं।
0: अच्छा,
1: हमारा भिंड जिले में गांव पड़ता है, गोड़ा जतपुरा, तो
0: जी जी
1: वहाँ पे हूँ। अभी शादी थी
0: जी जी
1: तो ससुराल में, तो वहाँ पे मौसम
0: जी और वहाँ का मौसम का हाल कैसा है इन
1: तो
0: दिनों?
1: अभी ये है कि जो मई में जो गर्मी पड़ना चाहिए, लेकिन वो अभी अभी जो जुलाई में मौसम रहता है वैसा हो गया है।
0: अच्छा
1: डेली यहाँ बारिश हो रही है। जी
0: अच्छा वहाँ बरसात हो रही है
1: जी जी
0: जी। तो बताइए, आज
1: और
0: के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: तो इसका दीवाना मस्ताना फिल्म का है, दिल चाहे किसी से प्यार करूं। तो अभी हम अभी फिलहाल ससुराल में आए थे, वहाँ जो हमारा पर्यटक स्थल है, यहाँ पे भी भिंड जिले में तहसील अटेर है, तो वहाँ पे चंबल नदी है, तो यहाँ पे घड़ियाल बहुत सारे हैं।
0: अच्छा जी।
1: हाँ, यहाँ तो पर्यटक लोग बहुत ज़्यादा आते देखने के लिए, तो अभी वहीं पे थे। तो उसके बाद फिर वहाँ से अभी गाँव जाएंगे,
0: जी,
1: फिर उसके लिए भोपाल निकलेंगे कुछ दिन बाद। तो
0: अच्छी बात है।
1: बस
0: जी, आप अपने दोस्तों को नाम बोलना चाहेंगे?
1: जी, हम हेलो फरमाइश एक रेडियो श्रोता ग्रुप है, तो
0: जी जी
1: जितने सुन रहे सभी को रहेगा। और हमारे अभी भाई पहला कॉलर किया था जो
0: जी
1: भाई, उनको भी डेलीगेट रहेगा, तो
0: जी जी
1: हमारे सभी दोस्तों के लिए डेलीगेट रहेगा। उसमें है उदयलाल टेलर जी हैं, गौतम राय गोले जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, दिलीप आहूजा जी भी, गंगाधर सावनकर जी हैं, और इसमें तुकाराम यादव जी हैं, सोनू जी हैं, श्याम शरण जी हैं, और हमारे काफी ग्रुप है, उसमें सभी के लिए रहेगा। तो
0: जी, तो चलिए सुनील जी, सबों के साथ सुनते हैं गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद मैम।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: जी सर जी, नमस्कार जी। जी
0: जी, नमस्कार। हमारी बात हो रही है बॉबी शर्मा जी से, जो कि हैं औरंगाबाद से। कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं, आप सुनाइए।
0: जी, हम भी अच्छे हैं। और क्या कर रहे हैं इन दिनों आप?
1: अभी तो कुछ नहीं, थोड़ा लकड़ी फर्नीचर का काम कर रहे हैं अभी।
0: जी, और
1: हाँ
0: ये बहुत साल से कर रहे हैं आप?
1: हाँ काफी समय हो गया।
0: जी, और काम करते करते हमारा कार्यक्रम भी आप सुन रहे हैं
1: कार्यक्रम भी सुन रहे? जी जी बिल्कुल जी
0: और यहाँ पर कॉल भी लगा दिया हमने, है ना?
1: बिल्कुल
0: जी जी
1: बिल्कुल। हमारा
0: जी
1: दोस्त है अजीत शर्मा, तो
0: जी जी
1: अभी फोन आया था कि कॉल लगाओ, तो मैंने उसको, साइकिलिस्ट की दुकान करे गांव में, तो हम लोग दोस्त हैं, तो कभी कभी ध्यान नहीं रहता है तो कॉल कर देता है, हम उसको कॉल कर देते, वो हमको कॉल कर देता है।
0: अच्छा,
1: अभी भी वो भी सुन रहा होगा
0: अच्छी बात
1: और
0: है।
1: हम भी। हाँ
0: और वहाँ के मौसम कैसे हैं अभी इस?
1: मौसम भी अभी थोड़ा बारिश वारिश चल रहा है, आंधी तूफान बारिश।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: जी
1: जी,
0: जी जी
1: लेकिन आज
0: बताइए।
1: तो मौसम थोड़ा सही है।
0: जी, और आज के इस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं, बता दीजिए।
1: वो करण औजला का सुना दीजिए,
0: जी
1: कोई सा भी सुना दीजिए, आप जो फेवरेट हो आपका वो सुना
0: जी जी
1: दीजिए।
0: जी जी और आप अपने दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे तो बता दीजिए।
1: दोस्तों का एक वो अजीत अजीत शर्मा और हरिओम शर्मा, प्रतिपाल, रंजीत शर्मा, बस इतने ही दोस्त हैं हमारे तो। जी
0: तो चलिए बॉबी जी, सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो
1: हेलो
0: जी,
1: हेलो।
0: नमस्कार। हमारी बात हो रही है अविनाश जी से, जो कि है त्रिपुरा से। कैसे हैं अविनाश जी
1: बिल्कुल
0: आप?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा हूँ। और गुड आफ्टरनून,
0: जी, वेरी गुड
1: और
0: आफ्टरनून।
1: हमारे जी और हमारे सभी श्रोता बहुत अच्छे होंगे। और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने कॉल किया है, तो क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ही खास होता है, क्योंकि हम सबको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये कार्यक्रम जो श्री विजयपुरम से एक नए सिरे से प्रारंभ किया गया था, उसके बाद से लगातार एक कार्यक्रम जारी है, और हम सभी श्रोताओं के लिए मनमोहक एक कार्यक्रम बना हुआ है। लेकिन इसमें एक मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे कि मैं भी कॉल बात कर रहा हूँ, तो एक दो श्रोता ऐसे हैं जो मतलब कि कार्यक्रम में व्यवधान डालने के लिए मतलब कॉल करते रहते हैं। तो ऐसे में बहुत एक मैं बोलना चाहता हूँ उन श्रोताओं को कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये फोन आउट कार्यक्रम है, फोन इन नहीं है, तो ऐसे व्यवधान ना डालें।
0: जी
1: जो इंदौर से एक श्रोता है, वो भी सभी लोगों को मतलब 2 4 लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि हाँ यहाँ से कॉल कीजिए, तो ऐसा वो कॉल तुरंत ही होता है, तो ये व्यवधान डालने की कोशिश कर रहे, तो ऐसा
0: जी
1: कृपया
0: जी
1: ना करें
0: जी
1: जी।
0: जी
1: और खास करके आज आपने कॉल किया, तो आज देखिए, कल हमने अपना ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल पूरा किया था। हमारे उस गर्व के दिन है, उस दिन के लिए
0: जी
1: भारत की
0: जी
1: तरफ कोई भी आग उठा कर देखेगा तो उसका अंजाम ऐसे ही होगा। तो ये सबक है उन मतलब कि उन सभी के लिए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर की मैं गर्व से बोल सकता हूँ कि हमारे भारत के एक बहादुरी की जो 2 महिला का वहाँ पर जाकर बड़े वहाँ पर सोफिया कुरैशी और भूमिका सिंह ने जिस प्रकार से जाकर वो वहाँ पर किया था, तो बहुत ही अच्छा लगा था हम सभी के लिए
0: जी जी जी जी
1: जी। तो इसी उपलक्ष्य में मैं अपने सभी फौजी भाइयों के लिए एक गीत सुनना चाहता हूँ, जो
0: जी
1: कि
0: सर।
1: है जी, तो दिल जले मूवी से है, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, जो कुमार सानू की आवाज में है
0: जी, और
1: जी।
0: दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: जी इस गीत को मैं सभी फौजी भाइयों के लिए और जो सीमा पे जो
0: तैनात हैं उनको
1: जी तैनात है उन्हें सबके लिए मैं ये गीत दिल जले मूवी
0: समर्पित
1: रखना
0: कर रहे
1: चाहता हूँ
0: हैं। जी जी
1: जी
0: जी
1: जी जी
0: तो चलिए अविनाश जी, सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: जी धन्यवाद।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं। कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: फिर से स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे इस लाइव फोन और फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम हेलो डियर फ्रेंड्स में। चलिए मिलते हैं अगले दोस्तों से। हेलो डियर फ्रेंड्स, हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार। हमारी बात हो रही है पुरुषोत्तम जी से, जो कि है जम्मू कश्मीर से।
2: मैं पुरुषोत्तम कुमार बोल रहा हूँ, गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
2: आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है
1: जी। कैसे हैं आप?
2: बस ठीक ठाक हैं
1: जी। और इन दिनों क्या कर रहे हैं आप?
2: मैं इधर होटल पर होता हूँ।
1: अच्छा,
2: होटल में काम करता हूँ।
1: अच्छा, तो हमारे कार्यक्रम आप सुन लेते हैं लगातार?
2: जी जी, बहुत अच्छे चलते हैं कार्यक्रम
1: जी। बताइए आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
2: आंखें फिल्म का गीत है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी
1: जी। दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे आप?
2: हाँ जी, दोस्त हैं हमारे, पंची राम है, पुष्कर नाथ है, राकेश कुमार है, गोल्डी भाई है, सतीश कुमार है, गजराज सिंह लोधी है, अनुप कुमार भट्टाचार्य है, शारदा प्रसाद प्रजापति हैं
1: जी।
2: तो इन सभी को गाना डेडिकेट करना चाहते हैं।
1: तो चलिए पुरुषोत्तम जी, सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: शुक्रिया, धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। हमारी बात हो रही है रामलाल बिश्नोई जी से, जो कि है राजस्थान से। कैसे हैं आप
1: जी मैम, बहुत अच्छा हूँ। मैं
0: जी?
1: रामलाल बिश्नोई जोधपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ जी।
0: जी, और इन दिनों क्या कर रहे हैं आप?
1: मैं स्टडी कर रहा हूँ मैम, पढ़ाई। जी
0: अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं
1: मैम,
0: जी। और पढ़ाई के साथ साथ हमारे इस कार्यक्रम लगभग आप सुनते ही हैं।
1: जी मैं नियमित रूप से सुनता हूँ और ये तीसरी बार मेरा कॉल है।
0: अच्छा, ये तीसरी बार कॉल आप लगाए हैं जी।
1: जी मैम,
0: तो कैसा लगा आपको हमारे ये सारे कार्यक्रम, और किस तरह के
1: सभी
0: कार्यक्रम ज़्यादातर आप सुनते हैं?
1: सभी कार्यक्रम मैडम एक से बढ़कर है, और विशेष रूप से मेरा जो फेवरेट कार्यक्रम है वो हेलो डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छा
0: अच्छा।
1: कार्यक्रम है जिसमें हम लाइव रूबरू होते हैं। ये
0: जी,
1: बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है मैम।
0: धन्यवाद, शुक्रिया। बताइए, आज के इस कार्यक्रम में वो कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म हमराज का गीत के बोल हैं, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, महेंद्र कपूर की आवाज में
0: और
1: ये सॉन्ग है
0: दोस्तों,
1: मैम।
0: जी दोस्तों का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: जी मैम, मैं दोस्तों का नाम है अफजल है और सभी दोस्तों को मैं डेडिकेट करना चाहूंगा।
0: तो चलिए रामलाल जी, सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी मैम, दिल से धन्यवाद।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: हेलो
0: हेलो
1: डियर फ्रेंड्स।
0: जी, नमस्कार। हमारी बात हो रही है योगेश जी से, जो कि है मध्य प्रदेश से।
1: जी मेरा नाम योगेश मेहरारिया, इंदौर मध्य प्रदेश।
0: जी, कैसे हैं आप योगेश जी?
1: बढ़िया मैडम,
0: जी, और इन दिनों क्या कर रहे हैं आप?
1: अभी कंपनी में काम करते हैं मैडम।
0: जी,
1: कंपनी है हर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स,
0: जी,
1: में काम करते हैं, वायरिंग का काम है।
0: अच्छा, कितने सालों से ये काम कर रहे हैं आप?
1: तकरीबन 19-20 साल हो गए मैडम।
0: काफ़ी वक्त हो चला है ना।
1: जी मैडम,
0: जी, और हमारे कार्यक्रम आप नियमित रूप से सुनते हैं?
1: जी मैडम, रेगुलर सुनते हैं मैडम। ये वाला
0: जी,
1: प्रोग्राम तो विशेष रूप से दिन में लगाए देते हैं।
0: अच्छा, मतलब सुनते ही हैं।
1: जी
0: जी, कैसा लगता है आपको
1: मैडम,
0: ये कार्यक्रम?
1: बढ़िया प्रोग्राम है ये। इसमें अपने पसंदीदा गीत सुनने को मिल जाते हैं, अलग अलग जगह के श्रोताओं की बातचीत वगैरह सुनने को मिलती है।
0: जी, बताइए आज किस
1: बात
0: जी तो आज किस कार्यक्रम में आपको कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं और दोस्तों को सुनाना चाहते हैं?
1: पापा कहते हैं फिल्म का नाम है,
0: जी
1: और गाने को बोल हैं पहले प्यार का पहला गम। मैडम
0: जी, दोस्तों का नाम लेना
1: दोस्त
0: चाहेंगे?
1: हमारे एक मोनू राजपूत है, युवराज राजपूत है, और रामशंकर है, आयुष है, नानक राम है, सोनू है, विलास राव है, जगदीश चंद है, तो काफी सारे दोस्त हैं मैडम जो इस प्रोग्राम को सुनते हैं
0: जी,
1: मैडम।
0: तो चलिए सबों के साथ सुनते हैं ये गीत। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू मैडम।

0: हेलो डियर फ्रेंड्स. हेलो
1: जी मैम, नमस्कार।
0: जी, नमस्कार. हमारी बात हो रही है शिवा जी से, जो कि है मध्य प्रदेश से. नमस्कार, आपका
1: जी
0: स्वागत है
1: मैम,
0: इस कार्यक्रम में. क्या करते हैं वैसे
1: नमस्कार।
0: आप?
1: जय श्री महाकाल मैम। मैम मैं ब्लाइंड हूँ मैम। जी
0: जी, आपने बताया था पहले भी. जी, कार्यक्रम में
1: जी
0: कौन सा गीत है जो आप सुनना चाहते हैं, बता दीजिए.
1: मैम, मूवी का नाम रहेगा मिलेंगे मिलेंगे, और उसमें एक राहत फतेह अली खान जी की आवाज में गाना है, इश्क की गली मेरे दिल को तुमसे कितनी मोहब्बत।
0: जी, और दोस्तों का नाम बता दीजिए आप.
1: हमारे मित्र रहेंगे राकेश जी, पूरन जी, गोल्डी जी और पुरुषोत्तम कुमार जी बदरुआ से, और हमारे भगवान सिंह परमार जी, और तमाम सुनने वाले, और स्पेशली आप।
0: तो चलिए शिवाजी, सबों के साथ सुनते हैं ये गीत. हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
1: थैंक यू।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा लाइव फोन आउट फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। हेलो डियर फ्रेंड्स,
1: विविध भारती FM 3 विजयपुरम 100.9 आपका हम सफर।

कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। मुस्कान ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है, जो हमारी चेहरे की सुंदरता को निखारती है। मुस्कान है जीवन का अनमोल खजाना, मुस्कान से बनता है जीवन सुहाना।

श्रोताओं, हमेशा मुस्कुराते रहने से बड़े दुख कम हो जाते हैं, क्योंकि मुस्कान भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत तोहफा है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए।

श्रोताओं, जब हम मुस्कुराते हैं तो न केवल हमारा चेहरा खिल उठता है बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी रोशन हो जाती है। छूले आसमां जमी की तलाश न कर, जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर।

श्रोताओं, जब हम खुश होते हैं या मुस्कुराते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए।

श्रोताओं, मुस्कान ही तो है जो हमें मजबूत बनाती है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत देती है। पर मुस्कुराना हर किसी के बस का नहीं है। मुस्कुरा वो ही सकता है जो दिल का अमीर हो। इसलिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबके दिलों में जगह बनाते रहिए।

100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है विविध भारती FM श्री विजयपुरम। दोस्तों, हमारे इस स्थानीय सभा के साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। शाम के 4 बजने वाले हैं, अब से कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे विविध भारती मुंबई के साथ। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका है ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही है।
1: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना, अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हां में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हां कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले।

इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भराए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गई। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी मां की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। मां के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर

मड़ाया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच, अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

लौटकर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भराया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की, सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार

लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी, मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे।

जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है? ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी मां ने यहां उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया? उस मां का कलेजा कांपा नहीं होगा? हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं मां बन गई हूं। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरो के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, मां की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ में लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा? उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा। फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी।

थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहां तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्चे हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बांझ हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे? ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरो, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुंदी आंखें अपनी मां को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूं। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें, नन्ही नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई, मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या मां बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? मां बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं, दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को मां का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्ची पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से

भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्हे सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरव देखो ना, कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था। मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरव चुपचाप खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छनकर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था। ये बच्ची मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती। थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है। हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि मां बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी। पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर यह अचानक ये मुसीबत कहाँ से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूं कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दो राहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला, जन्म देने वाली मां को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का

अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए। अनुष्का की जन्मदात्री माँ भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ दे हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली माँ है। मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था। नीरो निर्विकार भाव से इस नियत को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने मां पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ जैसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपने सुविधानुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी माँ के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं। फिर जब वो रुका तो उसकी सुनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कसकर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली माँ हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हमारी दूसरी सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: வணக்கம் அன்பு நேயர்களே, ஆகாஷ்வாணி ஸ்ரீ விஜயபுரம் வானொலி நிலையம் படைக்கும் தமிழ் அமுதம்.

अभी आप बांग्ला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कृषि जगत कार्यक्रम।

0: नमस्कार, कृषि जगत कार्यक्रम में मैं रागिनी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। किसान साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत एक अनमोल विचार से किया जाता है। अनमोल विचार है, अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे। जो कहते हैं खुद को सितारा है, जगमगा कर उनके सामने ही चमक कर देंगे उनकी फीकी और सूरज खुद को बना लेंगे। किसान भाइयों, हमें अपने हौसलों को बहुत बुलंद रखना है ताकि हम भी सूरज की तरह चमक सके। किसान साथियों, इस खूबसूरत विचार के बाद आइए अब सुन लेते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, द्वीपों में अरबी के रोपण का उचित समय क्या है? एक बार फिर पुनः इस प्रश्न को दोहराते हैं, द्वीपों में अरबी के रोपण का उचित समय क्या है? इस प्रश्न का उत्तर हम कार्यक्रम के अंत में देंगे, थोड़ा इंतजार करें।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे?
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब?
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: पर हम तो सब यही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: किसान भाइयों, आइए आपको अब सुनवाते हैं डॉक्टर MS कुंडू से ली गई बातचीत, जिसका विषय है बकरियों के लिए संतुलित आहार।
4: डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
5: आपको भी स्वागत, किसान भाई बंधु को भी स्वागत है इस प्रोग्राम में।
4: डॉक्टर साहब, जहां तक बकरियों के लिए आहार का सवाल है, किसान अगर जब गाय पालता है तभी आहार पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है, मुर्गी पालन जब थोड़ा व्यावसायिक तरीके से करता है तब भी बहुत ज्यादा ध्यान देता है, लेकिन बकरियों को थोड़ा सा नजरअंदाज कर देता है। पत्तियां अगर मिल जाता है तो बकरियां खा लेती है, नहीं तो अन्यथा उन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो बकरियों के लिए जो संतुलित आहार है वो कितना जरूरी है, कितना अहम है, आप क्या बताना चाहेंगे?
5: आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। ये बकरी जो है, आमतौर पर इसको पुराना जमाना में कहा जाता था पोर्स मैन गोट, मतलब जो गरीब आदमी है वो जब गाय खरीद नहीं सकते वो बकरी पालते हैं, उससे थोड़ा बहुत दूध मिल जाता है। हम लोग इसको कहते हैं चाय बनाने भर दूध मिल जाता है। तो सबका ख्याल यही रहता है जी भाई हमने बकरी पाल दिया, वो चर के खा जाएगा, कुछ भी चीज खाएगा, उसके बाद वो आगे हमको कुछ ना कुछ फायदा देंगे, और इसके लिए लागत भी बहुत ज्यादा लगता नहीं है, इसीलिए किसान भाई इसका ऊपर ज्यादातर सोचते हैं इसको क्या देखभाल करना है। लेकिन आज जो समस्या आ रहा है पशुपालन को लेके, जे इसको हम जीविका का एक स्रोत मान सकते हैं
4: जी।
5: बकरी साल में 1.5 बार बच्चा देते हैं, मतलब 15 महीने में 2 बार बच्चा देते हैं, तो 2 बार जब बच्चा देते हैं इसको 2-2, 4 बच्चा हो जाता है। और आजकल आप लोग देखे हैं जे बकरा का मीट का कितना ज्यादा लाभ है। लेकिन मैंने जो कहा जे 15 महीना में 2 बार बच्चा देते हैं, ये तब होगा जब उसको संतुलित आहार मिलेगा। सिर्फ हम उसको छोड़ देंगे वो भगवान भरोसा में रहेंगे, ये नहीं हो, क्योंकि इसको संतुलित आहार के बिना वो पूरा उसका शरीर का रखरखाव, साथ साथ उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए जो न्यूट्रिएंट का जरूरत होता है उसका कमी पड़ जाता है,
4: गर्भ धारण करने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है,
5: उसका कमी।

0: जाता है,
1: अच्छा
0: जिसके कारण कभी कभी ये बात गांव से काफी हम लोग का पास भी आते हैं, डॉक्टर साहब बकरी तो गर्म हुआ था, बकरा भी दिखाया था लेकिन वो पाल नहीं रखा। कारण ये होता है, जब बकरी गर्म होता है उस समय में वो अंडा निकालते हैं, वो अंडा इतना कमजोर हो जाता है, वो कमजोर अंडा से फर्टिलाइज होके फिर वो बच्चा पैदा नहीं हो पाता। तो ये सब चीज हम लोग बाहर से खुले आंख में देख नहीं पाते।
1: बिल्कुल है।
0: ये चीज को देखने के लिए हम लोग का जो 6 पोषक तत्व है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, नमक और पानी, इसका सबका एक अलग अलग नियम है। इस मात्रा में नहीं मिलेगा तो वो जानवर जिंदा तो रहेगा लेकिन उससे हमको प्रोडक्शन करने के लिए जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल। और जैसे कि आप बताए कि लोग परेशान रहते हैं कि
0: परेशान
1: भाई
0: रहते हैं जी, क्यों क्या हो
1: क्यों
0: रहा है।
1: क्या हो रहा है।
0: तो ये जो छोटा छोटा चीज रहता है, जैसे आप देखिए हम लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, कोई भी शादी ब्याह में हम लोग खाना बनाने के लिए गए हैं, देखा कि बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है, लेकिन जब थाली में लिया उसके बाद मैंने मुंह में डाला, देखा सब थाली छोड़ के भाग रहा है। बाद में टेस्ट करके देखा गया जो उसमें नमक ही नहीं डाला था। तो किसान भाई आप सोचिए, ये सारे चीज बन गया है लेकिन उसमें नमक, थोड़ा सा नमक, जिसका कभी भी खाना बनाने का समय हम लोग नजरअंदाज करते हैं, नमक क्या चीज है, उसको क्या खरीदना है, वो तो रसोई में है, लेकिन जब देना भूल गया है तब क्या स्थिति होता है, ये आप ये थोड़ा सा उदाहरण से आप समझ सकते हैं। उसी ढंग का बकरी के लिए भी पोषक तत्व में खनिज नमक का जरूरत होता है, जिससे उसका खून बनता है, जिससे उसका एंजाइम्स बनता है, जिसके उससे हार्मोन बनता है, ये सब चीज एक खनिज नमक से बनता है।
1: जी हाँ, मतलब देखने में घास दिख रहा है लेकिन
0: देख रहा
1: उसमें जो
0: है लेकिन उसको नहीं मिलता है। तो उसी से ये जो छोटे छोटे नुकसान हो रहा है वो किसान को पता नहीं चल पा रहा है। आखिरी में जब वो हीट में आ रहा है उस समय में दिखाई दे रहा है कि हीट में आ रहा है लेकिन बच्चा
1: रुक
0: पैदा
1: नहीं
0: नहीं
1: रहा
0: हो
1: है।
0: रहा है।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जहां तक संतुलित आहार का सवाल है, बकरियों के लिए जैसे कि आप खुद भी बता रहे हैं बकरी पत्ती दे देते हैं, तो वैसे अगर एक संतुलित आहार अगर देना है ताकि वृद्धि अच्छी हो, ग्रोथ उनका अच्छा हो, बच्चे समय पर दें, तो किन किन बातों पर किसान भाई ध्यान दें?
0: किसान, आपने बकरी पत्ती का जो बात बताया, इससे प्रोटीन अच्छा ढंग से मिल जाएगा, उसका प्रोटीन का कमी नहीं होता, जिसके लिए आप लोग देखे होंगे जे बकरी की बकरा जो हमारा अंडमान में है, बाहर में आमतौर पर 80% उसका चमक, स्किन का जो कालापन है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन उसमें कभी कभी कमी हो जाता है, विटामिन का कमी हो जाता है, मिनरल्स का कमी हो जाता है, ये दोनों चीज खास करके आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा,
1: ऊपर से देना
0: ऊपर
1: होगा।
0: से देना पड़ेगा। और एक चीज होता है हम लोग, जिसको हम लोग का वेटरनरी का भाषा में बोलते हैं फ्लैशिंग,
1: जी
0: जब बच्चा धारण करने का समय होता है उस समय में उसको ज्यादा पोषक तत्व का जरूरत होता है, और सब जानवर का एक खाने का तरीका होता है। जैसे आप बकरी को घास काट के जैसे गाय को देते हैं उसी ढंग में दे दीजिएगा तो वो खाएगा नहीं, उसको चाहिए ऊपर में टांग के देना है, वो गर्दन उठा के उससे नोच नोच के खाएंगे, इससे उसको एक आराम मिलता है।
1: जी हाँ
0: दूसरा है, आप उसको दानादार जो दाना देते हैं उसमें उसका गोटा गोटा दाना देता है, जैसे चावल देना है चावल को पाउडर बना के नहीं देना है, गेहूं देना है तो गेहूं गोटा देना है, चना देना है तो उसको चना देना है, तो क्योंकि उसमें उसका जो अंदर वाला दांत है उससे जब वो तोड़ता है उसमें एक आवाज आता है, उससे उसको थोड़ा सा संतुष्टि मिलता है। यही बात आप गाय को गोटा चावल की धान गेहूं दे दीजिए, देखिएगा उसका गोबर के साथ पूरा निकल के आ जाता है, क्योंकि उसका सिस्टम इसी ढंग का नहीं है जो वो गोटा चीज को हजम करके वो अपना शरीर का पोषक तत्व ले पाए। लेकिन बकरी का ऐसी चीज है जो गोटा चीज वो खा जाता है, खा जाने के बाद भी उससे पोषक तत्व तो लेते हैं,
1: बिल्कुल।
0: इसी से उसको हम लोग फ्लैशिंग का करने के लिए ये बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। जैसे कि हम 2-3 बकरी पाल रहे हैं घर में, आमतौर पर अंडमान में जो देखा जाता है उसमें हम हर रोज शाम के समय में एक मुठ्ठा चावल भी दे दे, आमतौर पर रंगत, दिगलीपुर, ये सब जगह में बंगाली और तमिल भाई ज्यादा रहते हैं, इन लोग का स्टेपल फूड भी चावल है, तो जो चावल अपने के लिए बना रहे हैं उससे एक मुठा चावल उठा लीजिए, उसको सूखा वाला गाय को नहीं बकरी को दे दीजिए, तो उससे फ्लासिंग का जो एक कमी हो रहा था वो पूरा हो जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, ये जो आप फ्लशिंग की बात कह रहे हैं कि अगर इस तरह पोषक तत्व

0: तो ज्यादा देंगे तो एक से अधिक बच्चे होने के चांसेस बढ़
1: चांसेस
0: जाएंगे।
1: हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बकरी में आमतौर पर दो बच्चा होता है, पहला बार में एक होता है, सेकंड टाइम से दो होता है, कोई कोई बकरियां तीन चार भी बच्चा देते हैं। मैंने तो एक बकरी को पांच बच्चा देते हुए भी देखा, लेकिन चार बच्चा देने का जो आमतौर पे है, ये करीब करीब टोटल पॉपुलेशन में 5 to 10% पॉपुलेशन में चार बच्चा भी देते हैं।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये जो फ्लशिंग की बात मैं आपसे पूछ रहा था, अगर किसान भाई जब बकरी गाभिन होती है या गर्मी में जब आती है, तो
1: आते
0: उसी
1: हैं
0: समय उस पर अगर ध्यान
1: गर्मी
0: दें।
1: में, आपने बहुत अच्छा समय काल का
0: हाँ
1: पूछा है।
0: जी, हाँ
1: जे गर्मी में आता है, ये आमतौर पर घर का महिला जो है, जो बकरी को देखरेख करते हैं, उनको पता है जे कब गर्मी में आने वाली है, तो उसका ठीक 15 दिन पहले से उसको वो चावल के गेहूं थोड़ा एक मुठा करके उसको देना है।
0: अच्छा
1: देने से क्या होगा, ये जो मैंने पहले शुरुआत में कहा था जो उसका अंडा निकलता है, वो अंडा बहुत पुष्ट निकलेगा। पुष्ट निकलने से जो मिलन होगा उसके बाद से उसका बच्चा पैदा होने का बहुत अच्छा चांसेस रहता है,
0: और एक से अधिक बच्चे भी
1: एक
0: हो
1: से
0: सकते हैं।
1: अधिक बच्चा होने का गुंजाइश रहता है।
0: बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, जो घर में पालते हैं आमतौर पर तो पत्ती दे देते हैं, जो घास वगैरह जो भी बकरी खा लेती है, लेकिन इसको अगर जैसे आपने बताया कि नमक चाहिए, विटामिन चाहिए, किसान इतना ज्यादा शायद खर्चा नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी अगर
1: जानकारी का एक्चुअली बहुत ज्यादा खर्चा लिए बात नहीं है, थोड़ा सा जानकारी का अभाव है। आप देखिए, हम लोग का ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर आदमी चावल का बेस खाना खाते हैं, तो चावल से जो गंजी निकलता है, उस गंजी में थोड़ा सा भी नमक दे दीजिए, आधा चम्मच मिनरल मिक्सचर उसमें मिला दीजिए, और एक ध्यान रखिएगा, ये जो गंजी देना है एकदम बिल्कुल ठंडा नहीं देना है, उसमें इतना गर्म भी ज्यादा देना नहीं है जिसमें कि उसका जीभ जल जाए। इसको नापने के लिए हम लोग ये करते हैं जे अपना अंगुली उसमें डाल दीजिए, डालने के बाद आपको महसूस हो जे हम अंगुली गंजी से निकालने का जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत गर्मी लग रहा है, उतना भर गर्मी जब रहेगा तब आप बकरी को दे दीजिए। घर में आमतौर पर सब्जी बनाते हैं, हरा सब्जी बनाते हैं, भाजी बनाते हैं, उससे जो चीज हम लोग फेंक देते हैं उसको थोड़ा सा काट के उस गांजी के साथ मिला दीजिए, वो गांजी खाते खाते बकरी वो खा लेंगे, तो उसी से भी इसका जो पोषक तत्व का कमी होता था वो मिल जाएगा। और चावल का गंजी मैं इसीलिए देना के लिए कह रहा हूँ, देखिए हम लोग का आदत जो है जिस गंजी को फेंक देने का, गंजी से बहुत सारे चावल का
0: पोषक तत्व
1: पोषक
0: निकल
1: तत्व
0: जाते
1: जो
0: हैं।
1: है वो निकल जाता है, वो जो हम डाल रहे थे ड्रेन में वो बकरी को दे देने से वो खा जाएंगे, और ठंडा हो जाने से बकरी को देने से वो बकरी खाती नहीं है,
0: अच्छा, थोड़ा सा गर्म रहना
1: थोड़ा सा
0: चाहिए।
1: गर्म रहने से वो बहुत अच्छा चाव से खा जाते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक मिला देने से उसको टेस्ट लगता है, तो इसी ढंग में हम दे सकते हैं। और एक चीज आपको बताएंगे, जब आप संतुलित आहार का बात कर रहे हैं, ये हम आम जनता जो एक दो बकरी पाल रहे हैं इनके लिए हमने बताया, जो किसान इसको खेती का रूप में देखेंगे, जे व्यावसायिक रूप में 10 से 15 पालेंगे, उसके लिए मैं इतना कहेंगे कि एक दाना बना लीजिए आप, जिसमें आप मकाई 40%, 1 क्विंटल दाना आपको बनाने के लिए मैं उसका अलग अलग जो उपचार होगा उसको बता रहा हूँ, 100 किलो दाना आप बनाइए, उसमें मक्का दीजिए 40 किलो, उसके बाद उसमें खली कुछ दे दीजिए, खली मतलब आप अंडमान में बहुत आसानी से कोकोनट खली मतलब कोपरा खली मिल जाता है, उसको दे दीजिए 20%, उसके साथ दाल चुनी दे दीजिए 10% दे दीजिए, उसके बाद आप दे दीजिए व्हीट ब्रांड, नहीं तो चावल का गुंडा जो होता है
0: भूसा
1: वो
0: जो होता
1: भी,
0: है।
1: भूसा जो है वो आप दे दीजिए, तो हो गया आपका 40, 10, 50, 70 हो गया, और दालचीनी 10 दे दीजिए, 80 हो गया। इसके बाद आपका उस जगह में जो चीज बहुत आसानी से मिलता है, जैसे चावल के समय चावल, गेहूं के समय गेहूं, ये सब चीज देके आप बाकी 20% कर लीजिए, और 2 किलो उसमें मिनरल मिक्सर दे दीजिए, 1 किलो नमक दीजिए, उसमें आप 100 किलो बन गया है। एक बकरी के लिए आप हर रोज 200 से 250 ग्राम उसको दाना उसी से देते जाइए, और ध्यान रखिएगा जे इस दाना जो बनाइएगा इस दाना को थोड़ा सा गोटा गोटा रखना है, उसको एकदम पाउडर जैसे आटा जैसे नहीं
0: नहीं
1: बनाना
0: बनाना
1: है, आटा जैसे बनाइएगा तो इसमें थोड़ा सा परेशानी है उसको।

0: खाने में परेशानी है, पचाने में परेशानी होता है।
1: अच्छी बात है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि जो व्यावसायिक तौर पर करना चाहते हैं इस तरह से कर
0: किस
1: सकते हैं,
0: तरह से?
1: और एक जो समस्या बकरी पालन में आती है कि जैसे आपने कहा कि घर का जो बचा हुआ खाना है, तो कभी-कभी कुछ पार्टी होती है या कोई फंक्शन होता है तो जो खाना बच जाता है सब, जैसा गर्मी गर्म करने के भी लोग नहीं सोचते हैं, दे देते हैं, और बकरियों का पेट फूल जाता है,
0: ये
1: समस्या
0: बहुत
1: होती
0: बड़ा भूल हो जाता है हम लोग का,
1: है।
0: किसान भाई से ये बड़ा भूल हो जाता है, क्योंकि हम लोग देखे हैं अक्सर जो बकरी है, गाय है, भैंस है, इसका 4 स्टोमक रहते हैं, इसमें रूमेन कहते हैं, इसमें जाके पत्ती पचाने का जगह है, उस जगह में जब हम घर का आदमी का खाने वाला खाना उसको ज़्यादा दे देते हैं तो उसका पेट फूल जाता है, पेट फूल जाने के बाद उसमें गैस पैदा होता है और वो गैस सामने ओर से फेफड़ा के ऊपर प्रेशर डालता है, फेफड़ा के ऊपर प्रेशर डालने से वो देखिएगा थोड़ी देर के बाद, मतलब आपने दोपहर को खाना खिलाया, शाम को जाते जाते वो चार एकदम लग रहा है कि बिस्तर में सो गया, इसी ढंग में करेंगे और चितलाते रहेंगे, बै बै करते करते उसका देखिएगा पेट लगेगा कि ढोलक जैसे हो गया, इसी से उसको दम तोड़ देते हैं।
1: अच्छा,
0: तो इसीलिए कभी भी जो पूरा दिन भर का खाना है उसमें एक तिहाई से ज्यादा खाना आदमी वाला खाना नहीं देना चाहिए,
1: बिल्कुल, हाँ,
0: गाय, भैंस, बकरी,
1: तीनों
0: ये
1: के लिए
0: तीनों चीज के लिए कभी भी आदमी जो खाना खाते हैं,
1: पका हुआ जो खाना है
0: पका
1: उनको।
0: हुआ जो खाना है, चावल, दाल, गेहूं का बेस जो दाना है, ये एक तिहाई से ज्यादा नहीं देना है, देने से ही उसका पेट में गैस पैदा होगा, क्योंकि आखिरी में भगवान ने उसको बनाया है घास पत्ती खा के जिंदा रहने के लिए, उसका सिस्टम भी उसी ढंग में बना हुआ है, तो उसमें 2/3 उसका घास भूसा ये सब लेके भर्ती करना है,
1: और थोड़ा सा 1/3
0: थोड़ा
1: देसी घी।
0: सा देना है। आज जो वैज्ञानिक जानकारी हम लोग को मिला है इसके तहत हम लोग उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं,
1: जी हाँ,
0: उसको बदल नहीं सकते,
1: बिल्कुल
0: बकरी
1: बिल्कुल,
0: को हम बदल नहीं सकते हैं, उसका आदमी जैसे खाना देके उसको बड़ा नहीं कर सकते, और आदमी भी बकरी जैसे खाना खा के बड़ा नहीं हो सकता है।
1: बिल्कुल सही। जिसके लिए वो
0: जो
1: बना
0: जिसके लिए
1: है।
0: बना है उसके लिए, अभी ये जो सघन रूप से हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं इसमें किसी जगह में हमको ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए दूसरा एक जगह में कमी हो जाता है,
1: जी,
0: उस कमी को हम लोग को आजकल जानकारी हो गया है, इसी का कारण हमने बताया कि इस जगह में बहुत ज्यादा पानी बरसता है तो मिट्टी का उपजाऊ शक्ति धो के चला जाता है, तो घास फूस भी जो होता है वो पहले जमाने के जैसे उतना
1: पोषक नहीं है,
0: पोषक तत्व नहीं है, वो
1: बिल्कुल।
0: हम लोग को जानकारी मिल गई है, तो उसी को हम लोग सप्लीमेंट करने के लिए बोलते हैं कि ये सब चीज कमी हो रहा है इसको दीजिए।
1: बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, आपकी बातों से साफ है कि बकरी पालन में अगर थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा भी खर्च करे, तो भी उत्पादन ज्यादा लिया जा सकता है। समय पर बकरी गाभिन हो सकती है, बच्चे मिल सकते हैं। जो अज्ञानतावश किसान भाई ऐसा नहीं करते हैं, अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे तो काफी लाभ इससे
0: काफी
1: कमा
0: लाभ हो
1: सकते हैं।
0: सकता है।
1: बिल्कुल
0: जाते जाते और एक चीज हम बताना चाहेंगे किसान भाई को, इस जगह में साल भर बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण इसका अंदर में पेट में कीटाणु होने का बहुत ज्यादा शंका रहता है, तो इसीलिए बरसात शुरू होने का पहले और बरसात के बाद, जैसे अभी ये अक्टूबर महीना चल रहा है, अक्टूबर महीना का आखिरी तक कि नवंबर महीने का पहला हफ्ता में आप लोग हर बकरी को, गाय को डीवर्मिंग करा दीजिए,
1: कीड़ा
0: मतलब
1: मारने
0: कीड़ा
1: के लिए।
0: मारने का दवाई खिला दीजिए, उसके बाद फिर जैसे अप्रैल मई महीना में बरसात शुरू होगा तो अप्रैल का पहला सप्ताह में फिर आप एक बार कीड़ा मारने का दे दीजिए, क्योंकि होता है क्या, पोषक तत्व तो अच्छा देने से भी वो हमारा प्रोडक्शन में उसका रिफ्लेक्ट नहीं होता है, इसके कारण है कि उसके अंदर में जो कीटाणु है वो सारे पोषक तत्व तो खा जाता है
1: जी, पेट में कीड़े रहने से
0: कीड़ा रहने
1: दिक्कत
0: से,
1: हो रहा है।
0: तो किसान भाई आमतौर पे बहुत अच्छा ढंग से पालते हैं, लेकिन छोटा छोटा जानकारी का अभाव में
1: जो लाभ
0: उनका
1: उनको मिलना
0: प्रैक्टिस में
1: चाहिए।
0: नहीं लाते हैं, उम्मीद करते हैं कि इसके बाद से उन्होंने जरूर इसको लाभ उठाएंगे।
1: बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, आज आप कार्यक्रम में आए, आपसे इतनी बातें हुई, जैसे कि आपने उम्मीद जताई है, किसान भाई जरूर इन बातों पर गौर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी, किसान भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमको खुशी होगा जी हमारा बात किसान भाई कोई भी एक भी अपनाए तो हमको बहुत खुशी होगी। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: किसान साथियों, अभी आपने डॉक्टर MS कुंडू से बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियां सुनी। सही जानकारी लेकर आप अपने बकरियों के लिए एक संतुलित आहार तैयार कर पाएंगे। जानकारी के बाद आइए सुनते हैं किसान भाइयों एक प्यारा सा गीत।

0: गीत का आनंद तो आपने उठा ही लिया होगा।
1: किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आइए सुनते हैं इसी संदर्भ में एक चर्चा।
0: रेड क्रॉस एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य रोगियों, घायलों तथा युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करना है। रेड क्रॉस अभियान को जन्म देने वाले महा

मानवता प्रेमी जीन हेनरी ड्यूनेट का जन्म 8 मई 1828 में हुआ था। उनके जन्म दिवस 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को दुनिया भर में मनाते हैं। इस दिवस को रेड क्रिसेंट डे के नाम से भी जाना जाता है। पहला विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई 1948 को मनाया गया था। यह दिवस मानवता, करुणा और एकजुटता के महत्व को याद दिलाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया में आपदा, युद्ध या किसी अन्य संकटों से पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2025 में रेड क्रॉस दिवस की थीम थी मानवता को जीवित रखना। इस दिवस पर आपात स्थितियों, आपदाओं और संघर्षों में सहायता प्रदान करने वाले स्वयं सेवकों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाता है। मानवता को जीवित रखना एक ऐसा संदेश है जो आज के चुनौतीपूर्ण समय में अत्यंत प्रासंगिक है, जहां संघर्ष, स्वास्थ्य संकट और सामाजिक असमानताएं लगातार बढ़ रही है। यह विषय हमें मानवीय मूल्यों की रक्षा करने की आवश्यकता का स्मरण कराता है और रेड क्रॉस कार्यकर्ताओं को एक श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जो जमीन पर शांति, दया और आशा फैलाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह सिर्फ एक थीम नहीं बल्कि एक आह्वान है कि हम सब मिलकर सेवा, सहानुभूति और सहयोग की भावना से मानवता को जीवित रखें। यह एक गैर सरकारी मानवतावादी संगठन है जो युद्ध, आपदा, महामारी, भुखमरी और अन्य आपात स्थितियों में जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करता है। यह संस्था किसी भी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता से परे जाकर सबकी मदद करती है, जैसे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। विश्व रेड क्रॉस दिवस का मुख्य उद्देश्य है युद्ध और आपदा में घायल व पीड़ित लोगों की सहायता करना, जरूरतमंदों के लिए सेवा और सहानुभूति की भावना को प्रोत्साहित करता है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में की गई थी। यह संस्था देश में रक्तदान अभियान, आपदा राहत कार्य, हेल्प केयर और सामाजिक सेवा जैसे अनेक क्षेत्रों में कार्य करती है। राष्ट्रपति इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। रेड क्रॉस संस्थाएं विभिन्न सामाजिक सेवा कार्यक्रमों, निशुल्क मेडिकल कैंप, रक्तदान शिविर और रैली सेमिनार का आयोजन करती है। स्कूली छात्रों, युवाओं और स्वयं सेवकों को मानवीय सेवा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मीडिया और सोशल मीडिया पर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के माध्यम से जागरूकता फैलाई जाती है। रेड क्रॉस कार्यकर्ताओं को उनके साहस और सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है। रेड क्रॉस दिवस न केवल एक दिन है बल्कि यह सेवा, साहस, करुणा और मानवता का प्रतीक है। आज लाखों लोगों को संकट की घड़ी में सहायता प्रदान कर रहा है। इस दिन हम सभी को यह प्रेरणा लेना चाहिए कि जरूरतमंद की सहायता करना ही सच्चा धर्म है। किसान साथियों, अभी आप सुन रहे थे चर्चा, विषय था रेड क्रॉस दिवस। अभी हम कार्यक्रम के अंत की ओर है। हमने प्रश्न पूछा था कि टिप्पो में अरबी के रोपण का उचित समय क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है, द्वीपों में अरबी के रोपण का उचित समय अप्रैल से मई के दौरान रहता है। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों इस बात की जानकारी थी, यदि नहीं तो इस प्रश्नोत्तर के माध्यम इस बात की जानकारी आपने हासिल कर ली होगी।

0: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
1: किसान साथियों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। और अब रागनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है समाचार तरंगिणी।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है समाचार तरंगिणी। इस अंक में ऑपरेशन सिंदूर, GNI, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और टीवी मुक्त भारत अभियान।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपनी सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। सरकार ने कहा है कि ग्रेट निकोबार परियोजना इस बात का उदाहरण है कि समग्र विकास किस तरह आर्थिक विकास, पारिस्थितिक संरक्षण और सामाजिक समावेश को संतुलित कर सकता है। यह परियोजना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री और रक्षा उपस्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रेट निकोबार की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाती है, साथ ही मजबूत पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और जनजातीय कल्याण तंत्रों को भी शामिल करती है। ग्रेट निकोबार परियोजना अंडमान सागर में भारत की उपस्थिति को मजबूत करने की एक रणनीतिक पहल है। इसका उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को सुनियोजित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के साथ संतुलित करना है। स्वदेशी समुदायों का संरक्षण इसकी योजना का केंद्र बिंदु है। यह परियोजना रणनीतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक प्राथमिकताओं को जोड़ती है। यह सुनिश्चित करता है कि विकास टिकाऊ, समावेशी और राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो। यह परियोजना अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की उपस्थिति को काफी मजबूत करेगी, समुद्री और रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगी और द्वीप को वैश्विक व्यापार और लॉजिस्टिक नेटवर्क के साथ एकीकृत करेगी। यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी बंदरगाहों की तुलना में विशिष्ट भौगोलिक लाभों के साथ एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल भी स्थापित करेगी, जिससे भारत एक प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक केंद्र के रूप में स्थापित होगा। पर्यावरण संबंधी गहन जांच और उसके परिणाम स्वरूप लागू सुरक्षा उपायों के कारण ही पर्यावरण और वन संबंधी स्वीकृतियां प्रदान की गई। ये स्वीकृतियां न्यायिक जांच में खरी उतरी हैं। इनमें एक ग्रीन फील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 450 मेगावाट क्षमता वाला गैस सौर ऊर्जा संयंत्र और एक नियोजित टाउनशिप शामिल है। उत्कृष्टता की भावना को मजबूत करते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने हाल ही में स्वराज द्वीप के लाइट हाउस ड्राइव साइट पर सबसे ऊंचा अंडर वाटर ह्यूमन स्टैक बनाकर दूसरा गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस मानव श्रृंखला की ऊंचाई 22.3 मीटर मापी गई, जो 3 मिनट तक बनी रही। इस दौरान उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी के साथ 14 स्कूबा डाइवर्स ने मिलकर पानी के भीतर इस विशाल मानव श्रृंखला का निर्माण किया। गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्णायक ऋषि नाथ ने अधिक

आधिकारिक तौर पर इस नए विश्व रिकॉर्ड की घोषणा करते हुए प्रशासन को प्रमाण पत्र भेंट किया। इससे पहले स्वराज द्वीप में प्रशासन ने सबसे बड़ा अंडर वाटर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल अजय कोचर, मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्र भूषण कुमार, पुलिस महानिदेशक HS धालीवाल के साथ पर्यटन विभाग और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य टीबी के मामलों की शीघ्र पहचान, मृत्यु दर में कमी, नए मामलों की रोकथाम तथा जन भागीदारी के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना है। अभियान के तहत अब तक 544 आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित किए गए तथा कई गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे टीबी के प्रति लोगों में जागरूकता और इससे जुड़े सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करें। उधर आयुष्मान आरोग्य शिविर के 100 दिवसीय अभियान के तहत निकोबार जिले के माकाचुआ गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान लोगों की चेस्ट एक्सरे जांच की गई। ये पहल दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने और टीबी की समय पर पहचान सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। टीबी मुक्त भारत अभियान 100 दिवसीय अभियान के तहत दक्षिण अंडमान जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से रील प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इच्छुक लोग टीबी का शीघ्र निदान, उपचार, समय पर जांच, इलाज का महत्व, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी, खांसते या छींकते समय बरती जाने वाली सावधानियां, टीबी से जुड़े भ्रम और सामाजिक भेदभाव को दूर करना, निक्षय मित्र सहायता जैसे विषयों पर रील बना सकते हैं। इच्छुक प्रतिभागी 10 मई तक पंजीकरण करा सकते हैं। रील 11 से 30 मई तक जमा किए जा सकते हैं। विजेताओं को नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। प्रतियोगिता के विस्तृत नियमों व दिशा निर्देशों के लिए QR कोड स्कैन किया जा सकता है। तमिलगा वेत्री कशगम प्रमुख विजय ने हाल ही में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात के दौरान तमिलनाडु में अगली सरकार बनाने का दावा पेश किया। विधानसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी उनकी पार्टी TVK को बहुमत के 118 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 सीटों की आवश्यकता है। अब अभिनेता से राजनेता बने विजय को सदन में अपनी सरकार का बहुमत साबित करना होगा। 5 विधायकों वाली कांग्रेस ने TVK को समर्थन देने का निर्णय लिया है। तमिलनाडु प्रदेश प्रभारी गिरीश चोडंकर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के विधानसभा के 9 निर्वाचित सदस्यों की एक बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया है। TVK को समर्थन को लेकर DMK और कांग्रेस के दीर्घकालिक गठबंधन सहयोगियों के बीच दरार बढ़ती जा रही है। DMK नेता और कनिमोई के प्रवक्ता NVN सोमू ने कहा कि अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है तो यह DMK के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि DMK कठिन समय में कांग्रेस के साथ खड़ी रही है। सांसद विष्णुपद रे ने प्रशासन से आग्रह किया है कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए द्वीप समूह के सभी डिग्री कॉलेजों में कार्यरत गेस्ट लेक्चरर्स की सेवाओं को जारी रखा जाए। सांसद ने JNRM, एलकॉल, MG कॉलेज, मायाबंदर BEd कॉलेज, डीब्रेड सहित विभिन्न संस्थानों में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी की समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये शिक्षक कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं और UGC मानकों के अनुसार योग्य होने के साथ साथ उनका कार्य संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि बार बार नई भर्ती प्रक्रिया से प्रशासनिक विलंब होता है और शैक्षणिक कार्य प्रभावित होता है, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। अतः उन्होंने मौजूदा गेस्ट फैकल्टी को प्राथमिकता देने, केवल रिक्त पदों पर ही नई भर्ती करने तथा सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में एक समान और पारदर्शी नीति अपनाने का सुझाव दिया है। सांसद ने यह भी अनुरोध किया है कि लॉ कॉलेज और NIMS जैसे संस्थानों में अपनाई गई सर्वोत्तम क्रियाओं को अन्य कॉलेजों में भी लागू किया जाए। दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के लिए कल विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें नए पदाधिकारियों का निर्वाचन किया गया। यह बैठक सुबह 10 बजे परिषद के सम्मेलन कक्ष में हुई, जिसकी अध्यक्षता दक्षिण अंडमान जिले की उपायुक्त पूर्वा गर्ग ने की। निर्वाचन परिणामों के अनुसार P उमर को दक्षिण अंडमान का नया जिला परिषद अध्यक्ष चुना गया, वहीं आशा मांझा हल्दर को उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। बैठक में उपस्थित सभी 18 निर्वाचित सदस्यों ने मतदान में भाग लिया। निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि नव निर्वाचित अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह आज जिला परिषद के

मिलन कक्ष में आयोजित किया गया। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने खतरनाक और अन्य कचरे के सुरक्षित प्रबंधन के लिए खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन और सीमा पार संचलन नियम 2016 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के तहत खतरनाक कचरे को उत्पन्न करने वाले, उसका रखरखाव करने वाले, संग्रहकर्ता, प्राप्तकर्ता, प्रसंस्करणकर्ता और परिवहनकर्ता को कचरे का उचित भंडारण, पुनर्उपयोग, पुनर्चक्रण, उपयोग और निपटान सुनिश्चित को कहा गया है। ऐसी सभी संस्थानों को नियमों के तहत प्राधिकरण प्राप्त करना आवश्यक है। साथ ही जल और वायु अधिनियमों के तहत स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति प्राप्त करना भी अनिवार्य है। द्वीप समूह के भीतर ऐसी गतिविधियों में लगी सभी इकाइयों को ANPCC के ऑनलाइन पोर्टल www.anocmms.nic.in के माध्यम से आवश्यक प्राधिकरण प्राप्त करना होगा। उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने सभी हितधारकों से निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस अवसर को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने सभी सरकारी विभागों को शामिल करते हुए व्यापक स्तर पर मास योग सत्र आयोजित करने की योजना बनाई है। सभी क्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल के तहत प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 15 मई से 31 मई तक किया जाएगा। यह प्रशिक्षण प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक जंगलीघाट स्थित आयुष अस्पताल के योग इकाई में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को योग प्रशिक्षक के रूप में तैयार करना है, ताकि वे अपने अपने विभागों में 21 जून को होने वाले सामूहिक योग प्रदर्शन का सफल संचालन कर सके। प्रशासन ने सभी विभागों से अनुरोध किया है कि वे अपने यहां से कम 2 कर्मचारियों को इस प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए नामित करें। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक विभाग डॉक्टर नंदिनी चिकित्सा अधिकारी आयुष अस्पताल से संपर्क कर सकते हैं। जहाज रानी सेवा निदेशालय ने प्रशासनिक कारणों से मई माह के लिए घोषित जहाजों के परिचालन कार्यक्रम में संशोधन किया है। अब MV कालीघाट की 2 अलग अलग निर्धारित सेवाएं ली जाएंगी। विभाग ने यात्रियों से पुराने टिकट रद्द कर नए टिकट लेने की अपील की है। पहले संशोधन के अंतर्गत MV भारत सीमा के स्थान पर MV कालीघाट 14 मई को सुबह 7 बजे राजधानी श्री विजयपुरम से कैम्बल बे के लिए रवाना होगा। यह जहाज लिटिल अंडमान, कार निकोबार, तरेसा, कचाल, ननकौड़ी, माकाचुआ और अफरा बे होते हुए यात्रा करेगा तथा 17 मई को रात 9 बजे कैम्बल बे से वापसी करेगा। दूसरे संशोधन के अंतर्गत MV सेंटिनल के स्थान पर भी MV कालीघाट को 27 मई को कैम्बल बे रूट पर संचालित किया जाएगा। यह जहाज 30 मई को वापस श्री विजयपुरम पहुंचेगा। विभाग ने बताया कि पुराने जहाजों के टिकट धारकों के टिकट रद्द कर उनको पूरा मूल्य वापस दिया जाएगा। नए टिकट आज से जारी किए जाएंगे। यात्री ऑनलाइन बुकिंग के लिए पोर्टल dss.andamannicobar.gov.in ई टिकटिंग का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा टिकट स्टार्स काउंटरों पर भी उपलब्ध होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जयंती के अवसर पर अतुल स्मृति समिति द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समिति ने जानकारी दी है कि यह कार्यक्रम कल शाम 7 बजे समिति परिसर में आयोजित होगा। कार्यक्रम में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के साहित्य, संगीत और सांस्कृतिक योगदान को याद किया जाएगा। आयोजन के दौरान गीत, कविता पाठ और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। इस आयोजन में हर वर्ष विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के सदस्य भाग लेते हैं। खेल एवं युवा मामले निदेशालय, अंडमान निकोबार राज्य खेल परिषद, शिक्षा विभाग और विभिन्न खेल संघों के समन्वय से नेताजी खेल परिसर में 45 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करने जा रहा है। यह शिविर आज से 24 जून तक आयोजित किया जाएगा। इसमें फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, साइकिलिंग, शतरंज, बैडमिंटन, तीरंदाजी, एथलेटिक्स और टेबल टेनिस जैसे विभिन्न खेल विधाएं शामिल हैं। इसके साथ ही समाचार तरंगणी का ये अंक समाप्त हुआ। समाचार तरंगणी आकाशवाणी श्री विजयपुरम के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से तैयार की जाती है। वाचिका अनीता क्रिकेट्टा, संपादक और प्रस्तुतकर्ता अंकित कुलश्रेष्ठ।

आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत समाचार तरंगनी आप सुन रहे थे। इस अंक में आपने सुना ऑपरेशन सिंदूर, ग्रेट निकोबार परियोजना, जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड और टीबी मुक्त भारत अभियान। वाचिका थी अनीता करकेट्टा। संपादक व प्रस्तुतकर्ता थे अंकित कुलश्रेष्ठ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की तीसरी कड़ी।

नमस्कार दोस्तों, लम्हे प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका आरजे चेतन। एलर्जी एक ऐसी स्थिति है जो किसी विशिष्ट पदार्थ या पदार्थों के समूह के प्रति सामान्य से अधिक संवेदनशीलता के स्तर की विशेषता होती है। ये पदार्थ जिन्हें एलर्जी कहा जाता है अति संवेदनशील व्यक्तियों में प्रतिक्रिया को ट्रिगर करते हैं। एलर्जी टिक्स, मोल्ड, भोजन, पराग, पालतू जानवर और धूल के कणों में पाई जा सकती है। शरीर में एलर्जी की बीमारी विकसित करने की आनुवंशिक प्रकृति को एटोपी के रूप में जाना जाता है। जब एलर्जिस्ट एटोपिक लोगों के संपर्क में आते हैं तो एक प्रतिरक्षा विकसित हो जाती है जो आगे चलकर एलर्जी और सूजन की ओर ले जाती है। एलर्जी किसी विशिष्ट एलर्जी वाले व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो एलर्जी रिएक्शन की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। जैसे ही एलर्जेंस शरीर में प्रवेश करते हैं, शरीर द्वारा एक एंटीबॉडी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। मस्तूल कोशिकाओं को प्रति एंटीबॉडी का जुड़ाव होता है। मस्तूल कोशिकाओं की प्रतिक्रिया हिस्टामिन को मुक्त करते हैं। यदि एलर्जी के कारण हिस्टामिन निकलता है तो इसे जलन और सूजन हो सकती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। अब आपको बता दें कि सबसे आम एलर्जीज क्या है दोस्तों। पहले तो पेंसिलिन से एलर्जी। पेंसिलिन के कारण होने वाले एलर्जी की प्रतिक्रिया एनाफिलैक्सिस से लेकर हल्के दाने तक हो सकती है। पेंसिलिन एंटीबायोटिक दवाओं का एक समूह है जिसका नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। मीट एलर्जी। पोल्ट्री उत्पाद और बीफ जैसे मांस के कारण एक व्यक्ति एलर्जी की प्रतिक्रिया से पीड़ित हो सकता है। इस एलर्जी प्रतिक्रिया के लक्षण को विकसित होने के कुछ समय लगता है। पराग कण, पॉलन, ये ऐसे कण हैं जो पेड़ और घास द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगर ये कण सांस के जरिए शरीर के भीतर पहुंच जाए तो इससे सरदर्द, छींक और गले में जलन हो सकती है। कॉस्मेटिक एलर्जी। कई कॉस्मेटिक उत्पाद जैसे मॉइस्चराइजर, शैम्पू और अन्य चेहरे के उत्पादन एलर्जी का कारण बन सकते हैं। कुछ सामान्य लक्षण में सूखापन और सूजन शामिल है। डस्ट माइट्स। ये जानकर आपको बहुत हैरानी हो सकती है कि लेकिन कमरे के ज्यादातर कोनों में डस्ट माइट मौजूद है। बेडशीट्स, मैट्रेस, पर्दे और तकिए इनके घर है, इसीलिए आप हमेशा अपना घर का साफ सफाई ठीक से करें। दोस्तों, दुनिया भर में ज्ञात सबसे आम एलर्जी से एक प्रोटीन है जो जानवरों द्वारा उत्सर्जित किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति गलती से इसे अंदर ले लेता है तो इसे घरघराहट हो सकती है। खाद्य एलर्जी। किसी व्यक्ति को खाद्य एलर्जी भी हो सकती है दोस्तों। ये संभव है कि किसी व्यक्ति को दूध, काजू, अंडे, मेवा आदि जैसे डेयरी उत्पादों से एलर्जी हो सकता है। अगर कोई कीट व्यक्ति को काटता है तो एलर्जी की प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है। कीड़े का काटना भी खतरनाक हो सकता है। कीड़ों के कुछ काटना घातक भी हो सकता है। अगली एलर्जी है दोस्तों मोल्ड्स। ये फंगस जो घर के

0: अंदर और नम स्थानों में आसानी से पाई जा सकती है। मोल्ड से एलर्जी, जलना, छींकना और अंततः अस्थमा का कारण बन सकती है। परफ्यूम की खुशबू से भी व्यक्ति को एलर्जी हो सकता है। ये सबसे आम एलर्जीनों में से एक है जिसे त्वचा पर यानी अपने स्किन पर सोरनेस हो सकता है। एलर्जी के सबसे आम कारणों में से एक कॉकरोच के कारण हो सकता है जो घर में इधर उधर भाग रहे हैं। कॉकरोच द्वारा छोड़े गए श्वास संबंधी एलर्जी से व्यक्ति को अस्थमा का विकास हो सकता है। कॉकरोच एलर्जी के सबसे आम कारणों में से एक है। यदि किसी व्यक्ति को उचित धूप नहीं मिल रही है, अगर कोई व्यक्ति अस्थमा से पीड़ित है, एलर्जी एक विशेष एजेंट के लिए शरीर की प्रतिक्रिया है। लक्षणों में एलर्जिक राइनाइटिस, छींकना, साइनसाइटिस, सांस की तकलीफ, घरघराहट, सीने में जकड़ना, खांसी, लाल चकते जो उठे हुए हैं और खुजली, सूजे हुए होंठ, जीभ, आंखें और चेहरा, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त शामिल है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। बीमारी और शुष्क और फटी त्वचा की भावना। एलर्जी के लक्षण तुरंत प्रदर्शित नहीं हो सकते हैं। ये कुछ घंटों से लेकर 10 दिनों के बीच कहीं भी स्पष्ट हो सकता है। उपचार के साथ भी लक्षण 2 से 4 सप्ताह तक रह सकते हैं। एलर्जिन के लगातार संपर्क से बचने से इसे बारामासी बनने से रोका जा सकता है। एक व्यक्ति एलर्जी प्रतिक्रिया को रोक नहीं सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जा रहे लक्षणों को सीमित करना संभव है। एलर्जी के लक्षण को कम करने के लिए उपचार उपलब्ध है। एलर्जी की रोकथाम के लिए व्यक्ति को स्वयं को एलर्जी से बचने की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में उतना आसान नहीं है जितना लगता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में पालतू जानवर है तो एलर्जी से खुद को बचाना और भी मुश्किल हो जाता है। हालांकि सतर्क रहने से भविष्य में एलर्जी से बचा जा सकता है। एंटीहिस्टामिन, ये दवाएं हिस्टामिन क्रियाओं को अवरुद्ध करने के लिए जिम्मेदार है। एक डॉक्टर इम्यूनोथेरेपी की सलाह भी दे सकता है। प्रतिरक्षा प्रणाली के पुनर्वास के लिए डॉक्टर द्वारा इस चिकित्सा की सिफारिश की जाती है। एलर्जीज मौसमी हो सकते हैं यानी सीजनल हो सकते हैं, यानी हे फीवर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। हम अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल चीजें करके एलर्जी होने से बच सकते हैं, जैसे एलर्जी पैदा करने वाले कारकों के संपर्क को कम करना, इंडोर हवा की शुद्धता बनाए रखना, पॉलन ग्रेन्स पराग की मात्रा अधिक होने पर बाहर के संपर्क से बचना। ऐसे कई इलाज है दोस्तों, आप घर पर भी कर सकते हैं। और बेहतर यही है कि आप पहले अपने एलर्जेंस को पहचानें और बाद में उसके संपर्क से आने में अपने आप को बचाएं। तो ये थी दोस्तों एलर्जीज के बारे में। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले सेगमेंट में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की तीसरी कड़ी सुन रहे थे।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6:55 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की।

आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 6:55 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष व कल प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज के शेष कार्यक्रम अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जन सूचनाएँ दी जाएगी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:20 पर रानू मुखर्जी को आप सुन पाएंगे। शाम 7:30 पर युवानी कार्यक्रम के अंतर्गत फोन इन प्रोग्राम हेलो फ्रेंड्स आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का लुफ्त लीजिए रात 8 चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। रात 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार व गौरवगान। रात्रि 10 संदेशे आते हैं आप सुनेंगे। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 न्यूज़ एट 9, रात 9:15 पर स्पॉटलाइट और रात 9:30 पर करंट अफेयर्स आप सुनेंगे। जबकि FM 100.9 MHz पर रात 10 आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर सुनिए अनमोल विचार। तत्पश्चात होगा भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:25 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा स्वच्छ खेती। जलियानों का यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:10 पर। 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम पंची शीर्षक पर केंद्रित होगा। रामचरितमानस गान की 233वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर। वतन के गीत कार्यक्रम के तहत देशभक्ति गीत सुनिए 6:40 पर। छः बजकर 50 पर मौसम की जानकारी एवं कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा। सवेरे 7 आप सुनेंगे जन सूचनाएँ। सात बजकर 15 पर देशरागनी कार्यक्रम आप सुनेंगे। जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 7:30 पर प्राइमरी चैनल और FM 100.9 MHz पर होगा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। विषय रहेगा मौसमी बीमारियों से बच्चों की सुरक्षा। विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर शाहीन कौरा। प्रस्तुत करता होंगी जयशीला।

कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दोपहर 12 बजे। मलयालम कार्यक्रम का समय रहेगा 12:30 पर। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष व कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। श्रोताओं, हम आपको पुनः याद दिला दें।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में 8:30 पर फनकार होंगे राधा सलूजा, रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर। फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकेंगे सवेरे 9 बजे तरहाने सुहाने कार्यक्रम में। नौ बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में गायत्री का कर्नाटक शैली में वीणा वादन आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम कशिश का समय होगा सुबह 10 बजे। गीत गुंजन कार्यक्रम का आनंद लीजिए 11 बजे।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 7:15 पर मौसम की जानकारी, जलियानों का यात्रा कार्यक्रम एवं जन सूचनाएँ दी जाएगी।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में 7:20 पर रानू मुखर्जी को आप सुन पाएंगे। शाम 7:30 पर युवानी कार्यक्रम के अंतर्गत फ़ोन इन प्रोग्राम हेलो फ्रेंड्स आप सुन पाएंगे। फिल्मी गीतों का लुत्फ़ लीजिए रात 8 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम में।

रात 8:30 पर सुनिए रोजगार समाचार व गौरव गान। रात्रि 10 बजे संदेशे आते हैं आप सुनेंगे। इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त रात 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे न्यूज़ एट 9, रात 9:15 पर स्पॉटलाइट, रात 9:30 पर करंट अफेयर्स आप सुन पाएंगे। जबकि एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर रात 10 बजे आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित कार्यक्रम छाया गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल हमारी पहली सभा आरंभ होगी प्रातः 5:25 पर। 5:30 पर सुनिए अनमोल विचार। तत्पश्चात होगा भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। 5:55 पर एग्री टिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा स्वच्छ खेती। जलयानों का यात्रा कार्यक्रम से हम आपको अवगत करवाएंगे सवेरे 6:10 पर। छः 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम पंछी शीर्षक पर केंद्रित होगा। रामचरितमानस गान की 233वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी 6:30 पर।

0: वतन के गीत कार्यक्रम के तहत देशभक्ति गीत सुनिए 6:40 पर। 6:50 पर मौसम की जानकारी एवं कार्यक्रमों का विवरण बताया जाएगा। सवेरे 7 बजे आप सुनेंगे जनसूचनाएं। 7:15 पर देश रागनी कार्यक्रम आप सुनेंगे, जबकि इसी समय पर FM 100.9 MHz पर आप सुन सकेंगे विविध भारती मुंबई से प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज व कल के शेष कार्यक्रम। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 KHz और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार।

कार आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अधिकारी के चयन की औपचारिक घोषणा की। आकाशवाणी की राष्ट्र सेवा के 90 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय राजधानी में भव्य मैराथन को वरिष्ठ अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 11 मई को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का मजार पहाड़ स्थित शिव मंदिर में आयोजन किया जाएगा। पर्व का शुभारंभ कलश यात्रा से होगा और प्रशासनिक कारणों से एमवी कालीघाट और एमवी भारत सीमा के संचालन समय में परिवर्तन किया गया है। जहाजरानी सेवा निदेशालय ने नई समय सारणी जारी की।

0: सांध्य समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में केवल श्री अधिकारी का ही नाम नेता के लिए प्रस्तुत किया गया। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अधिकारी के चयन की औपचारिक घोषणा की। नई भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। यह मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया। इस अवसर पर आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव जैन ने कहा,
1: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
2: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
0: कृषि विज्ञान केंद्र मध्योत्तर अंडमान द्वारा केवीके परिसर में कल सीप मशरूम उत्पादन पर एक फील्ड डे कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों एवं ग्रामीण महिलाओं को वैज्ञानिक तरीके से ऑयस्टर मशरूम उत्पादन तथा टिकाऊ फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान गृह विज्ञान विषय विशेषज्ञ यथार्थ शर्मा ने ऑयस्टर मशरूम उत्पादन की विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी। उन्होंने इसे ग्रामीण परिवारों एवं महिला उद्यमियों के लिए आयवर्धक गतिविधि बताया। कृषि विज्ञान विशेषज्ञ डॉ. राजेश डावर ने फसल अवशेष प्रबंधन एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों पर किसानों से संवाद किया। उन्होंने कृषि अपशिष्ट एवं फसल अवशेषों का उपयोग वर्मी कंपोस्ट एवं मशरूम सब्सट्रेट तैयार करने पर बल दिया। किसानों के मशरूम उत्पादन, पोषक तत्व प्रबंधन एवं फसल उत्पादन से जुड़े प्रश्नों का समाधान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कैरी के कार्यवाहक निदेशक जयसुंदर के मार्गदर्शन में हुआ, जिसमें लगभग 20 किसानों एवं ग्रामीण महिलाओं ने भाग लिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है कलश यात्रा और जहाज। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 1000 संघर्षों के बीच अटूट आस्था और दृढ़ता के वर्ष का आयोजन 11 जनवरी से चल रहा है। यह आयोजन अगले वर्ष 11 जनवरी तक चलेगा। वर्ष 1026 में सोमनाथ मंदिर पर हुए प्रथम आक्रमण के

0: हजार वर्ष तथा मई 1951 में मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा 11 मई को राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे से मजार पहाड़ स्थित शिव मंदिर में होगा। कार्यक्रम के तहत फ्लैग पॉइंट के निकट अय्यनार मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें महिलाओं एवं विभिन्न सामुदायिक समूहों की भागीदारी रहेगी। यह यात्रा शिव मंदिर में संपन्न होगी। कला एवं संस्कृति विभाग की निदेशक प्रियंका कुमारी ने नागरिकों से इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग लेने की अपील करते हुए कहा,
1: 11 मई को अभी हम आने वाले सोमवार को सोमनाथ सद्भावना पर्व का आयोजन कर रहे हैं। यह एक राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है जो कि सोमनाथ में किया जाएगा और जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति रहेगी, और उसी कार्यक्रम के साथ साथ सारे राज्यों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, और उसी के साथ हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए हमने जो मजार पहाड़ के पास शिव मंदिर है उसका चयन किया है। कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह में वहाँ की महिलाएं कलश यात्रा निकालेंगी, जो कि फ्लैग पॉइंट के पास जो टेम्पल है वहाँ से वो जल उठाएंगे और मंदिर में जाकर जल का अर्पण किया जाएगा। इस जो भी कार्यक्रम वहाँ सोमनाथ में होगा जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति रहेगी, उसका लाइव टेलीकास्ट होगा।
0: सूचना प्रचार और पर्यटन निदेशालय की ओर से शहीद द्वीप में पैरासेलिंग गतिविधियों के संचालन हेतु पात्र पर्यटन हितधारकों, जल क्रीड़ा संचालकों और नौका संचालकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में अपने आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करने होंगे। आवेदन का प्रारूप विभाग के एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स सेक्शन से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रशासनिक कारणों के चलते जहाजरानी सेवा निदेशालय द्वारा घोषित जलयान कार्यक्रमों में संशोधन किया गया है। अब एमवी कालीघाट एमवी भारत सीमा के स्थान पर 14 मई को सुबह 7 बजे लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा थरेसा कचहल और ननकौड़ी होते हुए कैम्बल बे के लिए रवाना होगी और 17 मई को रात 9 बजे इन्हीं मार्गों से होते हुए वापस लौटेगी। एमवी भारत सीमा 16 मई को रात्रि 8 बजे हाइड्रोजेटी से छूटकर माया बंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए रवाना होगी और इसकी वापसी अगले दिन दोपहर 2 बजे डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। उधर एमवी कालीघाट एमवी सेंटिनल के स्थान पर 27 मई को सुबह 7 बजे श्री विजयपुरम से लिटिल अंडमान कार निकोबार चौरा थरेसा कचहल और ननकौड़ी होते हुए कैम्बल बे के लिए रवाना होगी और 30 मई को दोपहर 12 बजे कैम्बल बे से इसी मार्ग से होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगी। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पुराने टर्मिनल भवन के सामने निकास द्वार के पास एंटी नारकोटिक्स पुलिस ने लगभग 2 किलोग्राम से अधिक अवैध गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई का नेतृत्व एंटी नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के बिनोज ने किया। आरोपी का नाम जमीरुद्दीन गाजी है, जो कोलकाता से इंडिगो फ्लाइट द्वारा राजधानी श्री विजयपुरम पहुंचा था। पुलिस को तलाशी के दौरान उसके बैग से गांजा मिला। मामले की जांच जारी है तथा सप्लाई चेन और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। यह कार्रवाई उप पुलिस अधीक्षक नारकोटिक्स सुमा मड्डा तथा सीआईडी उप पुलिस महानिरीक्षक राजेश देव की देखरेख में की गई। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि के पाए जाने पर पुलिस को सूचित करें। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। टेलराबाद क्षेत्र में एचटी और एलटी लाइन के मरम्मत कार्य किए जाने के चलते कल सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक टेलराबाद बिबलीटान सिपीघाट जोड़ा कनाल और नया शहर में बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। यह कार्य मौसम पर निर्भर करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अधिकारी के चयन की औपचारिक घोषणा की। आकाशवाणी की राष्ट्र सेवा के 90 वर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्रीय राजधानी में भव्य मैराथन को वरिष्ठ अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 11 मई को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का मजार पहाड़ स्थित शिव मंदिर में आयोजन किया जाएगा। पर्व का शुभारंभ कलश यात्रा से होगा और प्रशासनिक कारणों से एमवी कालीघाट और एमवी भारत सीमा के संचालन समय में परिवर्तन किया गया है। जहाज रानी सेवा निदेशालय ने नई समय सारणी जारी की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। शाम के 7:15 हुए हैं। मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। और अब सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। जहाजरानी सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एमवी भारत सीमा मायबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल रात्रि 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी रविवार 10 मई को दोपहर 2 बजे डिगलीपुर से मायबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान होते हुए कार निकोबार की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे कार निकोबार से लिटिल अंडमान होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे रंगत से लॉन्ग आइलैंड और स्वराज द्वीप से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग की जगह अब एमवी रानीजंगा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप और दोपहर 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बाराटांग की जगह अब एमवी रानीजंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल ही दोपहर 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी बम्बुका शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 2:30 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। एमवी कमोटा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी रविवार 10 तारीख को प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। अभी आप जलियानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे।

जन सूचनाएं। गैर कानूनी कृतियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसे किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। 112-03192-232-100, 03192-233-077 और 03192-232-400। सूचना देने वालों का नाम गुप्त रखा जाएगा। जन सूचनाएं समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:20 हुए हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के हमारे फनकार हैं रानू मुखर्जी।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। संध्या के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है युववाणी कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जीवन में कठिनाइयां हमें रोकने नहीं आती, बल्कि हमारी छिपी हुई ताकत और क्षमता को पहचानने का अवसर देती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, वही अंत में सफलता का वास्तविक स्वाद चखता है। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि मन में आशा और कर्म में ईमानदारी हो, तो अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। इसलिए कभी हार मत मानिए, क्योंकि संघर्ष ही इंसान को मजबूत और महान बनाता है। जी दोस्तों, इसी विचार के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस आज के दिन यानी 8 मई को मनाया जा रहा है। यह दिन मानवता, सेवा और सहायता के भाव को समर्पित होता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को रेड क्रॉस संस्था के कार्यों और मानव सेवा के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों, इन दिन का संबंध हेनरी डुनेंट के जन्मदिन से है, जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक थे। उन्हें मानवता की सेवा के लिए पहला नोबेल शांति पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और महामारी जैसे कठिन परिस्थितियों में घायल, बीमार और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए रेड क्रॉस संस्था विश्व भर में कार्य करती है। दोस्तों, रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य बिना किसी भेदभाव के मानव सेवा करना है। यह संस्था रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य सेवाएं, आपदा राहत कार्य, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण तथा जरूरतमंदों की सहायता जैसे अनेक सामाजिक कार्य करती है। भारत में भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी विभिन्न राज्यों में लोगों की सहायता के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें यह संदेश देता है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हमें भी अपने समाज में जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए और रक्तदान, सेवा तथा संयोग जैसे कार्यों में भाग लेना चाहिए। यह दिवस लोगों में दया, सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत बनाता है। वास्तव में रेड क्रॉस संस्था पूरी दुनिया में मानवता की एक सुंदर मिसाल है।

0: दोस्तों, आज शुक्रवार है और आज के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं आज का हमारा यह पहला कॉल। हेलो फ्रेंड्स जी। इंद्रभान जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ
0: जी। आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मौसम तो यहाँ मैडम धूप किया है, तेज धूप है
0: जी,
1: और बादल भी बीच में किया है कुछ चारों तरफ। ये पानी कभी भी गिर सकता है,

0: ये मतलब की कहानी जा सकता है, हवा भी आ सकता है, आंधी भी आ सकता है।
1: जी, तो इंद्रभान जी, आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: तो फिल्म का नाम आपको बताता हूँ, फिल्म का नाम है चलते चलते।
1: जी
0: ये फैलन सिंह लता मंगेशकर का गाना है। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है,
1: जी और ये गीत आप अपने किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
0: और सबसे पहले गीत आपको के निर्देशकता को पूरे भारत श्रोता को आकाशवाणी अंडमान निकोबार विजयपुर में जुड़े सभी श्रोता भाई बहनों को, दूसरों को, आपके परिवारजन के रिश्तेदारों को, आपके सभी को।
1: तो चलिए इंद्रभान जी, सुनाते हैं आपको आपका ये मनचाहा गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स,
1: अनिल गुप्ता इंदौर से बात कर रहे हैं
0: जी। अनिल जी, कैसे हैं आप?
1: इस समय बैंक में है, वहीं से आपसे बात कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे गर्मी थोड़ी कम है, 2-3 दिन से
0: जी
1: मान है।
0: तो अनिल जी, आज आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज हमको उदित नारायण और साधना सरगम के आवाजों में दिल फिल्म का गीत सुनवा दीजिए, हमने घर छोड़ा है रस्मों को तोड़ा है।
0: जी, और अनिल जी, आप ये गीत आपने किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: ये गीत आज हम आपके साथ और आकाशवाणी विजयपुरम की पूरे टीम के साथ सुनना चाहेंगे।
0: तो चलिए अनिल जी, सुनाते हैं आपका ये मनचाहा गीत।

तो दोस्तों, इसी प्यारे गीत के साथ समाप्त होता है आज का हमारा युववाणी कार्यक्रम। दोस्तों, वादा करते हैं जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी इस दोस्त अनुप्रिया को। नमस्कार, शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना से। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में गीत रचना SH बिहारी की और संगीत दिया है OP नैयर ने।

0: असली भरोसा वही है जो समय के साथ और स्ट्रांग हो जाए, जैसे आपका भरोसा मारुति सुजुकी पे। और इसी भरोसे के लिए हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू स्पेशल लॉयल्टी रिवॉर्ड्स के साथ। अपग्रेड करें टू द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद अ लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफ अप टू 30,000 और विक्टोरियस के 50,000 प्राउड ओनर्स के एक्सक्लूसिव सर्कल का हिस्सा बने।
1: ऑफर वैलिड फॉर एग्जिस्टिंग मारुति सुजुकी कस्टमर्स, TNC अप्लाई।
2: अब प्रस्तुत है फिल्म आज और कल का गीत। गीत को अपनी आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने। इसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियावनी ने और संगीत दिया है रवि ने।

मुकेश की आवाज़ में सुनिए फिल्म मैं नशे में हूँ का गीत। गीत रचना हसरत जयपुरी की और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने।

कटी पतंग। श्रोताओं सुनिए इस फिल्म का गीत। किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है राहुल देव बर्मन ने।

श्रोताओं, सुनिए शैलेंद्र का लिखा व SD बर्मन के संगीत निर्देशन में तैयार फिल्म ज्वेल थीफ का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं अभिलाषा फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में, गीत रचना मजरू की और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रोजगार समाचार। अंडमान एवं निकोबार पुलिस में ग्रुप बी अराजपत्रित एवं ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। ये पद अंडमान एवं निकोबार पुलिस की विभिन्न इकाइयों में है। अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा चुना गया पद अंतिम होगा, बाद में किसी भी परिस्थिति में बदलाव नहीं किया जाएगा। शारीरिक माप एवं सहनशक्ति परीक्षण PMET अंडमान एवं निकोबार पुलिस द्वारा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। ये केवल क्वालिफाइड प्रकृति का होगा। लिखित परीक्षा

0: कंप्यूटर आधारित या लिखित, अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित होगी। साथ ही ट्रेड टेस्ट भी लिया जाएगा। सभी चरणों में सफल उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी और उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन होगा। अंतिम परिणाम लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट के लिए प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया निर्धारित नियमों और पुलिस विभाग के आदेशों के अनुसार होगी। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज FS अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित, सब इंस्पेक्टर स्टेशन ऑफिसर के लिए एक पद जो केवल OBC वर्ग के लिए होगा। ग्रुप सी फायरमैन PC FS के लिए कुल पद है 77, अनारक्षित वर्ग के लिए 41 पद, 29 पद OBC वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 7 पद रखा गया है। पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर FS कुल पद है 17, अनारक्षित वर्ग के लिए 7 पद, 6 पद OBC वर्ग के लिए होगा। अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3 पद रखा गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 पद होगा। सफाई कर्मचारी FS के लिए कुल पद है 2, OBC वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1-1 पद रखा गया है। फॉलोवर कुक FS के लिए 1 पद है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रखा गया है। फॉलोवर दफ्तरी के लिए 1 पद रिक्त है जो अनारक्षित वर्ग के लिए होगा। इंडिया रिजर्व बटालियन IRBN अंडमान एवं निकोबार पुलिस ग्रुप बी अराजपत्रित सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी के लिए 1 पद है जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए होगा। ग्रुप सी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए कुल पद है 29, अनारक्षित और OBC वर्गों के लिए 12-12 पद है। ST अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 3 पद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद रखा गया है। कांस्टेबल वायरलेस के लिए कुल पद है 2 जो अनारक्षित वर्ग के लिए होगा। नर्सिंग असिस्टेंट, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, कांस्टेबल वाटर कैरियर, इन सभी पदों के लिए 1-1 पद है जो केवल अनारक्षित वर्ग के लिए रखा गया है। रिक्तियां अस्थाई है जो बदल सकती है। महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू होगा। कुछ पद केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए है। ST और OBC वर्गों के लिए आरक्षण सरकारी नियमों के अनुसार होगा। EWS, MSP, ESM भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू है। भूतपूर्व सैनिकों को अपना नाम संबंधित बोर्ड में पंजीकृत कराना होगा। रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति पत्र योग्यता क्रम के अनुसार लागू किए जाएंगे। अभ्यर्थी अपने आवेदन अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या recruitment.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन जमा करने से पहले भर्ती सूचना को ध्यान पूर्वक पढ़ें। ऑनलाइन आवेदन 17 मई 2026 को रात 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अंडमान एवं निकोबार पुलिस की वेबसाइट police.andamannicobar.gov.in या e-recruitment.andamannicobar.gov.in पर उपलब्ध है। और अधिक जानकारी के लिए 25 अप्रैल 2026 का डेली टेलीग्राम देखा जा सकता है। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।
1: श्रोताओं, अब गौरव गान के तहत आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: असली भरोसा वही है जो समय के साथ और स्ट्रांग हो जाए, जैसे आपका भरोसा मारुति सुजुकी पे। और इसी भरोसे के लिए हम आपको कहना चाहते हैं थैंक यू स्पेशल लॉयल्टी रिवॉर्ड्स के साथ। अपग्रेड करें टू द ब्रांड न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस विद अ लॉयल्टी रिवॉर्ड ऑफ अप टू 30,000 और विक्टोरियस के 50,000 प्राउड ओनर्स के एक्सक्लूसिव सर्कल का हिस्सा बने।
1: ऑफर वैलिड फॉर एग्जिस्टिंग मारुति सुजुकी कस्टमर्स। TNC अप्लाई।

गौरव गान कार्यक्रम के तहत अभी आप देशभक्ति गीतों का आनंद ले रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब कुछ ही पलों में समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट

रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: बैंकिंग के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के पांचों बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन एक महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
4: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देशभर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है।

0: नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
1: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाड टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाड टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले पांच वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
1: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गृहमंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: I'm joined by two distinguished guests, Padmashree Vishnu Pandyaji, he's a historian and author, and Ms. Aditi Tandon, senior journalist. For centuries, the Somnath Temple has not just as a place of faith, but as a symbol of resilience. Attacked, rebuilt, and revived time and again, its story is deeply woven into India's civilizational journey. Marking 75 years since the restored temple was reopened to devotees, Prime Minister Narendra Modi has written an article in which he says that every part of Bharat is sacred, bound together by a sense of oneness that transcends geography, and that in a world increasingly marked by divisions, this spirit of unity is more relevant than ever. The Somnath will continue to stand tall in all its glory because the sense of unity and shared civilizational consciousness lives on in the heart of every Indian, said the Prime Minister. In fact, he also remembered the countless people who sacrificed their lives to protect Somnath and those who rebuilt it generation after generation, ensuring that this beacon of faith and cultural continuity continues to stand tall. Earlier this year, the Prime Minister visited the Somnath for the Somnath Swabhiman Parv, marking 1,000 years since the first attack on this temple. And on the 11th of May this year, he will return to the Somnath to commemorate 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first president, Dr. Rajendra Prasad. So, pehla sawal historian Padmashree Vishnu Pandya ji se. Pandya ji, Somnath ko aksar log sirf ek mandir nahi, balki Bharat ki pehchan bhi mante hain. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कई बार जाते हैं और वहां का जिक्र करते हैं. आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को अगर आप बता सके कि सोमनाथ में ऐसा क्या है जो उस जगह से लोगों का अपने आप एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है.
1: देखिए, नरेंद्र मोदी जी इतिहास बोध के आदमी है, बरसों से है, आज से नहीं. और परंपरा में जिस प्रकार का एक सातत्य रहना चाहिए उसके अनुसार वो चलते हैं. उनके अनुसार जो सोमनाथ की जो बात है वो केवल मंदिर की नहीं है, उन्होंने लिखा भी है, हमारी संस्कृति विनाश से निर्माण, इस पर आधारित है. बहुत से विनाश आए, आक्रमण आए, बाकी सब कुछ हुआ, लेकिन पुनः एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, 50 बार हमने पुनः निर्माण किया. कुछ ऐसे उदाहरण भी है, जैसे कि हमारे यहाँ प्राच्य विद्या, पुरातत्व विद्या का लोथल स्थान है
0: जी,
1: 5,000 साल पहले का है. 5,000 साल में उस पर 4 बार सुनामी, समुद्र का विनाश आया, चारों बार लोगों ने इकट्ठा होकर पुनः खड़ा किया. सोमनाथ पर अनेकों आक्रमण आए और फिर भी लोगों ने बार बार उनका पुनर, केवल राजाओं ने नहीं, लोगों ने भी. मैं उनका एक उदाहरण देना चाहता हूँ. ईस्वी सन 1400 तब एक बार आक्रांताओं ने मंदिर को नष्ट किया, लोग सब इकट्ठा हुए और लोगों ने अपनी शक्ति से और अपनी भक्ति से उनका पुनः निर्माण किया. ये सोमनाथ की बात है
0: जी.
1: तो विनाश से निर्माण, कितने पुनरोद्धार हुए, बहुत से हुए. एक दो चार उदाहरण हम दें तो गुर्जर प्रतिहारों ने निर्माण किया, राजा भोज ने निर्माण किया, राजा कुमारपाल ने किया, भीमदेव ने किया, पाशुपत आचार्य त्रिपुरांतक ने किया, महिपाल देव ने किया. एक बार तो जैन और पाशुपत दोनों शैव दोनों मिलकर किया है. तो इसका मतलब है कि ये जो महारानी अहिल्याबाई ने भी किया, इस परंपरा की कड़ी में सरदार वल्लभ भाई आए. 1947 के नवंबर में जब जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की घोषणा हुई थी नवाब के द्वारा, उसके खिलाफ आरजी हुकूमत हुई थी और आरजी हुकूमत ने जूनागढ़ को मुक्ति दिलाई, तब उसी दिन सरदार वल्लभ भाई जूनागढ़ आए. जूनागढ़ में उन्होंने बड़ी सभा की और बाद में वो वहां से, दिवाली का दिन था, वो सोमनाथ गए. उनके साथ महाराजा जामनगर के दिग्विजय सिंह जी थे, एनवी गाडगिल थे जो मिनिस्टर थे, कैनराल मुंशी थे. ये सभी के सभी लोगों ने देखा और वल्लभ भाई ने देखा कि ये जीर्ण शीर्ण मंदिर खड़ा है, किस प्रकार इसकी दशा है, इसका पुनरोद्धार होना चाहिए. तो समुद्र से अंजलि भर पानी लेकर हथेली में उन्होंने संकल्प किया. इससे पहले 1892 में स्वामी विवेकानंद आए थे
0: जी,
1: और उन्होंने ऐसी ही स्थिति में जो सोमनाथ था वहां समाधिस्थ हुए, सामने हिंद महासागर था, और तब उन्होंने सामने, वो कहते हैं वो सबसे पहला उनको दर्शन भारत माता का वो वहां हुआ था.
0: Okay, so we'll continue this conversation trying to understand about the historical significance and how it resonates also with a lot of people in so many ways. But let me bring in the Prime Minister's upcoming visit, the article that he's written just ahead of the visit, and it's quite reflective and personal in tone. So, Ms. Aditi Tandon, the question to you is that

0: Tamil language at the UN platform earlier. So the fact of the matter is the youth of the country are ready to receive. They are consumers of the knowledge that we disseminate to them. But this is a narrative that the political leaders of the day, the philosophers and thinkers of the day, the cinema artists of the day have to think about. For instance, just look at the revolution that we see now in the, you know, cinematic space. All kinds of films are doing well. So many films that are rooted in our culture are doing well.
1: That's right.
0: So many films that speak of India's strategic depth and India's strategic victory over the inimical neighbors are doing well. So the fact of the matter is the digital age is the reality of our times, but that does not mean that there are no avenues of connecting the youth to their past or to their cultural richness. There are always those avenues, but that burden is with the policy makers, the politicians and thinkers of the day. Because what are we teaching the youth in the schools that is important? Are the school books being revised accordingly? Like, we now know that the NCERT is paying a lot of attention to the courses that are being taught at school level, and a number of books have been revised to give so many freedom fighters their due. So that's the kind of thing I'm talking about, that there has to be a continuous revision and continuous education in relation to the richness that India boasts of. And this richness is on multiple counts, you know, the richness of culture, of languages, the richness of our freedom fighting movement. So many national heroes that we don't know about yet, that we are coming to know about only now.
2: That's right. So, हिस्टोरियन पद्मश्री विष्णु पांड्या जी, आजादी के बाद जब सोमनाथ के पुनर्निर्माण का फैसला लिया गया, कई तरह का विरोध भी हुआ. इनफैक्ट जब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके इनॉग्रेशन में गए तो तब के प्रधानमंत्री को वो पसंद भी नहीं था, ऐसा हमने इतिहास में पढ़ा है. लेकिन अगर हम देश के आत्मविश्वास के संदर्भ में इस मंदिर के पुनर्निर्माण को देखें, तो क्या वो सिर्फ मंदिर बनाना था या वो एक पहल थी देश के आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करना? वो एक बड़ा मैसेज था कि जो टूटा है वो फिर से जुड़ेगा और वो फिर से खड़ा होगा. जिस संदेश की आज हम बात कर रहे हैं उसकी नींव कहीं ना कहीं उस दिन रखी गई थी?
3: नहीं, उसी दिन नहीं थी. मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ, ये परंपरा में हुआ है. जब से भगवान सोम ने मंदिर बनाया तब से जितने लोग आए, मोहम्मद गिजनी आए, अलाउद्दीन खिलजी आए, अलफ खान आए, मुजफ्फर गुर्जर सुल्तान आए, औरंगजेब आए, मोहम्मद बेगड़ा आया और मोहम्मद गजन भी आए, इतने आक्रमण के बाद भी क्यों खड़ा किया? ये कोई केवल मंदिर नहीं था, मंदिर तो बहुत से होते हैं और गुजरात में बहुत से मंदिरों को भी नष्ट किया था, लेकिन सोमनाथ ये भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक है. विनाश से निर्माण, मैंने कहा, वो उस आधार पर वो खड़ा है और उसी आधार पर वहां से जो कुछ बना, कुछ संकल्प हुए. इसीलिए नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक शब्द दिया था, संकल्प कथा, संकल्प यात्रा, और कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति एक संकल्प ले, गुजरात विशेष हो जाएगा. और उन्हीं दिनों में मैंने कहा सरदार वल्लभ भाई, ये एक नींव का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आरंभ था. ये बात सही है. और सरदार वल्लभ भाई ने जब संकल्प किया कि सोमनाथ तो होना चाहिए, फिर बात दिल्ली तक पहुंची. और सभी उन दिनों के जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू को ये ठीक नहीं लगा. उनका कहना था कि ये बिन सांप्रदायिक हमारा देश है, इसमें कोई दैवी मंदिर को इस प्रकार पुनर्निर्माण करना सरकार के द्वारा ये ठीक नहीं है
2: जी.
3: फिर वे लोग गांधी जी के पास गए, ये घटना है, और गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला. उन्होंने कहा कि ठीक है सरकार मदद न दे, लेकिन लोगों के द्वारा फंडिंग करके इनको खड़ा किया जाएगा. ये बात हुई, बाद में तो गांधी जी भी नहीं रहे, सरदार भी नहीं रहे, और जब प्रतिष्ठित हो गया, मंदिर हो गया, तो राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू को आमंत्रित किया गया. और ये स्पष्ट है उन दिनों के जो सब बयान है उसमें जवाहरलाल जी ने ना कहा. वो अपने ढंग से वो सोचते थे कि भाई ये सेक्युलर स्टेट है, लेकिन राष्ट्रपति जी ने कहा कि सेक्युलर होने के बावजूद मैं सभी जगह जाता हूं, यदि मस्जिद का पुनरोद्धार होगा तो मैं वहां भी जाऊंगा. ये देश की संस्कृति है ऐसा. और आए और सोमनाथ का जीर्णोद्धार का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उनके बाद बार बार ये हुआ. तो ये और फिर 47 के बाद ये यहाँ जो गुजरात राज्य 1960 में बना, तब से यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ के जो नेता थे, उन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट बनाया. सोमनाथ ट्रस्ट पहले भी था, उसमें दिग्विजय सिंह जी ने बड़ा काम किया, जामनगर के महाराजा ने
2: जी.
3: और ये हमारे बहुत से ऐसे राजवी थे कि जो

0: वो परम सांस्कृतिक प्रतिनिधि भी थे, संस्कृति के साथ जुड़े हुए थे। तो ये हुआ और फिर सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा ये काम हुआ। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे अध्यक्ष, अब नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस जो स्थान है, इस स्थान को एक ऐतिहासिक बनाने की यात्रा शुरू हुई है।
1: प्रधानमंत्री 11 मई को दोबारा जा रहे हैं वहां पर। आपने जिस तरह से हमें पूरा समझाया कि किस तरह ये प्रतीक है एकता का, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने लेख में भी किया है, लेकिन अगर आज के भारत को सोमनाथ की कहानी से अगर एक सीख लेनी हो पांड्या जी, तो वो क्या होगी? और इसको मैं जोड़ूंगी आज के जियोपॉलिटिकल संदर्भ से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया है कि आज जब दुनिया में हर जगह जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूनिटी बिल्कुल नहीं है और जिस तरह से डिविजन्स हैं कई लेवल्स पर, उस संदर्भ में उन्होंने सोमनाथ का जिक्र किया है। तो अगर एक सीख हम आज के अपने देश के और दुनिया के संदर्भ में लें तो सोमनाथ से, वो क्या होगा?
0: मेरी दृष्टि से ये केवल जियो पॉलिटिकल है नहीं है, ये जियो कल्चरल भी, और सांस्कृतिक अस्मिता हिंदुस्तान की। हम बाकी विश्व की इसमें चिंता न करें, वो वहां शांति होगी या नहीं होगा, वहां युद्ध होगा नहीं होगा, वो तो अपने ढंग से वो सोचेंगे तब होगा। लेकिन भारत वर्ष में इन दिनों में युवा शक्ति को एक राष्ट्रीय जागरयाम वयम, राष्ट्र में हम सभी जगह जागते रहे, हम जहां भी हो जैसे भी हो, लेकिन जागृति बहुत बड़ी आवश्यक अनिवार्य है। और इसी इतिहास बोध से लेकर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ऐसे दो स्थान का निर्माण हुआ है, एक सोमनाथ का है और दूसरा केवड़िया कॉलोनी नर्मदा के किनारे सरदार पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, एकता की प्रतिमा। ये दोनों ऐतिहासिक है, आज तो वहां देश देशावर से लोग जाते हैं, तो ये इनकी इतिहास बोध की दृष्टि से ये हो रहा है। और आपने एक सवाल विदुषी को पूछा था कि युवा वर्ग इसमें कैसे जुड़ेगा, मेरी दृष्टि से और मेरे अनुभव से, मैं अध्यापक भी रहा हूं, मैं बोलता भी हूं।
1: रीसेंट टाइम्स एज यू राइटली मेंशनड, गिवन द प्राइम मिनिस्टर्स आउटरीच एज वेल एज द काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट हैव बीन अंडरटेकन इन रीसेंट इयर्स, वी डू सी दैट देयर इज अ रिन्यूड कॉन्फिडेंस अमंग इंडियंस अबाउट देयर नेशनल आइडेंटिटी, अबाउट देयर कल्चर, अबाउट देयर रूट्स, एंड वी आर ऑल्सो प्रोजेक्टिंग आवर हेरिटेज ग्लोबली through yoga, through Buddhism, through spirituality. Do you also see Somnath as part of that larger story in helping India project its cultural heritage, its civilization on the global stage?
2: Yeah, in fact, it's very interesting that the question that you asked, the fact that the Somnath temple is located in Gujarat, and also the fact that Gujaratis are very vibrant diaspora members and they are brand ambassadors of the Indian story outside. And you spoke of soft power, of course, not just the Somnath temple, but so many other rejuvenated temple complexes in the country. You can take the Char Dham Yatra, then you can take Kashi Vishwanath temple, which has been redone fully. And in fact, if you look at the statistics, you will realize, Tina, that not just domestic tourism has been boosted through this religious rejuvenation, but a lot of international tourists are also coming back. You know, a lot of Indians only live abroad who are now coming back to revisit these places of worship, all these religious shrines. Okay. So that's one very important thing. And of course, Somnath Temple is part of the larger soft power segment of India. Our rich and ancient civilization, our democratic values, and our growing global influence through yoga, which you mentioned. Then we have Bollywood. Our cuisine is doing wonders all across the world. In fact, recently, Indian cheese also made global headlines by winning two major awards at a Brazilian event. That was the first ever time.
1: Right.
2: So, you know, culture and civilization straddle so many different sectors. It's not just faith or religion. It's food. You know, it's our language, it's our practices, it's our lifestyle. So it's across sectors.
1: Your personal thoughts on how we can make our civilizational values coexist, or sort of say make it a strength in today's global climate, which helps India achieve its ambitious goals and it helps us grow as individuals, balancing between history and modernity and the future, maybe balancing between history and the future.
2: See, the fact of the matter remains that, you know, the adaptive nature of Indians as we are, you know, Bharatiya Sabhyata, which we call, this adaptive nature has taken us through so much and we have not, you know, really fallen to the vagaries of time or to the vagaries of conquerors. Civilization remains our greatest strength and it is particularly important for the fact that it has helped

0: of digital transactions in the world are happening in India. So we are the same society, old and yet new.
1: Thank you, ma'am. It's been wonderful hearing your insights on this very important topic. बल्कि मेरा एक सवाल विष्णु पांड्या जी, सोमनाथ आपने बताया कि सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, भारत के लिए निरंतरता का भी प्रतीक रहा है, तो ऐसे में हमें ऐसे और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रह जाए, ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे वो इतिहास को महसूस कर सकें और उसे बखूबी समझें।
2: अग्रता क्रम में तो वैसे इतिहास का पुनर्लेखन और चिंतन होना चाहिए, ये एक बात। दूसरी बात ये है कि अध्यापकों को भी ट्रेनिंग देनी चाहिए इतिहास के बारे में, जो नहीं है आज, ठीक ढंग से इतिहास सिखा जाए, दूसरी बात। तीसरी बात, लोग युवा वर्ग तक कम्युनिकेट होने के लिए ऐसे व्याख्यान भी हो सकते हैं, धर्मोपदेशक वाले या प्रोफेसर या फिलोसोफर बाकी सब हो कर सकते हैं। हमारी नाट्य संस्कृति जो है उनको पुनर्जीवित करके ऐसी घटनाओं पर नाटक होने चाहिए। फिल्मों का भी बड़ा सशक्त माध्यम है, डॉक्यूमेंट्रीज है, उनके द्वारा भी बार बार, एक बार नहीं बार बार इसका प्रस्तुतिकरण हो, तो धीरे धीरे धीरे, और मैंने, मेरा अनुभव है कि जब युवा वर्ग के सामने बोलता हूं तो उनकी आंखों में एक प्रकार की एक स्पिरिट आ जाता है कि हमें कुछ और भी चाहिए
1: जी।
2: सच बात है, उन लोगों तक हम पहुंचे नहीं, पहुंचना चाहिए। ये धीरे धीरे व्यापक रूप से पूरे देश में हो सकता है। तो मेरे दृष्टि से पुनः एक बार हमारी परंपरा, 5000 साल से भी पहले शायद, ये परंपरा में जो विनाश से निर्माण की एक भावना है, संस्कृति इसी आधार पर टिकी हुई है। साहब सोमनाथ में भी जब उत्खनन हुआ है, 4 सभ्यताएं सिविलाइजेशन की अवशेष मिले हैं, तो कितने हमारी सभ्यताएं दीर्घकालीन होती होगी, इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए और इसके लिए योग्य माहौल बनाकर ये हम कर सकते हैं, और आकाशवाणी इसमें सबसे ज्यादा निर्णायक बन सकती है।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि सोमनाथ क्यों इतिहास में ही नहीं बल्कि आज के संदर्भ में भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और खास करके युवा वर्ग के लिए जरूरी है कि हम इस जगह के बारे में जाने कि इसने इस देश को क्या दिया है और आज के संदर्भ में भी ये कितना प्रासंगिक है। So the story of Somnath Temple, listeners, is not just about a temple rebuilt in stone. It is about civilization, in fact, that refuses to lose its spirit. So 1,000 years after the first attack and 75 years after its restoration, Somnath continues to stand tall as a reminder that India's strength lies not only in its history, but in its ability to rebuild, to endure, and most importantly, to move forward with confidence.
3: So on that very interesting note, we'll have to wrap up the conversation. Time allows us to take up only that much on the program. So that's it from us, listeners, on this program. You can also listen to our program, Current Affairs, on our mobile app, News on AIR, and our YouTube channel, News on AIR Official.
4: Current Affairs.
5: ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब पेश है आपके भरपूर मनोरंजन के लिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संदेशे आते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने मनपसंद गीतों को सुनने के लिए अपना नाम, पता, फिल्म का नाम और गाने के बोल लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9474234000। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म कभी कभी के इस गीत से। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है भोपाल मध्य प्रदेश से सतीश कुमार नायर ने।

अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म जुदाई से। इस गीत की फरमाइश की है राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना ताई गुंडा ने, हीराराम शिंदे और प्रणय प्रसिद्धि ने।

नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर और मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले और आशीष मुरहेकर। हमारे ये सभी दोस्त सुनना चाहते हैं फिल्म आँखें का ये गाना, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

अब आपको सुनवाते हैं फिल्म कांच और हीरा का गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजा है बुलडाना वडशिंगी महाराष्ट्र से अनमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार ने।

MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और SK पप्पी खुराना। हमारे इन सभी दोस्तों ने फरमाइश की है रूप तेरा मस्ताना फिल्म का इस गीत के लिए। लीजिए सुनिए इनके पसंद का ये गाना।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम मौसम विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। परसों सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर स्थानों पर वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:31 होने वाले हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं समाप्त होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:28.35 हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: अब सुनिए आज का अनमोल विचार।
1: हर नया दिन जीवन का एक अनमोल उपहार है। यह हमें फिर से शुरुआत करने, अपनी गलतियों को सुधारने और नए सपनों को साकार करने का अवसर देता है। बीता हुआ कल हमें अनुभव देता है, लेकिन आज का दिन हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसलिए हर सुबह को सकारात्मक सोच और उत्साह के साथ अपनाइए, क्योंकि शायद आज ही वो दिन हो जो आपके जीवन को नई दिशा दे दे। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखें।